0: हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक स्वर रंजनी अब कार्यक्रम समाप्त होता है, संपन्न होता है। 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 6:10 और पूरे 15 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे

0: ये लघु वार्ता रामधारी सिंह दिनकर के जीवन से प्रसंग और उनके विचार, आलेख है डॉक्टर हरि सिंह पाल का और वाचन स्वर नीलम मलकानिया का।
1: रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। वो भारतीय संस्कृति के महानायक और व्याख्याता हैं। उनका काव्य सांस्कृतिक चेतना के तत्वों से अनुप्राणित है। उनके काव्य में राष्ट्र रक्षार्थ आत्म बलिदान की भावना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, विश्व बंधुत्व, दरिद्रों के प्रति करुणा और संवेदना, प्रेम तत्व का महत्व, श्रम का महत्व और नारी सम्मान की भावना जैसे सांस्कृतिक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। दिनकर की प्रारंभिक पढ़ाई सरकारी मिडिल स्कूल में होकर राष्ट्रीय पाठशाला में हुई। इस विद्यालय के वातावरण का प्रभाव दिनकर के चरित्र पर अत्यंत गहरा पड़ा। इसीलिए उनके जीवन में सांप्रदायिक एकता, राष्ट्रीय उत्साह और कर्मठता की तरंग शोभायमान रही। अपने पिता रवि सिंह के नाम पर ही इन्होंने अपना उपनाम दिनकर रख लिया था। पटना कॉलेज से बीए करने के बाद दिनकर को आर्थिक संकटों के कारण बिहार सरकार के प्रचार विभाग में नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी करते हुए भी दिनकर ने अपने लेखन में क्रांतिकारी विचारों से कोई समझौता नहीं किया। उनके जुझारू व्यक्तित्व ने उन्हें पूर्णता टूटने और झुकने नहीं दिया। दिनकर राष्ट्रीय संग्राम को उभारने के लिए ज्वलंत कविताएं ही नहीं लिखते थे, बल्कि राजनीतिक सम्मेलनों, किसान सभाओं और गांधी सेवा संघ के उत्सवों में भी सक्रिय प्रतिभागी के रूप में भाग लेते थे। उन्हें सत्ता विरोधी विचारों के लिए चेतावनी भी दी गई। सामाजिक विषमता के बारे में दिनकर ने लिखा है, सामाजिक विषमता के मूल में मानव का अहंकार निवास करता है। जाति का अहंकार, वंश का अहंकार, धन और शक्ति का अहंकार, ये सभी अहंकार विभाजक रेखाएं हैं जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं। दिनकर के काव्य में उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। वो गीता के कर्म और ज्ञान योग का प्रतिपादन आधुनिकता के परिवेश में करते हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, कवि होने का सामर्थ्य मुझमें शायद नहीं था। ये क्षमता मुझमें भारत वर्ष का ध्यान करने से जागृत हुई थी। दिनकर अर्थपूर्ण काव्य रचना के पक्ष में थे। उनका कहना था, जब तक अर्थहीनता से साहित्य का उद्धार नहीं किया जाता, तब तक वो एक गठरी के समान तिरस्कृत रहेगा। वो उस रंगीन मंजूषा के समान ही रहेगा जिसमें शून्य भरा है। दिनकर को अपने काव्य की प्रेरणा समकालीन परिस्थितियों को देखकर ही मिली थी। वो काव्य को यथार्थ जीवन से पृथक वस्तु नहीं मानते थे, कविता को उद्देश्य परक मानते थे। उनका कहना था, कविता पक्षियों के गीतों का मानवीय संस्करण नहीं है, वो वाल्मीकि और व्यास भी है, तुलसी और मोहम्मद इकबाल भी। कवि यदि ज्ञानी न हो, उसके पास यदि कोई आस्था और विश्वास न हो, उसे न तो कोई दृष्टि बोध हो और न देश का बोध हो, तो फिर कविता कविता क्या रह जाएगी और लोग उसे क्यों पढ़ेंगे। दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का धरातल अत्यंत ही विस्तृत और गहरा है। उनमें सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वास और आर्थिक विषमता के प्रति तीव्र आक्रोश था। दिनकर ने लिखा है, वे भी यही दूध से जो अपने श्वानों को नहलाते हैं, ये भी बच्चे यही कब्र में दूध दूध जो चिल्लाते हैं।
0: श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड भाग 52।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए 3 नाम और 3 मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से 1 नाम और 1 चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में शानदार 108 रन और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has positioned India as a globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations, and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the fifth edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें semiconductor industry का एक preferred destination बनाए. भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है. और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती. भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है. भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है.
2: The Election Commission of India has asked the two rival factions of the All India Trinamool Congress not to use the party name and flowers and grass symbol during the ensuing assembly by-elections in West Bengal. In its interim order, the commission has asked them to submit the names of their groups by which they may be recognized by commission by 11 a.m. today. The commission gave its interim order after hearing the leaders of the two factions of the party led by Mamata Banerjee and Arup Roy. The National Testing Agency has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The examination was held on the 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. External Affairs Ministry has notified the Passport Amendment Rules 2026, amending the Passport Rules 1980. The amendment provides that an ordinary passport with 36 pages issued to a child under 15 years of age will be valid for 5 years or until they turn 18 years of age, whichever is earlier. In a remarkable twist in regional fisheries trade, Hilsa, once imported into India from Bangladesh, is now being exported from India to Bangladesh. Central Inland Fisheries Research Institute, CFRI, has confirmed that nearly 500 tons of Indian hilsa have moved across the border in the past 2 months, with traders anticipating another 150 to 200 tons soon. Hindustan Aeronautics Limited will hand over light combat aircraft Tejas Final Operation Clearance twin-seater trainers and HTT-40 basic trainer aircrafts to the Indian Air Force in Bengaluru today. It will also hand over Dhruv Next Generation helicopters to Pawan Hans Limited, a public sector undertaking. Jammu and Kashmir government has accorded administrative approval for the development of a state-of-the-art tribal tourism village at Behri Kasab in Mendhar area of Poonch district. The project aims to showcase the rich tribal culture and heritage of the region while strengthening local infrastructure and creating new economic opportunities for the local youth. The tribal tourism village is envisaged as a dedicated destination that will highlight the distinctive cultural traditions and way of life of the tribal communities while providing an added attraction for visitors to Poonch. India said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said the country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics. In men's cricket, India crushed Afghanistan by 127 runs in the third T20I to complete a 3-0 series sweep in New Delhi last night. Put into bat, India posted 221 runs for the loss of 7 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Afghanistan were bowled out for 94 in 14.1 overs. Earlier, Afghanistan won the toss and opted to bowl. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है

के 7:10 और पूरे 15 सेकंड। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे डॉक्टर निशा द्वारा गाए भजनों का। सहयोगी कलाकार रहेंगे सितार पर खालिद मुस्तफ़ा, दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर और शिवित भारद्वाज ने तबले पर संगत की है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने सुना डॉक्टर निशा द्वारा गाए भजन। सहयोगी कलाकार थे खालिद मुस्तफ़ा सितार पर, दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर और शिवित भारद्वाज तबले पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ दोस्तों, हर तरफ हर जगह है उसी का नूर। आप प्रकृति की तरफ कहीं भी देखेंगे तो आपको हर तरफ उसी का नूर नज़र आएगा, यानी कि आपको ईश्वर की एक एक चीज़ नज़र आएगी। चाहे आप पेड़ पौधों की नज़र डालें, चाहे आप ज़मीन को देखें, आसमां को देखें, या फिर आईने में खुद को, आपको प्रकृति की एक अनोखी रचना नज़र आएगी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर, और हमेशा की तरह आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा सा लेकर आई हूं, जिसे सुनने के बाद आप

आपको भी जीने की एक नई दिशा मिल सकती है। फिलहाल हम इस गीत को सुनते हैं और इसके बाद आपको बताऊंगी कि आज आपके लिए कौन सी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके जीवन में एक बदलाव ला सकती है।

दोस्तों, आप सबके बीच लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको सच में जीवन में जीने के लिए एक बार फिर से एक नई दिशा मिल जाएगी। वैसे ये कहानी नहीं, ये एक सत्य घटना है जो कुछ ही दिनों पहले मैंने खुद देखी है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरा मन कुछ परेशान सा था, किसी चीज़ को लेके बहुत उदास थी और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद इस बात का कोई हल निकलेगा नहीं। अपने मन को बहलाने के लिए मैंने ऑन किया टीवी। टीवी पे चल रहा था एक गेम शो और उस गेम शो के अंदर बहुत सारे कंटेस्टेंट, जैसे कि होते हैं, वो आए हुए थे। उन्हीं में से एक कंटेस्टेंट थे जो दृष्टिहीन थे, जो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन सबको हरा कर वो पहुंचे आगे और उसके बाद सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ। और जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब दे रहे थे, सच में वो देखने लायक था। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ सुन सुन कर काफ़ी सारी चीज़ों को इस तरीके से एनालाइज कर रहे थे जो शायद हम देखने के बाद भी नहीं कर पाते। उनकी ये जो बात थी ना, इसने मुझे अंदर तक एक तरीके से झिझोड़ के रख दिया कि मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो रही हूँ और ये व्यक्ति जो, जिसको पता भी नहीं है कि ये कहाँ आया है, किनके बीच में आया है, कौन लोग इसे देख रहे हैं, वो व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और जीत भी रहा है। लेकिन उनकी कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प है, वो कहानी भी आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले सुनाऊंगी ये गीत।

तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही थी एक ऐसी कहानी की जो मैंने अपनी आँखों से देखी और कानों से सुनी, और वही मैं आप तक पहुँचाने जा रही हूँ। अभी जो गीत आपने सुना, कल हो ना हो, जी हाँ, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और आपको कई बार तैयारी का मौका भी नहीं मिलता। आप अपनी ज़िंदगी में मस्त जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसा हादसा होता है कि आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ उन कंटेस्टेंट के साथ। उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था। एक अच्छी फैमिली में वो पैदा हुए थे, एक अच्छे स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी, एक अच्छे कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल की थी और एक बहुत ही बढ़िया सी अच्छी सैलरी वाली उनकी जॉब थी। और जिस लड़की से वो प्यार करते थे, वो भी उन्हें मिल गई। उससे हो गई थी उनकी शादी, और शादी के 2 साल के बाद उनका हुआ एक बेटा। यानी कि देखा जाए तो हम सब जो परफेक्ट लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब उनके पास था। घर था, उनके पास गाड़ी थी, उनके पास उनका प्यार था, उनका परिवार था, बच्चे थे, सब कुछ था। लेकिन ज़िंदगी ने करवट ऐसी बदली कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। और जब उन्होंने ये कहानी उस होस्ट को सुनाई, तो वो होस्ट से होते हुए हम सबके दिलों में ऐसे बैठ गई कि समझ में नहीं आया कि अगर हमारे साथ भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो, तो हम उस चीज़ को कैसे लेंगे। उन्होंने लेकिन हमें एक नई दिशा दी। मैं कह रही हूँ ना, बार बार नई दिशा, हर चीज़ को देखने का एक अलग नज़रिया होता है, और उन्होंने वो नज़रिया दिया। उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ जो मैंने उस दिन सुनी। और उस कहानी के बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने जो छोटे से बच्चे हैं ना उसका बर्थडे प्लान किया। उन्होंने कहा बहुत ही ग्रैंड उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। मतलब सारी चीज़ें उनकी आंखों में थी कि उन्हें क्या क्या करना है। और उसके बाद वो एक दिन ऑफिस के लिए सुबह निकले, लेकिन ज़िंदगी बस वहीं पर बदलने वाली थी। उनका एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद जब उन्होंने होश संभाला तो उन्होंने पाया कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। उनकी बॉडी के कई जो पार्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे, ना उनका हाथ अच्छे से चल रहा था ना उनके पैर। और पता है वक्त कितना गुजर गया था? कम से कम 6 महीने। 6 महीने तक वो लगभग कोमा में रहे थे। उनकी आंखों ने, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। उनका बिजनेस और उनका जो काम था, वो कारोबार था, वो ख़त्म हो चुका था। उनकी नौकरी जा चुकी थी और तो और उनके इलाज में इतना खर्चा हुआ था कि उनकी गाड़ी बिक गई थी, उनका घर भी बिकने वाला था। उनकी पत्नी, जिन्होंने कभी काम नहीं किया था घर निकल के, क्योंकि उनके आगे पीछे तो नौकर चाकर घूमते थे ना, लेकिन वो बाहर जाकर काम करने को मजबूर हो गई थी क्योंकि घर संभालना था। बहुतों के लोन चढ़ गए थे, कईयों से कर्जा ले लिया था, लेकिन उनकी हालात में सुधार नहीं आ रहे थे। पर फिलहाल कुछ लोगों ने फरिश्ते बनके मदद भी करी। उन्हें विदेश भेजा गया जहां पर शायद उनका इलाज हो सके, लेकिन उनकी आँखों में इस कदर कांच के टुकड़े घुस चुके थे कि वो आँखें अब देखने के लायक नहीं बची थी। यानी कि जिन आँखों में अपने बच्चे के बर्थडे मनाने के सपने थे, वो सपने चूर हो चुके थे। ये होने के बाद भगवान न करे ऐसा कुछ गलत आपके साथ हो तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, कभी कभी इंसान के मन में जो आता है ना, उनके मन में भी ऐसा ही कुछ आया। उन्होंने भी सोचा कि मैं सब पे बोझ नहीं बनना चाहता और इसलिए मुझे शायद अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त में उनकी ढाल पता है कौन बनी? उनकी पत्नी, जिन्होंने उनसे न सिर्फ प्यार किया था बल्कि सच्ची जीवन साथी बनकर उनका सहारा बनी और उनको हिम्मत

जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरीके की मदद बनी थी उनकी पत्नी, उनकी जीवन साथी उनके जीवन में, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारा साथ तो है। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक बच्चे के सर पे उसके पिता का हाथ भी है, माँ का हाथ भी है और जीवन साथी भी एक दूसरे के साथ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? परिवार साथ हो तो वैसे भी बहुत सारी मुश्किलें आपकी हल हो जाती हैं। और उन्होंने, उनकी जो पत्नी थी वो तो काम करती ही थी, वो अपने पति को भी अपने साथ उस जगह पर ले जाती थी जहाँ वो पढ़ाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो देख नहीं सकते थे और शरीर से भी काफ़ी लाचार थे, तो ऐसे में वो अकेले नहीं छोड़ सकती थी उन्हें, तो वो दो बच्चों को पाल रही थी और उन्होंने काफ़ी उनके लिए किया। और उनके पति को भी लगा कि जब मेरी पत्नी इतना सब कुछ कर रही है तो मेरा भी कुछ तो फ़र्ज़ बनता है। और उन्होंने पता है किस चीज़ का सहारा लिया? उन्होंने लिया सोशल मीडिया का सहारा, जिसे अक्सर हम लोग गलत भी मानते हैं लेकिन उन्होंने उसी का सहारा लिया। और वहाँ से उन्होंने कई सारी ज्ञान की बातें सुननी, समझनी, सीखनी शुरू करी, क्योंकि दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, सुनाई तो देता है ना, समझ में तो आता है। और यहाँ से उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया कि वो पहुंच गए एक ऐसे गेम शो में जहां पर अच्छे भले लोग भी नहीं जा पाते, और उन्होंने बहुत अच्छी राशि जीती। उनकी आंखें शायद अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, ये बात तो वो भी जानते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं उनको हल करने में उन्होंने फिर से एक बार अपनी जो ताकत है वो दिखा दी। तो इसे ही कहते हैं कि ज़िंदगी में बदलाव कभी भी आ सकते हैं, आप तैयार रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान जाइए। कहते हैं ना कि जो आपको मिला है उस पे कद्र कीजिए, उस पे गर्व कीजिए, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए सब्र भी कीजिए। और हमेशा हार मान जाने वालों से जो आप सीखते हैं कि हार मान जाना बहुत आसान है, कुछ भी कर लेना आपके लिए बहुत आसान होता है कि भाई ये चीज़ नहीं हो रही, छोड़ो, मेरे से नहीं होगी, लेकिन एक बार कोशिश करके तो देखिए, हो सकता है हो जाए। और मुझे लगता है इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी कुछ ना कुछ प्रेरणा तो ज़रूर मिलेगी, मिली होगी कि परिवार कैसे साथ होता है और कैसे मुश्किल वक्त में भी आप अपनी खुद की भी हिम्मत बन सकते हैं।

कहानी से या ये सत्य घटना से कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर हमें बताइएगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाने की इजाज़त दीजिए क्योंकि आप सबको भी तो अपने काम पे निकलना होगा ना भाई। सुबह का समय है, सब अपने अपने काम पे निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में भी ऐसा होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपके आसपास बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिससे आप काफ़ी कुछ सीख कर अपने आप को बचा भी सकते हैं और आपके अनुभव में एक अनुभव जोड़ भी सकते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाज़त। गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और ज़िंदगी में दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की।

0: बिहार, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाज

0: चार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
2: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे आप, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहाँ टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
3: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
1: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसल

0: धार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ है शशांक कुमार।
1: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
0: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमेरिका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईडी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस, इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस तृणमूल कांग्रेस नेम एंड सिंबल, आस्क्स राइवल फैक्शंस टू पिक न्यू वंस फॉर वेस्ट बंगाल बाय पोल्स। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD

0: शख्सियत का तायुन किया जाता है। वजारत खजाना नई दिल्ली में विकसित भारत की जानिब भारत के सफर की माली एयानत पर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी, जिसका आगाज आज से हो रहा है। वजारत ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वजरा खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरीज के लिए होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मुख्तलिफ वजरा आला और रियासतों के वजरा खजाना के हमरा कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी अवामी जिंदगी के 25 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। उनका यह सफर अवामी खिदमत के जरिए मुल्क की खिदमत के मंत्र पर मबनी है और यह सिलसिला आज तक जारी है। खिदमत और अच्छी हुकुमरानी के नजरिए से तहरीक पाकर हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ के लिए मुसलसल कोशां हैं। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाख्तियार बनाए जाने के अहद के तहत लोगों की जिंदगियों में यकसर तब्दीली आ रही है। इस सिलसिले में आज हम नक्सलिज्म के खात्मे पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर खित्ते में नक्सलिज्म के खात्मे के बाद गोलियों की आवाज़ों के बजाय एक बार फिर स्कूल की घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। बस्तर खित्ते में सिक्योरिटी कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से जदीद अवामी खिदमात के मराकज में बदल गए हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम बस्तर की बदलती हुई तस्वीर की अक्कासी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इलाके दहशतज़दा थे वो अब हुनर के लिए मौके पैदा कर रहे हैं।
2: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजारत खारजा ने 1980 के पासपोर्ट जाब्तों में तरमीम करते हुए पासपोर्ट से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया गया 36 सफहात पर मुश्तमिल एक आम पासपोर्ट 5 साल तक या उसकी उम्र 18 साल होने तक जो भी पहले हो काबिल कबूल रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में हल्के जंगी तैयारे तेजस फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस ट्विन सीटर ट्रेनर्स और HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय फिजाइया को सौंपेगी। वो पवन हंस लिमिटेड को आइंदा सिलसिले के ध्रुव हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू शिरकत करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जाना अंदरून मुल्क सलाहियतों के इस्तेहकाम और गैर मुल्की जराए पर इन्हिसार को कम करने की जानिब एक और कदम है। दिफाई अमले के सरबराह जनरल धीरज सेठ ने रूस के अपने 3 रोजा सरकारी दौरे के तहत रूस की जमीनी अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस राबते में फौजी इश्तराक को मुस्तहकम करने और तरबती राबतों को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान सलाहियत साजी को मजबूत करने पर भी तवज्जो दी गई। अपनी आमद पर जनरल धीरज सेठ को रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में उन्होंने मॉस्को में नामालूम फौजी के मकबरे पर खराज अकीदत पेश किया। अमरीका और ईरान के दरमियान महाज आरई के तनाजुर में ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते होने वाले अकवाह मुत्तहदा जनरल असेंबली के आला सतह के इजलास में शिरकत के लिए ईरान के सरकर्दा रहनुमाओं के लिए वीजा की मंजूरी दे दी है। इनमें ईरान के सदर मसूद पेदशकियान और वजीर खारजा अब्बास अराकची शामिल हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान 6 महीने से ज्यादा अरसे से जारी टकराव के तनाजुर में यह कदम गैर मामूली है। उधर यमन में ईरान की पुष्ट पनाही वाले हौसी बागियों ने सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे और बहर अहमर में बहरी जहाजों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रूस और चीन ने अकवाह मुत्तहदा की उस करारदाद को वीटो कर दिया है जिसकी रूह से अकवाह मुत्तहदा माहिरीन को ईरान के खिलाफ दोबारा आयद की गई पाबंदियों की निगरानी जारी रखने का अख्तियार मिल जाता। ईरान के एटमी प्रोग्राम के मामले पर पिछले साल ये पाबंदियां फिर से नाफिज की गई थीं। اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیاں اب بھی نافذ ہیں، جن کے تحت بیرون ملک ایران کے اثاثوں پر روک، ایران کے ساتھ ہتھیار

0: हथियारों के समझौतों की मुअत्तली और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ताल्लुक से ताजीरी कार्रवाई करना शामिल है। पाकिस्तानी फौजियों ने बलूचिस्तान में 3 शहरियों को हलाक कर दिया है। इंसानी हकूक की एक अहम तंजीम ने इंकशाफ किया है कि 3 लाशें जिला ग्वादर में दनुक और कुलदन इलाके में मिली हैं। ये ताज़ा वाकया सूबे में मावराए अदालत कत्ल और जबरन गुमशुदगी की लहर के पस मंजर में पेश आया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज बिहार, उड़ीसा, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। मौसमियात की एजेंसी ने आज कौमी राजधानी में आमतौर पर मतला अबरालूद रहने की पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर्स और एक गेंद में महज 94 रन पर आउट हो गई। इससे कबल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों सेमिकॉन इंडिया 2026 के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने वज़ीर आज़म के हवाले से सुर्खी लगाई है, मुल्क में सेमीकंडक्टर का निज़ाम तेज़ी से फैल रहा है, दूसरे फेज़ के लिए $13.5 अरब सरकार खर्च करेगी। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, अमरीकी टैरिफ पर भारत का रद्द अमल, 140 करोड़ लोगों के मफादात से कोई समझौता नहीं। TMC के इंतखाबी निशान और नाम के इस्तेमाल पर इंतखाबी कमीशन के जरिए रोक लगाए जाने की खबर को भी अखबार ने नुमाया किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों की हलाकत की खबर को रोजनामा इनकलाब ने कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, हौसियों के खिलाफ सऊदी अरब का बड़ा हमला, एक शहरी हलाक, मवासलाती टावर तबाह।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव निशान पर रोक लगा दी है और हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात के लिए नए नाम और नए चुनाव निशान का इंतखाब करें। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पीहू पांडे द्वारा गाया राग मियाँ की तोड़ी। सहयोगी कलाकार रहेंगे तबले पर निमित जैन और हारमोनियम पर संगत रहेगी क्षितिज सिंह की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना पीहू पांडे का गायन, राग था मियाँ की तोड़ी। सहयोगी कलाकार थे तबले पर निमित जैन और क्षितिज सिंह थे हारमोनियम पर। श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सामाजिक जीवन। आलेख एवं स्वर मधु शर्मा।
1: महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक काल माना जाता है। वे वर्ष 1893 में एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उस समय उन्होंने वहाँ रहने वाले भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों के साथ होने वाले जातीय भेदभाव, सामाजिक अन्याय और अमानवीय व्यवहार को निकट से देखा। यही अनुभव उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया और वे केवल एक वकील न रहकर समाज सुधारक, मानव अधिकारों के रक्षक तथा विश्व के महान नेताओं में से एक बन गए। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए लगभग 21 वर्षों ने गांधी जी के व्यक्तित्व, विचारों और सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान की। वास्तव में यदि दक्षिण अफ्रीका का प्रवास न होता तो संभवतः दुनिया को वह महात्मा गांधी नहीं मिलते जिन्हें आज सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अधिकांश भारतीय मजदूर

स्थानों, रेलगाड़ियों, न्यायालयों, विद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भारतीयों को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उन्हें यूरोपीय लोगों से निम्न समझा जाता था और कई स्थानों पर उनके प्रवेश पर भी प्रतिबंध था। भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं था तथा उन्हें अनेक कठोर कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता था। इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने गांधी जी को भीतर तक झकझोर दिया। स्वयं गांधी जी भी इस भेदभाव के शिकार बने। पीटर मेल्ट्सबर्ग रेलवे स्टेशन की प्रसिद्ध घटना में उनके पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद केवल भारतीय होने के कारण उन्हें रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। उन्हें ठंडी रात स्टेशन पर बितानी पड़ी। इसके अतिरिक्त उन्हें अदालत में पगड़ी उतारने के लिए कहा गया और कई होटलों में ठहरने से भी मना कर दिया गया। इन घटनाओं ने गांधी जी के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि वहां रहने वाले सभी भारतीयों और पीड़ित लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। गांधी जी ने सबसे पहले भारतीय समुदाय को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने अनुभव किया कि बिखरा हुआ समाज अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना तथा सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुँचाना था। गांधी जी ने लोगों को जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट रहने का संदेश दिया। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में आत्मविश्वास, संगठन और नेतृत्व की भावना विकसित हुई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सामाजिक जीवन अत्यंत सादा, अनुशासित और आदर्शवादी था। वे सादगी, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी विचार को व्यवहार में उतारने के लिए उन्होंने फिनिक्स आश्रम तथा बाद में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इन आश्रमों में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति खेती करता था, सफाई करता था, भोजन बनाता था, अन्य कार्यों में समान रूप से भाग लेता था। वहाँ जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी अथवा ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था। इन आश्रमों ने सहयोग, समानता और आत्मनिर्भरता का एक आदर्श समाज प्रस्तुत किया। गांधी जी का विश्वास था कि किसी भी समाज का वास्तविक विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों से होता है। इसीलिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, ईमानदारी, अनुशासन और सेवा को जीवन का आधार बनाया। वे स्वयं इन सिद्धांतों का पालन करते थे और दूसरों को प्रेरित करते थे। उनका मानना था यदि व्यक्ति का चरित्र मजबूत होगा तो समाज और राष्ट्र स्वतः मजबूत बनेंगे। उन्होंने लोगों को सत्य बोलने, ईमानदारी से कार्य करने तथा दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखने की शिक्षा दी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने शिक्षा को भी सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम माना। उनका विचार था शिक्षा केवल पढ़ना लिखना नहीं है बल्कि अच्छे चरित्र, अनुशासन और जिम्मेदारी का विकास भी है। उन्होंने बच्चों और युवाओं को व्यवहारिक शिक्षा देने पर बल दिया। आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेती, सफाई, हस्तकला और अन्य उपयोगी कार्य भी सिखाए जाते थे। इससे उनमें आत्मनिर्भरता, श्रम के प्रति सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती थी। गांधी जी ने स्वच्छता को भी सामाजिक सुधार का आवश्यक अंग माना। वे स्वयं आश्रमों की सफाई करते थे और शौचालय साफ करने में भी संकोच नहीं करते थे। उनका मानना था कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि सभ्य समाज की पहचान भी है। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि किसी भी प्रकार का श्रम छोटा नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति को समाज की स्वच्छता एवं व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह और अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष। जब सरकार ने भारतीयों पर अन्यायपूर्ण पंजीकरण कानून लागू किया तब गांधी जी ने शांतिपूर्ण विरोध का मार्ग अपनाया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन न करें, चाहे इसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़े। हजारों भारतीय उनके नेतृत्व में इस आंदोलन से जुड़े। अनेक लोगों ने जेल यात्राएं की, कठिनाइयां सहन की, लेकिन किसी ने हिंसा का

0: मार्ग नहीं अपनाया। अंततः सरकार को कई कठोर कानूनों में परिवर्तन करने पड़े। गांधी जी ने महिलाओं की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उस समय अधिकांश महिलाएं सार्वजनिक जीवन से दूर रहती थीं, परंतु गांधी जी ने उन्हें सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अनेक महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया, जेल गईं और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहीं। गांधी जी का विश्वास था कि समाज का विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से राष्ट्र निर्माण में भाग लें। धार्मिक सहिष्णुता गांधी जी के सामाजिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था। दक्षिण अफ्रीका में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्मों के लोग रहते थे। गांधी जी ने सभी धर्मों का समान सम्मान किया। ये नियमित रूप से विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे और मानते थे कि सभी धर्म मानवता, प्रेम और सत्य का संदेश देते हैं। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास, भाईचारा और सहयोग की भावना विकसित करने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रेस और जनमत की शक्ति का भी प्रभावी उपयोग किया। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्र के माध्यम से वे भारतीयों की समस्याओं, उनके अधिकारों, सामाजिक सुधार संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। इससे भारतीय समुदाय में जागरूकता बढ़ी और उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों ने गांधी जी को यह सिखाया कि किसी भी अन्याय का उत्तर हिंसा नहीं बल्कि सत्य, धैर्य और नैतिक साहस से दिया जा सकता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि समाज संगठित हो, अनुशासित हो और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तो बिना हिंसा के भी बड़े परिवर्तन संभव है। यही सिद्धांत आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति बने। अंततः कहा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका का प्रवास महात्मा गांधी के लिए सामाजिक जीवन की आधारशिला था। यहीं उन्होंने सत्य, अहिंसा, समानता, सेवा, स्वावलंबन, धार्मिक सहिष्णुता और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों को व्यवहार में उतारा। उन्होंने केवल भारतीयों के अधिकारों की रक्षा ही नहीं की बल्कि संपूर्ण मानवता को न्याय, प्रेम और शांति का मार्ग दिखाया। भारत लौटने के बाद उन्होंने इन्हीं अनुभवों और सिद्धांतों के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इसलिए दक्षिण अफ्रीका का उनका सामाजिक जीवन केवल उनके व्यक्तिगत विकास की कहानी नहीं बल्कि विश्व इतिहास में मानव अधिकार, सामाजिक न्याय और नैतिक नेतृत्व का एक प्रेरणादायक अध्याय है। आज भी उनके विचार हमें समानता, सेवा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं तथा एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का संदेश देते हैं।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सामाजिक जीवन। आलेख एवं स्वर मधु शर्मा।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 10 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में, उसके उपरांत अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
2: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट है और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के

0: परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
1: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई बैंक के सरायकेला शाखा में कथित बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी की जांच के तहत की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। भारत ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें अगले सप्ताह अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने पिछले वर्ष भी वीजा नहीं मिलने के बाद वीडियो के जरिए संबोधन किया था। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली में भी आज बादल छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। एशियन गेम्स 2026 में आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम मेजबान जापान के खिलाफ पहली बार खेलेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जापान के कुरोगी एथलेटिक पार्क में खेला जाएगा। भारत की टीमें आज सॉफ्ट टेनिस और टेक बॉल में भी मुकाबले खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigam and Rejinagar in West Bengal. Here is a report from our correspondent.
3: In an interim order issued yesterday, the Commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the Commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The Commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently two rival groups within the Trinamool Congress, with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the Commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The Commission will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Both Houses of Parliament on 12th of August gave their nod to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to a Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. The Enforcement Directorate, ED, is conducting search and seizure operations at 7 locations across Jharkhand and Odisha,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 10:10 और पूरे 17 सेकंड्स हो चुके हैं, और साथ ही साथ वक्त हो चुका है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। जी हाँ, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी हाँ, कार्यक्रम तो स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ आपके मैसेजेस जो है ना वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। बट देखिए दोस्तों, कुछ ना चीज़ें मैं आप सभी के साथ ना क्लियर करना चाहती हूँ। वो ये कि आप एक तो ना रिपीट प्लीज़ मत करें, बार बार अपने मैसेजेस को ना भेजें। और मुझे दिल से खुशी होगी अगर जिस बारे में आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे ना, तो उससे रिगार्डिंग अगर आप मुझे मैसेजेस करेंगे ना, इस कार्यक्रम में मैसेजेस करेंगे ना, तो एक तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हो जाएगा, चार चांद लग जाएंगे, और दूसरा ये कि मैं भी ना खुश हो जाऊंगी, आप मेरा दिल जीत लेंगे। जी हाँ, आप मेरा दिल जीत लेंगे। और इस दिल जीतने के लिए ना आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, संदेश भेजने पड़ेंगे। और किस पे भेजने पड़ेंगे? ईमेल आईडी हमारा आपको पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, ipradiodelhi@gmail.com पर आप अपने संदेश जो ना हमें भेज सकते हैं। अभी जो मैं बात कर रही हूँ ना, उसके अंदर आज के टॉपिक की जो है ना एक हिंट जो है वो छिपा हुआ है। अगर कोई पहचान गया है तो वो मुझे मैसेज करके फौरन बता सकता है। उसे अभी के अभी हम उस कहते ना मैसेज को ऑन एयर करेंगे और बताएंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं ना बहुत बहुत बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। कुछ कुछ को तो पता ही है।

देखिए अभी एक गाना ना पूरा होने वाला है और अभी तक ना किसी ने भी ना रिलेवेंट जो है ना मैसेज नहीं भेजा है, भेज रहे हैं, अपनी फरमाइशें भेज रहे हैं, बातें भेज रहे हैं, लेकिन ना चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसी के दिल को जीतने की। जी हाँ, आप किसी का दिल किस तरीके से जीत सकते हैं इसके तरीके ज़रा आज मुझे बताइए आप, या फिर वो तरीके बताइए जो अक्सर दिल जीतने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो मैं आपको अभी बता देती हूँ जो अक्सर बोला जाता है ना कि अगर किसी के दिल को जीतना है ना तो डियर उसके लिए टेस्टी खाना बना दीजिए। जी हाँ, क्योंकि दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से होकर गुजरता है, मतलब पेट से होकर गुजरता है दिल का रास्ता, दिल तक पहुंचने का रास्ता। तो भाई एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, बाकी तरीके आप बताएंगे, ये आप सभी के ऊपर है कि आप किस तरीके से किसी का दिल जीतते हैं ना,

0: वो मुझे बताइए बस आज।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार

साथ ही साथ ना अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है ना वो चल रहा है और इसमें अक्सर ये जो संदेश है ना वो आपको सुनाई दे जाता है, दे जाया करता है। और बस ये जो सुनने वाली आदत है ना इसको बरकरार रखिए, सुनिए हम क्या कह रहे हैं और बताइए कि आखिर आप किसी का दिल जीतने के लिए क्या तरकीब करते आजमाते हैं या क्या तरीका आजमाते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए

देखिए संदेश आने शुरू हो गए और ये कह रहे हैं, एक जो संदेश हमें मिल रहा है वो कहते हैं, पहले कहाँ से भेजते हैं ये बता दूं मैं आपको, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि किताबें किसी के दिल को जीतने और विचारों का आदान प्रदान करने का एक बेहद खूबसूरत और गहरा तरीका है। वाकई में पहले जो होता था ना, किसी के दिल को जीतना होता था ना, पहले पुराने ज़माने में थोड़ा रेट्रो अगर एरा में चले जाएं तो उस वक्त क्या होता था ना, जब कॉलेज में हम पढ़ते थे, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की तो नहीं हूँ लेकिन मुझसे भी ज़्यादा पुराने ज़माने में जब लोग थे ना, उस वक्त क्या होता था, दिल जीतने के लिए, किसी के दिल में घर करने के लिए ना, लव लेटर्स जो है ना वो किताबों में रख देते थे और बस अपने दिल की बात जो है वहाँ तक पहुँचा देते। तो ये तो तरीका है दिल की बात दिल तक पहुँचाने का। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप अगर किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करते हैं, ये तरीका ज़रा बताइए हमें।

0: बन के साया मेरे संग रहता है कौन। मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले।
1: अगला संदेश ना बहुत लंबा सा है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कोशिश करूंगी बोलने की। ये भेजा मैं रोशन देवांगन जी ने, लिख कहाँ से रहे हैं, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। साथ में है इनके कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन। एंड प्लीज आप ना अपना नाम जो है ना वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आप शो सुन रहे हैं ना और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि आपका नाम ले लिया गया है, तो आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा ये संदेश क्या भेज रहे हैं, कहते हैं किसी के दिल को जीतना किसी जादू से नहीं बल्कि प्यार सम्मान और सच्चे व्यवहार से संभव होता है। सच्चाई से बात करें, झूठ और दिखावे से नहीं अपनेपन से रिश्ते बनते हैं। सामने वाले की बातें सुने केवल अपनी कहने के बजाय उसकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है। प्यार तभी खूबसूरत लगता है जब उसमें सम्मान और विश्वास होता है। मुश्किल समय में साथ दे, खुशी में तो हर कोई साथ देता है, असली रिश्ता परेशानी में पहचाना जाता है। छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें, एक प्यारा सा संदेश, हालचाल पूछना या बिना वजह मुस्कुरा देना भी छू सकता है आपके मन को, आपके दिल को। भरोसा कायम रख सकते हैं, दिल जीतने में समय लगता है लेकिन विश्वास टूटने में एक पल भी नहीं लगता। दिल पर राज करने के लिए खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि खूबसूरत व्यवहार की जरूरत होती है, जिसके साथ रहकर सामने वाला खुद को सुरक्षित, सम्मानित और खुश महसूस करे, उसके दिल में आपके लिए जगह अपने आप बन जाती है। वाकई में बहुत खूबसूरत संदेश जो है ना वो आपने दिया है हमें, और इतना बड़ा संदेश है। देखिए मैं कह रही थी मैं शॉर्ट में इसको पढ़ूंगी, लेकिन देखिए मैंने पूरा इसको पढ़ दिया है वाकई में। चलिए इन्होंने तरीके बताए, इन्होंने बहुत सारे तरीके बता दिए दिल जीतने के। अब बाकी हमारे जो और श्रोता है ना उनसे भी गुजारिश है, वो भी हमें ज़रा है ना संदेश के ज़रिए बताएं कि आखिर वो किसी का दिल अगर जीतते हैं तो किस तरीके से जीतते हैं।

0: का।
1: देखिए इसमें भी ना हीरो जो है ना वो हीरोइन का दिल जीतने के लिए उसकी किस तरीके से तारीफ कर रहा है। बस ऐसी ही कुछ और बातें हैं ना, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। ईमेल आईडी आपको पता है, कार्यक्रम आपको पता है, वक्त आपको पता है, मुझे आप जानते हैं। मैं हूँ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, और चलते हैं अगले संदेश की ओर। ये भेजा मैं सतीश अनेजा जी ने, ये कहते हैं, नमस्कार अर्चना बहन जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है हमारे खूबसूरत से आपके अपने कार्यक्रम में। परमात्मा, ये कहते हैं कि परमात्मा ने कहा है कि आप सबसे प्यार करो, अपनी तकलीफें मुझ पर छोड़ दो, बस इसी बात पर अमल करते हुए सबसे मोहब्बतें बांटते हैं। कभी कोई गलती हो भी जाए तो माफी मांग लेते हैं और गले लगा लेते हैं। जब मन में नम्रता और दिल में प्यार का जज्बा हो तो हर किसी का दिल जीत सकते हैं, और जीत भी रहे हैं। जो एक बार मिल जाए तो ऐसी छाप छोड़ते हैं कि वो अपना बन ही जाता है। परमात्मा ये सत्कार प्यार कायम रखे। बिल्कुल, प्यार एक ऐसी चीज है जिससे आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं। आप इंसान ही नहीं बल्कि भगवान को भी अपने काबू में कर सकते हैं। ये जो संदेश है वो, ये जो बात है वो आप शायद अपने संदेश में आपने क्लियर कर दिया है। और देखिए ना, जो हमारे पेट्स होते हैं वो भी प्यार के भूखे होते हैं। आप प्यार से उनका भी कितने अच्छे तरीके से दिल जीत सकते हैं। वो आपके साथ रहते हैं जस्ट लाइक एक ह्यूमन जो होते हैं ना, इंसान की तरह रहते हैं। तो एक प्यार एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे आप हर किसी का दिल जीत सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए।

देखिए संदेश इतने सारे आ रहे हैं ना कि मुझे गाने को बीच बीच में थोड़ा सा ड्रॉप लेना पड़ेगा और पीछे चलता रहेगा, सुनते रहेंगे, वो सुनाई देगा भी आपको, बट साथ में संदेश भी लेते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। फिर पता क्या होगा, फिर कंप्लेंट आएंगी कि हमारा संदेश नहीं लिया, हमारा संदेश नहीं लिया। अगला संदेश है हरजिंदर सिंह भाटिया जी का। ये लिखते हैं सबसे पहले स्टेशन रोड जमशेदपुर से, साथ में एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया। ये कहते हैं किसी का दिल जीतने के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए।

चलिए अभी तो मैं आपसे कह रही थी कि जो है ना कंप्लेंट वाले ईमेल्स आने शुरू हो जाएंगे। अभी तो देखिए कार्यक्रम शुरू हुए, मुश्किल से 15 मिनट हुए और आने भी शुरू हो गए हैं। और ये कहते हैं, पहले तो मैं बता दूं कि हमारे इतने प्यारे श्रोता कौन है जिन्होंने हमें कंप्लेंट वाला मेल भेजा ही है। चरणदास जी, साथ में राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी, चौधरीवास, हिसार, धन्यवाद, साथ में धन्यवाद भेजा इन्होंने हिसार से। और ये कहते हैं, कितने ही तरीके आजमा कर देख लिए हमने, कितने ही तरीके आजमा कर देख लिए, दिल्ली आकाशवाणी का दिल जीतना मुश्किल, बिल्कुल दया नहीं है, मनमर्जी वाली ईमेल शामिल हो करते हैं। देखिए अगर मनमर्जी वाली करनी होती तो आपकी शामिल क्यों करते जनाब हम, आप इतने प्यारे हैं, आपकी तो शिकायतें भी हमारे सर आंखों पे, बस आपकी इस वाली शिकायती

वाली जो मेल है ना, इसने हमारा दिल जीत लिया, बड़े ही प्यार से, बड़े ही मतलब कहते ना बहुत ही अच्छे उम्दा लहजे के साथ आपने हमें शिकायती मेल भेजा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लेकिन आप हमें सुन रहे हैं, इसका पता चल रहा है कि अब तो बिल्कुल ही पता चल चुका होगा कि हमने आपका मेल ले लिया है। इट मीन्स आप सुन रहे हैं हमें।

बोधराज खोरवाल जी का संदेश हमें मिल रहा है उत्तम नगर दिल्ली से, साथ में कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, ये कहते हैं दिल जीतने के लिए स्नेह और प्यार की जरूरत होती है, अच्छे अच्छे लोग भी प्यार के आगे झुक जाते हैं, यही एक मंत्र है किसी के दिल को जीतने का। ये लाइन मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। बहुत खूबसूरत संदेश आपने हमें भेजा, थैंक यू सो मच।

0: ये बिखरी बिखरी जुल्फें।
1: अगला संदेश तुलसी मस्किन जी का हमें मिल रहा है, ये कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, किसी का दिल जीतने के लिए एक गुलाब का फूल दे दीजिए और रेडियो सुनकर अर्चना जी का दिल जीत लीजिए। ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने सर, आप अगर मुझे सुन रहे हैं ना तो आप मेरा बिल्कुल दिल जीत चुके हैं, जीतना नहीं आप जीत चुके हैं, और ऐसे ही दिल जीतते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका पूरा जो है ना संदेश मैं पढ़ दे रही हूँ, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से आप हमें लिख रहे हैं, साथ में वीना मस्किन, डब्बू सम्राट चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना।

कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, मैं हूँ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। वक्त हो चुका है यहाँ पर 10:30 और पूरे के पूरे होने वाले हैं 20 सेकेंड्स। अगले संदेश की ओर चलते हैं। गुलाबदास मानिकपुरी जी का संदेश हमें मिल रहा है, ये कहते हैं हम किसी का दिल जीतने के लिए बस एक जादू लगाते हैं, अगर वो हमसे बड़ा है तो प्रणाम करते हैं। अच्छा, अगर वो हमसे बड़ा है तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं और भी बार बार करते, अगर छोटा है तो प्यार हमेशा प्यार से हमेशा बात करते हैं। आपका भी दिल जीतने की कोशिश है प्रणाम और प्यार से बात करके। मेरे लिए तो सर प्यार से बात कर लीजिए, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है मुझे। और आप लिख रहे हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत संदेश हमारे हम तक भेजने के लिए।

अगला संदेश मिल रहा है साहिल धर जी का, नहीं शाहिल डार जी का। ये लिख कहाँ से रहे हैं? श्रीनगर कश्मीर से हमें ये लिख रहे हैं। साथ में है शाहिल डार उर्फी जॉन। दिल जीतने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि सच्ची मुस्कान, सम्मान, भरोसा और अपनापन चाहिए। किसी के सुख दुख में साथ देना और बिना स्वार्थ के परवाह करना ही दिल जीतने का सबसे खूबसूरत तरीका है। बहुत बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने हमें लिखकर भेजी अपने संदेश में, और वाकई में ऐसा होना भी चाहिए। थैंक यू सो मच संदेश भेजने के लिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है फारूख अली खान जी का, और ये लिख कहाँ से रहे हैं, कस्बा गुन्नौर यूपी से। साथ में हैं इनके अली खान, फैजी, फराज, फरीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, बहुत सारे नाम इनके साथ हैं, और ये सभी आई एम श्योर कि हमारा कार्यक्रम जो है ना वो सुन रहे होंगे। और संदेश इन्होंने भेजा है, किसी का दिल जीतने के लिए आपके खूबसूरत अल्फाज ही होते हैं जो कि खरीदे नहीं जाते, जिसे भी मिले खुश होकर मिले, बुजुर्गों का ख्याल रखें। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत बात आपने अपने संदेश में कही है, और वाकई में ऐसा होना भी चाहिए।

अगला संदेश आ रहा है अहमद फूल वाले जी का, ये कहते हैं, नमस्कार अर्चना जी, आप अक्सर किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो अपनी जुबान में मिठास यानी मीठी वाणी और प्यार से बोलें, इससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, ये तरीका हमने आजमाया है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन तरीका है, अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे तभी आप उसके दिल तक पहुंच सकते हैं, और अगर आपने उसको डांट के गुस्से में झल्ला के बात की तो मजाल है, वो आपको अपने पास भी फटकने देगा, दूर से ही टाटा बाय बाय कर देगा, अपना रास्ता बदल लेगा। तो ये सबसे मतलब ज़रूरी और बहुत ही ख़ास तरीका है, ज़रूरी तरीका है कि आपकी ज़बान में मिठास हो, तभी आप किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं। और आप हमें लिख कहाँ से रहे, ये लिख रहे हैं छोटी बलिया मुंबई करजत से, साथ में इमरान अहमद फूल वाले, आमना आसमा नसरीन इकबाल, सॉरी अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया, तो इकबाल अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार।

अगला संदेश हमें मिल रहा है धर्मेंद्र छीपा जी का। ये कहते हैं, आपकी पसंद आदरणीय मैडम जी नमस्कार, बेहतरीन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दिल को जीतने के लिए अपना स्वभाव मधुर रखिए, मीठा मीठा बोलिए, मीठी भाषा बोलिए, अगले का सम्मान करते हुए गलती पर माफी मांगे। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने अपने संदेश में बोली है, बताई है, लिखी है कि अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसके लिए मतलब कहते हैं ना कि एटीट्यूड ना दिखाएं, अपनी गलती को मानते हुए माफी मांग लें। बहुत अच्छी बात कही है आपने। आप लिख रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, साथ में है कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार।

जी हाँ, म्यूजिक तो चल रहा है, बहुत सारा म्यूजिक चल रहा है। हमने सोचा थोड़ा सा आपको वक्त का ज्ञान करवा दें। जी हाँ, समय का ज्ञान करवा दें। वक्त हो चुका है 10:36 और पूरे 35 सेकेंड्स। प्रोग्राम चल रहा है आपके पसंद। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अर्चना।

अगला संदेश लेते हैं संदीप मक्कर जी का, और ये लिख कहाँ से रहे हैं इन्होंने, चलिए बताते हैं हम आपको। ये कहते हैं कि आज के टाइम में किसी को समझाना बहुत मुश्किल है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बात तो सही है आपको आपकी, क्योंकि ना आजकल लोग जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि वक्त ही ऐसा नहीं रहा कि हम किसी पे विश्वास करके उसकी बातों में आए, उसकी बातों को माने, उसके कहे को सुने और उसके कहने के अनुसार अपना जो आचरण करें या फिर काम करें। और वाकई में ये बहुत सही बात भी कही है आपने। आपके साथ लिख रहे हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोराया जालंधर से। अगला संदेश हमें मिल रहा है डीडी वर्क मल्लापुर दाखा से, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन एंड एक्ट्रो जैन। ये कहते हैं कि जादू की झप्पे से दिल जीत लेते हैं। बहुत ही लाइक क्या हो मैं आपको, कि बहुत ही मज़ेदार तरीका है किसी के दिल को जीतने का, अगर कोई नाराज़ है ना। वैसे ये काम, ये जो झप्पे वाला जो आइडिया है ना, वो काम तभी करता है जब आपसे कोई नाराज़ हो। लेकिन अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, उसके लिए भी झप्पे वाला आइडिया चलता है, तो इट्स वेल एंड गुड दोस्त। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं भी कभी ट्राई करूँगी, अगर कोई किसी के दिल को मुझे जीतना हो तो मैं भी उसको झप्पे देकर ट्राई करूँगी कि क्या मैं उसका दिल जीत पाती हूँ झप्पे देके।

अगला संदेश हमें मिला है उत्तम सिंह जंघेल जी का, और ये लिख रहे हैं कहां से, भिलाई छत्तीसगढ़ से। ये कहते हैं कि दिल जीतने के लिए बड़े बड़े वादे नहीं, छोटे छोटे सच्चे और प्यारे व्यवहार ही काफी होते हैं। वाकई में अगर हम बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, तो अगर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो मतलब चाहते हैं कि वो हम उसका दिल जीत सके, जीत ले, और वही हमें ऑब्जर्व कर रहा है हमारे व्यवहार को देखते हुए, तो हम उसका दिल जीत सकते हैं अपने अच्छे व्यवहार के जरिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है लखपत राय जी का, आनंद पर्वत दिल्ली से। साथ में सूबेदार अमर सिंह वेद प्रकाश चौहान, ये कहते हैं, किसी के दिल को जीतने के लिए गुलाब सिर्फ एक फूल है, फूल नहीं है, प्यार और अपनापन जताने का एक खूबसूरत एहसास है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें एड ऑन करना चाहती हूँ कि एक एहसास तो है, एक बहुत ही खूबसूरत तरीका भी है। गुलाब की तरह रिश्तों में भी खुशबू तभी रहती है, तभी तक रहती है, जब उसमें सम्मान, सच्चाई, विश्वास और मीठी मुस्कान हो। किसी को सिर्फ गुलाब देना आसान नहीं है, लेकिन उसके दिल में अपनी जगह बनाना अच्छे व्यवहार और सच्चे दिल से ही संभव है। वाकई हमारे श्रोता जो है ना, बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, सब को पता है कि किसी का दिल जीतना है तो एक तो कहते हैं ना कि एक जो कॉमन तरीका वो यही है कि अपना व्यवहार अच्छा रखें, अपनी भाषा में मिठास रखें, अपनी बोली में मिठास रखें।

जी हाँ, यहाँ बात चल रही है किसी के दिल को जीतने के तरीकों पर, और आप भी बहुत सारे तरीके जो हमारे श्रोता हमें बता रहे हैं, इनमें से एक और संदेश हमें मिला है इंद्रजीत जी का। ये कहते हैं किसी का दिल जीतना हो तो सिर्फ खूबसूरत बातें करना ही काफी नहीं होता, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी बातों को ध्यान से सुनना, उसकी खुशियों में खुश होना और मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े रहना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल दिखावे से नहीं सच्ची परवाह सम्मान और अपनापन से जीता जाता है। वाकई में सिर्फ दिखावा करने ही काफ़ी नहीं होता कि आप अच्छा व्यवहार कर लें और दिखावा कर लें, लेकिन बाद में आप उनका दिल जीत के उनका दिल तोड़ दें, जिनका आप चाहते हैं हमेशा दिल जीत के रखना, उनके दिल में रहना, तो भाई अपने व्यवहार को हमेशा के लिए वैसे ही रखना होगा जैसा आपने उनका दिल जीतने के वक्त रखा है। और आप लिख रहे हैं हमें कहाँ से, नई दिल्ली वेस्ट से स्वीटी इंद्रजीत कौर और रविंदर सिंह,

अगला संदेश हमें मिला है प्रकाश वर्मा जी का, और लिख कहां से रहे, छत्तीसगढ़ पलारी से, साथ में प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, ये कहते हैं किसी का दिल जीतने के लिए रूप रंग से ज्यादा आपका व्यवहार और बातचीत का तरीका मायने रखता है। बिल्कुल, सूरत नहीं देखनी चाहिए दोस्त, सीरत देखनी चाहिए, जिसे पता चले कि वो इंसान आखिर कैसा है।

किसान सपकाल जी का संदेश हमें मिल रहा है। ये कहते हैं कि आदरणीय रचना दीदी, पहले तो थैंक यू सो मच आदरणीय बोलने के लिए। और सर मैं रचना दीदी नहीं हूँ, मैं अर्चना हूँ, ठीक है, आप ए लगाना शायद भूल गए। और ये कह रहे हैं कि प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये कहते हैं दीदी जी हम आपको सुन रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा? तो अगर आप हमें सुन रहे होते दोस्त तो आप हमें बताते कि आप मेरा दिल जीत कैसे जीतेंगे, मुझ तक पहुंचेंगे कैसे। आपने वो लिखा ही नहीं लेकिन फिर भी हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। एनीवेज बट अभी अब टाइम है, फटाफट से आप भेजिए हमें कि आप हमारा दिल कैसे जीतेंगे। हमारा तो छोड़िए, किसी का भी दिल जीतने के लिए आप क्या करते हैं ये तरीका हमें बताइए।

चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं अगले संदेश की ओर। ये हमें भेजा है सुधाकर जाधव जी ने, मुकाम पोस्ट काले गांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। साथ में है डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जुगताई राजे जाधव, संचित, प्रथमेश, सर्वद, हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख। ये कहते हैं मैं तो मेरे माँ बाप का दिल जीत लेता हूँ, क्योंकि राह पर मैं चलता हूँ काही सुलता हूँ और मेरे को मार्गदर्शन करते हैं और उनके मार्गदर्शन में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप अपने

पेरेंट्स के कहे राह पे चलते हैं और अच्छा काम करते हैं, आपका मार्गदर्शन जो आपके पेरेंट्स करते हैं बहुत अच्छी बात है। माँ बाप का दिल तो हर बच्चा जीतता है, हर बच्चे के दिल में माँ बाप के लिए और माँ बाप के दिल में बच्चों के लिए जगह होती ही होती है। पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दिल आप जीतना चाहते हैं और कुछ तरीका कह रहे हैं ना, आजमा रहे हैं उसको जीतने के लिए, वो भी बता दीजिए प्लीज़।

अगला संदेश लेते हैं बबलेश पवार जी का, और ये लिख रहे हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, साथ में डैनी पवार, मनीष पवार। ये कहते हैं उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखता हूँ, छोटी छोटी बातें याद रखता हूँ, जैसे कि उन्हें खाने में क्या पसंद है या उनका जन्मदिन कब है। जब मैं ऐसी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ तो सामने वाले को महसूस होता है कि मैं आपके ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। यही छोटी छोटी बातें दिल को जीतने की कोशिश करता हूँ। वाकई में पता है, ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपने कि आप उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को ध्यान में रखें, उनकी ख्वाहिशों को ध्यान में रखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। वो जब चाहते हैं आप उनके लिए हमेशा उनके लिए स्टैंड बाय पे खड़े रहते हैं, स्टैंड बाय रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अपनेपन का एहसास दिलाती हैं और दिल जीत, अगर कोई आपसे दिल चाहता भी हो ना दूर जाना, आपकी इतनी प्यारी प्यारी हरकतों, प्यारी प्यारी आदतों के व्यवहार के चलते आपसे दूर नहीं जा पाता और बस आपको अपना दिल दे बैठता है, आप उसका दिल जीत जाते हैं बस इन्हीं खूबसूरत तरीकों के ज़रिए।

अगला संदेश हमें मिल रहा है एसपी गोयल जी का। ये लिखते हैं सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी दिल्ली से, और ये कहते हैं कि मीठी वाणी से हर बिगड़ा काम बनाकर देखो, मीठी वाणी से हर बिगड़ा काम बनाकर देखो, मुस्कुराहट से दिलों में अपना नाम बना कर देखो। जीतना है अगर किसी का दिल इस दुनिया में, जीतना है अगर किसी का दिल इस दुनिया में, तो बस दूसरों के दर्द में काम आकर देखो। जी हाँ, आप किसी के दुख दर्द में अगर साथ खड़े हैं ना, तो भी आप ना उनका दिल जीत सकते हैं। वाकई में उनका जो अपनापन है वो आपको महसूस होगा जब आप उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े होंगे, और उन्हें भी अपनापन महसूस होगा जब आप उनके साथ होंगे।

अगला संदेश हमें मिल रहा है सुदर्शन मुखी जी का, साथ में अनीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांतिनगर सोनीपत से। ये कहते हैं किसी के दिल को जीतने का मूल मंत्र है सुंदर बोल और बुरे समय में साथ देना। आपका दिन और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। ओ फ्लो फ्लो में बोल दे, ये मेरे लिए बोल रहे हैं। ये बोल के ना आपने मेरा तो दिल जीत लिया, और अपना संदेश जो हमें भेजा है ना उससे तो 101% आपने मेरा दिल जीत लिया है। और जो संदेश आप मेरे को दे रहे हैं ना, मुझे दे रहे हैं ना कि हमारा दिन सुखद हो, जीवन सुखद हो, सेम टू यू सर। आपका भी जीवन और दिन सुखद हो, शुभ हो, और आपने ये जो संदेश हमें भेजा ना इसके लिए थैंक यू सो मच। बस इसी तरीके से ना अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहा करिए, अपना प्यार हम पर लुटाते रहा करिए, हमारे साथ यूं ही जुड़ा रहा कीजिए हमारे इन खूबसूरत कार्यक्रमों के जरिए।

एक संदेश हमें मिल रहा है पंकज शर्मा जी का, ये कहते हैं दीदी जी आपने मेरा दिल ही जीत लिया है जी, आप बहुत गुड गुड गुड गुड बातें करती हो जी, इसके लिए आपका शुक्रिया है जी। बहुत सारे जी लगा दिए, इतने वाले जी वाला तो मेरा वो भी नहीं है सर। सॉन्ग मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, जगी दुआ जी, जीतने हाँ, इस किसका दिल जीतना है तो किसी का दिल जीतना है तो से उनसे प्यार से बात किया करें जी, मुझे तो यही समझ में आया जी। बाकी आप जाने जी, आपने संदेश तो हमें भेज दिया है जी और बहुत ही खूबसूरत संदेश भेजा है जी, और बस इसी तरीके से अपने संदेश जो ना हम तक भेजते रहिए जी, यूं ही बने रहिए जी हमारे साथ। थैंक यू सो मच।

देखिए वक्त बना बहुत तेजी से दौड़ता चला जा रहा है, पता है मुझे तो कभी कभी लगता है ना ये घंटा काफी नहीं होता हमारा आपके साथ बिताने के लिए। मैं सोचती हूँ अपने सुपीरियर से बात करूं कि आपके साथ ना कम से कम 2 घंटे हमारे को बिताने का मौका मिले और दिल खोल कर बात करने का मौका मिले। जो हमारी शिकायतें रह जाती है, मेल्स रह जाते हैं ना, उन्हें भी हम उस 2 घंटे में कोशिश तो नहीं 101% शामिल करा करेंगे, बट पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है। फिलहाल चलते अगले संदेश की ओर, और ये है हमें चंपा देवांगन जी का हमें संदेश मिल रहा है। कहते हैं किसी के दिल को जीतने के लिए दौलत या दिखावे की नहीं, अच्छे व्यवहार और मीठी बोली की जरूरत होती है। प्यार से कही गई छोटी छोटी बात भी दिल में बड़ी जगह बना लेती है। सम्मान, अपनापन और मुस्कुराहट ऐसे फूल है जिनकी खुशबू रिश्तों को हमेशा महकाती रहती है। भंवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, राजू जगदीश देवांगन इनके साथ ये संदेश हमें भेज रहे हैं।

देखिए, जाते जाते भी ना हमें एक शिकायती मेल मिल ही गया। ये है ज्योत प्रसाद और ये कहते हैं थाना रोड बक्सर से हमें लिख रहे हैं ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और संभी गुप्ता। कहते हैं मैडम, क्या जो प्यार मोहब्बत दिल का बात करेगा उसी का मेल आप शामिल करेंगे? नहीं जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपका भी तो मेल शामिल किया, आपने तो मुझे शिकायत वाला भेज दिया। बट एनीवेज कोई बात नहीं, आपने हमें भेजा तो सही, इसी के कारण आप हमसे जुड़े तो सही। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना, आप बढ़िया वाला मेल भेजिएगा मुझे, रिगार्डिंग मेल भेजिएगा, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड मेल भेजिएगा और उसे मैं सबसे पहले शामिल करूँगी, ठीक है। वैसे ये मुझे अभी मिला है, पहले नहीं मिला, अगर पहले मिला तो पहले भी शामिल कर लेती, बट ये अभी मिला है, सिर्फ 3 मिनट पहले ही मुझे ये संदेश मिला है, तो ले लिया, अब कर लिया हमने आपका मेल जो है वो शामिल,

वक्त जो है ना 10:57 हो चुके हैं और बहुत ही जल्द हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। उससे पहले संदेश ले लेते हैं जल्दी जल्दी, हमें किस किस ने संदेश भेजा, किन किन श्रोताओं ने भेजा। नवी हसन जी ने, दिग्दर्शन गौर जी ने, अनिल जैन जी ने, नीतू मल्होत्रा जी ने, सुदर्शन मुखी जी ने, रामेश्वर जी ने, भगवत वर्मा जी ने, यशमीत यशु जी ने, दिलीप मालाकार जी ने, नवी

हसन, अनिल मोहन, अशोक डाले, अनिल कोहाले, अनिल मोहन, रविंद्र सिंह छाबड़ा जी ने, रमेश चौहान, हरजिंदर शिंदा जी ने और आर्यन राज जी ने, राधेश्याम शर्मा जी ने हमें संदेश भेजा है, रमेश चौहान जी ने हमें संदेश भेजा है, स्वीटी ने हमें संदेश भेजा है, निसार अली जी ने भेजा है, नाना डोंगार डाइव जी ने हमें संदेश भेजा है, लखपत राय जी ने हमें संदेश भेजा है, बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन फिलहाल जो वक्त है ना 10:58 हो चुके हैं और मेरा यहाँ से जाने का भी हो चुका है। और बस आई होप कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और श्योरली नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना तो जो रहेंगे ना मेरे श्रोता अपनी ईमेल्स शामिल करवाने से उनके ज़रूर लूँगी। और बस इसी तरीके से आप जो है ना हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार यूँ ही हम तक पहुँचाते रहिए संदेशों के ज़रिए, और हमारे साथ बस यूँ ही जुड़े रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वच्छता रखिए, बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए। जल्दी मिलूंगे इसी वादे के साथ, इजाज़त चाहती है आपकी ये दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 11 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरलम और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे कोच्चि में मलयालम दैनिक जन्मभूमि के एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद शाम को वे बंगलुरु में भारतीय वायुसेना को तेजस के 2 सीटों वाले प्रशिक्षण विमान और हिन्दुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 बुनियादी प्रशिक्षण विमान सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजना

0: योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। झारखंड और ओडिशा में 7 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती कार्रवाई जारी है। निदेशालय ने कहा है कि ये कार्रवाई बैंक की सरायकेला शाखा में बड़े पैमाने पर हुई कथित धोखाधड़ी की जांच के अंतर्गत की जा रही है। भारत ने न्यूयॉर्क में अगले सप्ताह होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक को फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा वीडियो के जरिए संबोधित करने के पक्ष में मतदान किया है। इससे पहले पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा वीजा न मिलने पर श्री अब्बास को वीडियो के जरिए महासभा को संबोधित करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, भी आप आनंद उठा रहे थे कार्यक्रम सब रस का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दोपहर के ठीक 11:30:20 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी। इसमें आज आप आनंद उठाएंगे विदुषी शाश्वती मंडल द्वारा राग जोगिया में गायन का।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे विदुषी शाश्वती मंडल द्वारा राग जोगिया में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के ठीक 12 बजने को है। आपसे थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डियल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को

0: देशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और STT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। एक रिपोर्ट।
2: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मदलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से AI को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि AI की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तानी अकाउंट द्वारा प्रसारित एक फर्जी वीडियो का सरकार ने खंडन किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश को दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी और AI से निर्मित बताया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली तेजी देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 113 अंक बढ़कर 74,427 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities during his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September. Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpol D.N. Thungyel, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. Both ministers also jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Galtsuen Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannathan Bridge on the Samdrup Jongkhar Trashigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Centre in Bumthang. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500-kilowatt Lunana hydropower project. Northern Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Army Commander Lieutenant General Pratik Sharma complimented White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing 2 terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with J&K Police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination

किसी ने सच कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हमें FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुबह के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से नया सवेरा आता है। इसीलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, हर हाल में मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा संगीत सुनते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म थी अग्नि परीक्षा और गाया था लता मंगेशकर ने। और दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज है शुक्रवार यानी फ्राइडे, और आज के दिन हमारा विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। खास तौर पर हम विशेष कार्यक्रम लेकर आपके लिए ही उपस्थित होते हैं। अब ये बात की है तो बुजुर्गों के आज कार्यक्रम हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के दिन की खास बात करते हैं। एक दिन और है आज का, वो है

की जिम्मेदारियां और योग्यता समान है तो केवल उनके महिला या पुरुष होने के कारण उनके वेतन में अंतर क्यों हो? समान वेतन का मतलब केवल पैसे की बराबरी नहीं, ये उस सोच को बदलने की बात है जिसमें किसी व्यक्ति की मेहनत और प्रतिभा को अपने यानी उनके जेंडर के आधार पर कम या ज़्यादा आंका जाता है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, प्रशासन, मीडिया, बिजनेस और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे जिम्मेदारियां निभा रही हैं, नए मुकाम हासिल कर रही हैं और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसे में उनकी मेहनत का समान मूल्य और समान सम्मान मिलना बेहद ज़रूरी है। हमें अपने कार्यस्थलों पर समान यानी कि अवसर को बढ़ावा देना चाहिए और साथ में अगर हम कहीं वेतन में असमानता देखते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने और सही बदलाव की आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब मेहनत बराबर हो तो मूल्यांकन भी बराबर होना चाहिए और सम्मान भी। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिवस यानी कि समान वेतन दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने आसपास समान अवसर, समान मेहताना और समान यानी कि साथ में सम्मान की सोच को मजबूत करेंगे। तो याद रखिए, बराबरी किसी एक की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज की तरक्की है। आइए सुन

एक कदम बुजुर्गों की ओर हमारा विशेष कार्यक्रम। अब बात करते हैं कुछ बुजुर्गों से संबंधित, यानी कि बुजुर्गों से माफी और आशीर्वाद दोनों जरूरी है। कहते हैं घर में बुजुर्ग हों तो वो घर सिर्फ घर नहीं रहता, बल्कि अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद का खजाना बन जाता है। हमारी जिंदगी में जाने अनजाने कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे हमारे माता पिता, दादा दादी या परिवार के बड़े हमसे नाराज हो जाते हैं। कभी हमारी बात का लहजा गलत हो जाता है, कभी हम उनकी किसी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, और कभी व्यवस्था के कारण उन्हें समय नहीं दे पाते। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि छोटी सी माफ़ कर दीजिए कितनी बड़ी दूरी को ख़त्म कर सकती है ये बात? बुज़ुर्गों से माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि रिश्तों की कद्र करना है। उनके सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगने से हमारा सम्मान कम नहीं होता, बल्कि रिश्ते और मज़बूत होते हैं, और माफ़ी के साथ साथ उनका आशीर्वाद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि जीवन के मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने का हौसला देता है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, घर में जो बड़े हैं उनके पास बैठिए, उनका हाल पूछिए। अगर कभी जाने अनजाने आपका दिल दुखा हो, यानी कि तो दिल से कहिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और फिर प्यार से उनके चरण स्पर्श कहिए, और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए ये कहिए। और ख़ास तौर पर यकीन मानिए, उस पल की खुशी किसी महंगे तोहफे से कहीं ज़्यादा अनमोल होगी, क्योंकि रिश्तों में कभी कभी माफ़ी सुकून देती है और आशीर्वाद ज़िंदगी संवार देता है। बुज़ुर्गों की क्षमा में भी हमारी मुक्ति है, और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

0: दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपका स्वागत है, आपके विचारों का और आपकी पसंद का। आपके सुझाव आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। और दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जब बात हो रही है एक कदम बुज़ुर्गों की ओर की, तो उम्र बढ़ती है, रिश्तों की ज़रूरत नहीं घटती। बुज़ुर्ग हमारे घर की जड़ हैं, उन्हें समय और सम्मान दें। उनकी मुस्कान से हमारे संस्कारों की खूबसूरती है। एक कदम उनकी ओर बढ़ाएं, अपनापन उनके दिल तक पहुंचाएं। आइए बुज़ुर्गों का हाथ थामें और उन्हें एहसास दिलाएं कि है वो हमारे लिए कितने खास हैं।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी प्यासा सावन। और अब बात करते हैं कुछ टूटते परिवार और हमारे बुजुर्गों की। आज परिवारों में वो रिश्ते हैं, लेकिन कई बार साथ होने का एहसास कम होता जा रहा है। व्यस्त जिंदगी, आपसी मतभेद, बदलती सोच के कारण संयुक्त परिवार टूटकर छोटे छोटे परिवारों में बंट रहे हैं। इस बदलाव का सबसे गहरा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है, जिन माता पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए लगा दी। वहीं उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर वे अकेले रह जाते हैं, जब उन्हें सबसे ज़्यादा अपनेपन और साथ की ज़रूरत होती है। बुज़ुर्ग हमारे परिवार की जड़ हैं, उनके पास अनुभव है, जीवन की समझ है, रिश्तों की जोड़ कर रखने की क्षमता है। उनकी कही हुई छोटी सी बात भी कई बार हमें बड़ी मुश्किल से में पचा सकती है, यानी कि उनके साथ बैठकर कुछ देर बातें करना, उनकी पुरानी यादें सुनना,

बस उनका हाल पूछ लेना, इन छोटी छोटी चीज़ों से उनके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आ सकती है। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें हर पीढ़ी के लिए सम्मान और जगह हो। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी ज़रूरतों को समझें, उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे अनमोल धरोहर है। आइए टूटते परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश करें। शुरुआत करें अपने घर से, अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर उन्हें सम्मान और प्यार दें जिसके वे सच में हकदार हैं। आइए सुने लम्बे फिल्म से गीत जिसे गाए हैं लता मंगेशकर ने।

और अब बात करते हैं जब मोबाइल बड़ा हो गया और बुजुर्ग छोटे। आप कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर, विशेष कार्यक्रम आज हमारा आप सुन रहे हैं। तो अब ये कहना है कि एक समय था जब घर में सबसे बड़ी कुर्सी दादाजी की होती थी। सब उनसे पूछकर फैसला लेते थे। आज घर में सबसे बड़ी स्क्रीन मोबाइल की है और सबसे अकेली कुर्सी फिर भी दादाजी की ही है, क्योंकि हम सब एक ही घर में हैं, अलग अलग दुनिया में। ऐसा लगता है कि पोता रील देख रहा है, बेटा लैपटॉप पर है और दादी दरवाजे पर बैठी इंतज़ार कर रही है कि कोई उनसे दो बात कर ले। हम कहते हैं बुजुर्ग टेक्नोलॉजी नहीं समझते, सच ये है हमने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। क्या हमने कभी 10 मिनट निकालकर अपने पिता को वीडियो कॉल करना सिखाया? क्या माँ को सिखाया कि यूट्यूब पर भजन कैसे सुनते हैं? उन्हें डिजिटल दुनिया में अकेला मत छोड़िए, उन्हें व्हाट्सएप पर फोटो भेजिए, उन्हें फ़ोन मिलाना सिखाइए। जब वो आपके दोस्त से वीडियो कॉल करेंगे तो उनकी आंखों में जो चमक आएगी वो किसी भी लाइक से सबसे बड़ी होगी। तो मोबाइल से जुड़ने के लिए बना था, यानी कि दूरी के लिए नहीं। तो आज से एक नियम बनाइए, रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के और सिर्फ बुज़ुर्गों के नाम।

और अब बात करते हैं कुछ यानी कि दवा से ज़्यादा दुआ, सेहत और सम्मान की। हम सोचते हैं बुज़ुर्गों को सबसे अच्छी दवा चाहिए, सबसे बड़ा अस्पताल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर उससे भी पहले उन्हें कुछ और भी चाहिए। उन्हें समय पर खाना चाहिए, रोज़ 20 मिनट की सैर चाहिए और प्यार भरी बातें चाहिए। हमारे पिताजी के घुटनों में दर्द है, हम दर्द की दवा ला देते हैं, पर क्या हमने कभी उन्हें फिजियोथेरेपी के लिए ले जाने के लिए जिद की? क्या सुबह उनके साथ सैर पर गए हम सब? नहीं, बुज़ुर्गों की सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, सम्मान की भी है। जब हम उन्हें अरे आप से नहीं होगा कहकर रोक देते हैं तो उनका मन सबसे ज़्यादा दुखता है। उन्हें छोटा बच्चा मत समझिए, उन्हें सहारा दीजिए, बेसहारा मत बनाइए। हाथ पकड़ कर चलाइए, हाथ पकड़ कर बिठाइए मत। एक कदम बुज़ुर्गों की ओर का मतलब है उनकी दवा का टाइम याद रखना, उनके चश्मे को साफ़ कर देना, उनके जूतों में कील अगर कोई है तो वो भी देख कर निकाल देना। तो याद रखिए, दवा शरीर ठीक करती है, पर दुआ और सम्मान आत्मा को ठीक करता है। और बुज़ुर्गों की दुआ में सबसे बड़ी कोई दवा नहीं, यानी कि उनकी दुआओं में भी हमारी ही ज़िंदगी बसी हुई है।

और अब बात करते हैं जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं, वो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो मुश्किलों में साथ खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं। वे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो ढाल बन के खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं। और वो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जिनसे सब खुश होते हैं। और वो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं यानी हमारे बुज़ुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है। उन्होंने ही तो सिखाया है प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत फिल्म।

दोस्तों बात करते हैं कुछ स्वच्छता की। जी हाँ, जब हवा की बात हो रही है तो जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य और खुशहाली अपने आप चली आती है। स्वच्छता सिर्फ हमारे घर की सफाई तक सीमित नहीं बल्कि हमारे आसपास के वातावरण, हमारी गलियों, सड़कों, नदियों, पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमारा भारत तभी स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है जब हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करें और छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत करती हैं।

और अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए और इसी वादे के साथ कि आपसे होगी अगली मुलाकात। तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और

0: Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has voted for a United Nations General Assembly resolution to allow Palestine President Mahmoud Abbas to address the high-level meeting of the Assembly in New York in the U.S. next week via video. Earlier, the U.S. refused to give him a visa to come to New York. The resolution was passed overwhelmingly yesterday with 152 votes, while only the U.S., Israel, and Paraguay voted against it. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 233 points to 74,547, while the Nifty added 66 points to 23,336 when reports last came in. Double Olympic medalist Manu Bhakar and defending Asian Games shot put champion Tajinder Pal Singh Tur have been named India's flag bearers for the opening ceremony of the Asian Games. The opening ceremony is scheduled to take place tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीने वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर.
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू. दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन. वेटर ने फेंका स्पिन. 4,000 का आया बिल. रोहन का धड़का जोर से दिल. वो अपना वॉलेट गया था भूल. रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल. आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट. डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट.
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान.
4: हर लेन देन अब है आसान.
1: नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त घड़ी हमारी इशारा कर रही है. वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये हुए पूरे 55 सेकेंड. स्वागत है आप सभी का. और आज का ये जो कार्यक्रम है वो है क्या, जी हाँ, एक ही फिल्म से. और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं रहूँगी आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली. नमस्कार श्रोताओं, देखिए कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद कहानी याद रहती है, और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका पूरा सफ़र याद रह जाता है. आज की फिल्म ऐसी ही है. और बस वो कौन सी है ये इस गाने को अगर मैं आपके सामने रखूंगी तब बखूबी पहचान जाएंगी कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूं. और ये जो फिल्म है इससे जुड़ी आपकी जो भी यादें हैं वो आप हमारे साथ यहां पर ज़रूर बांटेंगे. तो हम शुरू करते हैं आज का ये सफ़र जो है इस फिल्म के साथ.

तो बस इस कहानी को सुनकर कौन नहीं पहचान पाएगा कि हमारी आज की फिल्म कौन सी है। जी हाँ, हमारी आज की फिल्म है 3 मार्च 1972 को रिलीज हुई बॉम्बे टू गोवा, और बॉम्बे से गोवा का सफर। बस में बैठे अलग अलग मिजाज के लोग, थोड़ा प्यार, थोड़ा डर, खूब सारी मस्ती और रास्ते भर होने वाला हंगामा। और हम बात करें जी हाँ इसी फिल्म की, तो उसमें इस फिल्म में ये सारी बातें थी। तो अगर हम बात करते हैं निर्देशन की इस फिल्म के, तो ये निर्देशन किया था इस फिल्म का एस रामानाथन ने, और फिल्म के निर्माता थे महमूद और एनसी सिप्पी। कहानी उस समय की है, एक तमिल फिल्म बनी थी उस समय, मद्रास टू पौंडिचेरी, उससे ली गई थी इसकी फिल्म की कहानी। और फिल्म का जो संगीत है वो दिया था आरी बर्मन ने, और गीत किसने लिखे थे, राजेंद्र कृष्ण जी ने। तो फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसका सफ़र। तो मैंने आपको बताया ना, ये सफ़र आज हम अपने इस आधे घंटे में तय करेंगे, जिसमें से हमारे पास थोड़ा सा और कम वक्त रह गया है। तो ये सफ़र आप तय करेंगे आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं। तो अगर इस फिल्म की बात करूं, तो यहाँ पर ये है कि इस फिल्म की खासियत की मंजिल है गोवा, मतलब बॉम्बे से गोवा जा रही है एक बस, और उसके अंदर ये सारे सारे जो भी बातें हो रही हैं, जो भी गाने हो रहे हैं, जो भी कहानी है, वो सब चलती है इसी सफर के दौरान। फिल्म की कहानी शुरू होती है माला से, जिसका किरदार अरुणा ईरानी ने निभाया है। और माला को फिल्म में काम करने का सपना दिख रही है, उसे शौक है और उसे लगता है कि उसका सपना अब पूरा हो सकता है। लेकिन इसी चक्कर में वो ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाती है जो उसके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए माला के साथ में इस सफ़र में कौन है उनका हीरो, उसके बारे में तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे भी बहुत कुछ जानना चाहूँगी। आप अपनी जो भी बातें इस फिल्म से जुड़ी हैं हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। हम आगे बढ़े उसके पहले सुनते हैं बॉम्बे टू गोवा का एक और प्यारा सा गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे बॉम्बे चुगोआ फिल्म का ये गाना। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं इस फिल्म की कहानी की, जो बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो हमने जैसे आपको बताया कि माला को फिल्म में काम करने का शौक़ है, लेकिन गलती से वो एक खून देख लेती है और वो भागती है वहाँ से। अब क्या होता है कि वो माला किसी तरह बचकर गोवा जाने वाली बस में बैठ जाती है और यहीं से शुरू होता है फिल्म का असली सफ़र। इसी बस में उसकी मुलाकात होती है रवि से, जी हाँ, हमारे अपने अमिताभ बच्चन से। तो रवि उसकी मदद करता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता भी बनता है। अब देखिए, रिश्ता बनता है और इस रिश्ते की शुरुआत ऑलरेडी कहीं से हो चुकी है, जी हाँ, उनके परिवार की तरफ से हो चुकी है। उस बारे में हम आपको क्या ही बताएंगे, आपसे बेहतर तो इस कहानी को कोई जानता भी नहीं होगा। फिर भी बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा और इस कहानी को आगे लेके चलती हूँ। देखिए, माला का जो पीछा करने वाला है वो है शर्मा, यानी शत्रुघ्न सिन्हा। इतनी आसानी से वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है और बस आगे बढ़ती जाती है और कहानी भी आगे बढ़ती जाती है। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ रवि और माला की कहानी नहीं है, ये जो है ना, ये जो फिल्म है, इसका असली मज़ा है उस बस में बैठे बाकी यात्री। जी हाँ, कोई अपनी भाषा और अंदाज के साथ है, तो कोई अपनी अजीब अजीब आदतों के साथ है, कोई अपनी ही दुनिया में मस्त है। और इन सब के बीच है बस के कंडक्टर खन्ना, जी हाँ, हमारे महमूद साहब। और महमूद की कॉमेडी इस फिल्म की जान है और उनका अंदाज ऐसा है कि कहानी में जब भी तनाव बढ़ता है, हंसी के लिए कोई ना कोई मौका निकल ही आता है। और बस के ड्राइवर जो राजेश का किरदार है वो अनवर अली ने निभाया है, जो महमूद के भाई हैं। और इनके अलावा फिल्म में नज़ीर हुसैन, ललिता पवार, मुकरी मनोरमा, आगा केशव मुखर्जी और कई जाने माने कलाकार भी नजर आते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं बस और उसमें बैठे इतने सारे कलाकारों की, तो फिर ये गाना तो बनता ही है इस फिल्म का। आइए सुनते हैं बॉम्बे टू गोवा का ये एक और गाना।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा की, और हमारे साथ आप सब जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ कौन जुड़ा है? देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं अजीत भावसार जी, और अपने चिर परिचित अंदाज में इन्होंने सारी डिटेल्स हमारे साथ यहाँ पर साझा की है। और देखिए, वही सब बताया है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मद्रास टू पांडिचेरी का रीमेक है और 1972 में रिलीज फिल्म है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी जी, जो बिल्कुल समझ गए हैं कि ये फिल्म है बॉम्बे टू गोवा। फिर हमारे संग है डी बी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से, और वो भी जान चुके हैं फिल्म कौन सी है। हमारे साथ जुड़े हैं मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, सौ जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वद, हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख परिवार। और शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये हमारे साथ पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती गुप्ता दीपा गुप्ता और है क्षिप्रा गुप्ता। फिर है हमारे साथ वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। हमारे साथ हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और हमारे साथ हैं गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से है अशोक कुमार सहगल। और देखिए हमारे साथ हैं, उन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ये कौन है? आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, और शाइना शर्मा। शुक्रिया। अब देखिए हमारे साथ आप लोग बने रहते हैं, अच्छा लगता है। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, शुक्रिया। आप सभी को एक चीज़ और भी बताऊंगी, बने रहिएगा, दोपहर 3 बजे भी आपके लिए लेकर आऊँगी बहुत गोल्डन एरा की कुछ अच्छी गज़लें, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा की, आपकी आगे की और भी मेल्स शुमार करूँगी, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना, और हम बात कर रहे हैं अब रवि की। रवि मतलब हमारे अमिताभ बच्चन, और ये उनकी शुरुआत की फिल्म थी। जी हाँ, और आपको एक चीज़ बताएं, उनकी दमदार आवाज़, गंभीर किरदार और अलग अंदाज के लिए हम उन्हें जानते हैं, लेकिन बॉम्बे टू गोवा के समय अमिताभ अपने करियर की शुरुआत में थे, और यह वो दौर था जब उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ रहा था, और इस फिल्म में उनका अंदाज आज के अमिताभ से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये हल्के फुल्के अंदाज में इसमें नज़र आते हैं, जिसमें रोमांस भी है, कॉमेडी भी है और एक्शन भी है। महमूद का अमिताभ पर भरोसा भी इस फिल्म के लिए जुड़ी बहुत सी बातों में से एक है। देखिए दोस्तों, इसमें हमने एक चीज़ देखा है कि महमूद ने उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका दी, और इस फिल्म में अमिताभ को लेकर फिल्म इंडस्ट्री को बहुत भरोसा नहीं था कि हाँ, इन्हें एक हीरो का रोल दिया जा सकता है, लेकिन महमूद ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया। और आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये बहुत दिलचस्प बात लगती है कि जिस कलाकार को आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बनना था, वो इस फिल्म में अपने सफ़र की शुरुआत कर रहा था। और बस आपको इस फिल्म का एक ऐसा गाना मैं सुनाने जा रही हूँ जो ना उषा उत्थुप की आवाज़ में है, और बहुत अलग अंदाज, अलग मिजाज का गाना है, और आपने ये गाना ज़रूर बहुत कम सुना होगा। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे टू गोवा की, तो इसके जब हम सारे गाने आपको सुना रहे हैं, तो ये गाना भी आपको हम ज़रूर सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत अलग अंदाज का गाना।

तो आप सुन रहे हैं उषा उत्थुप को, और इसके साथ हम सुन लेते हैं हमारे कुछ दोस्तों को भी हमें क्या बोलने जा रहे हैं। हमारे साथ संदीप मक्कड़ हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं। फिर हमारे साथ जग्गर राम साहू हैं, इनके साथ हैं, ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। इनके साथ हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, और इन्हें अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, शुक्रिया। और फिर हमारे साथ जुड़े हैं प्रकाश वर्मा जी हैं, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा है, अन्नपूर्णा वर्मा है, ये हैं छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ। फिर हैं देवशंकर तामरिया जी, और जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया तो क्या किया, आज एक ही फिल्म में बॉम्बे टू गोवा, इस फिल्म में बस का जो ड्राइवर है वह महमूद का भाई है। बिल्कुल सही है आपने बताया, हमने भी आपको बताया, अनवर अली जी जो है वो महमूद के सगे रियल भाई हैं। और तो ये हमें लिख रहे हैं कौन, कबीर रेडियो श्रोता संघ, डोंडी लोहारा, बालोद, छत्तीसगढ़। और यहाँ से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, और हमारे साथ हैं डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, और मास्टर अल कबीर, शुक्रिया शुक्रिया। फिर हमारे संग है धर्मेंद्र शिका जी, शुक्रिया, आपका ही मैसेज आ गया हमारे पास, इंतज़ार तो रहता ही है। तो आपने भी पूरी चीज़ें हमें बताई हैं इस फिल्म के बारे में, और शुक्रिया आपको उषा उत्थुप का गाना अच्छा लगा, सुन करके हमें अच्छा लगा। आपके साथ हैं कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, आप सब हैं हमारे साथ भोपालगढ़ राजस्थान से। फिर है देखिए संजय ढींगिया, नया नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत, उत्तर प्रदेश से। फिर हमारे साथ हैं जी हाँ डीबी राणा जी, मैंने उषा उत्थुप जी का गाना ही आपको सुना रही हूँ। फिर हमारे साथ हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। देखिए अब हम इस फिल्म के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ हम आपको बस आखिरी का गाना सुना सकते हैं। तो अब देखिए इस फिल्म की जो यात्रा है ना, वो हमें एक पुराने दौर पर लेके जाती है, जिसमें अगर हम आज भी बात करते हैं तो हमें महमूद याद आते हैं, बॉम्बे टू गोवा की अगर हम बात करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अमिताभ की तो उनकी शुरुआती दौर याद आता है। फिर सबसे बढ़कर याद आती है वो बस जिसमें ये सफ़र हुआ था। तो रास्ते में इस पूरे सफ़र में हमें मिले अमिताभ बच्चन के जो रवि कुमार हैं, अरुणा ईरानी की माला से हमारी मुलाकात हुई, शत्रुघ्न सिन्हा शर्मा के रूप में हमारे साथ रहे, और खन्ना के रूप में महमूद हमारे साथ रहे। हमारे साथ कौन मिले, जी हाँ इस सफ़र में मिले आर डी बर्मन अपने गीतों के साथ, राजेंद्र कृष्ण अपने बोलों के साथ, अपने संगीत के साथ आर डी बर्मन, और अपने बोलों के साथ राजेंद्र कृष्ण। और हमारे साथ बहुत से किरदार ऐसे भी रहे जिन्होंने बकायदा अपना साथ हमारा निभाया। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ सफ़र इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि रास्ते में ज़िंदगी थोड़ी और खूबसूरत, थोड़ी और मज़ेदार लगती है। तो बस चलते चलते आपको इस फिल्म का एक और गाना सुनाने जा रही हूँ, और इस गाने के साथ ही इस फिल्म का सफ़र यहीं पर ख़त्म भी होता है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ आप ये गाना सुन रहे हैं उनकी आवाज़ में। देखिए, आपको इस सफ़र में लेकर चली थी मैं, जी हाँ, बॉम्बे टू गोवा के सफ़र में आपके साथ थी मैं, आपकी रेडियो हम सफ़र सुना ली। तो अब बस मुझे दीजिए अनुमति, आपसे दोपहर 3 बजे फिर मिलूँगी मैटनी मेलोडी के साथ। तब तक नमस्कार, खूब अच्छे रहिए, खूब मस्त रहिए और इस गाने को सुनते रहिए।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।
1: नो
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।

0: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਪਾਨ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने भूटान के तरक्याती मकासद और तरजीहात के लिए भारत की मदद के मौकफ को दोहराया। दोनों मुल्कों ने दो तरफा तआवुन और बाहमी अहमियत के मामलात का जायजा लिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय फजाइया को LCA तेजस और STT-40 तरबियती तैयारी सौंपेगा। रेलवे के महकमे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चांदोर के दरमियान नई रेल लाइन की तामीर के लिए 493 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हिफाजती दस्तों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत 2 जैश दहशतगर्दों को मार गिराया। आलमी दर्जा बंदी की एजेंसी मूडीज ने रवां माली साल के लिए अपनी पेशगोई में भारत की असल GDP शरह तरक्की के अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% बताया है। और जापान में भारत की टैगबॉल खिलाड़ी क्यूजे डिसोजा, जिन्होंने पहली बार एशियाई गेम्स में हिस्सा लिया है, सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने भूटान के तरक्याती मकासद और तरजीहात के तई भारत की तरफ से मदद के अज़्म को दोहराया है। 16 से 18 सितंबर तक भूटान के अपने सरकारी दौरे में डॉक्टर जयशंकर और भूटान के उनके हममनसब लियोम्पो DN धोंगेल ने दो तरफा तआवुन के तमाम पहलुओं, नीज दो तरफा अहमियत के हामिल इलाकाई और बैन अलाक़वामी उमूर का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने खसूसी और कसीर जहती भारत भूटान शराकत दारी को मजबूत बनाने के अमल में की गई पेशरफ्त को सराहा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर और भूटान के उनके हममनसब ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह और आगाज किया। भारत ने 54 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी भूटान हुकूमत के हवाले की हैं। वजीर मौसूफ ने 500 किलोवाट के लुनाना पन बिजली प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद भी रखा। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मार्च 2024 की तवानाई शराकत दारी के मुश्तरका विजन पर अमल दरामद के बारे में इत्मीनान का इजहार किया। दोनों वजीरों ने भूटान में तवानाई के प्रोजेक्टों के लिए 4,000 करोड़ रुपए के किस्तवार रियायती कर्जे से मुतालिक माहदे पर दस्तखत किए जाने का भी खैर मकदम किया। उन्होंने भूटान में पनबिजली प्रोजेक्टों में भारतीय कंपनियों की सरगर्मियों का भी खैर मकदम किया। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: वज़रा ने UPI पर मबनी सहूलत का भी खैर मकदम किया, जिससे भूटान के बाशिंदे मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए भारत में डिजिटल अदायगियां कर सकेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने अपने दौरे में भूटान के शाह जिगमे खेसर नामगेल वांगचुक और भूटान के वजीर आजम DT तोबगे से भी मुलाकात की। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में भारतीय फजाइया और पवन हंस को HAL प्लेटफॉर्म सौंपने की तकरीब में शिरकत करेंगे। हवाबाजी से मुतालिक सरकारी शोबे की मसनूआत साज कंपनी HAL भारतीय फजाइया को 2 LCA FOC तरबियती तैयारे, पवन हंस को अगले दौर के 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और भारतीय फजाइया को पहला STT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा हवाले करेंगे। 16 LCA जंगजू तैयारों और FOC बनावट वाले 2 सीटों वाले 4 तैयारों से मुतालिक एक मुआहदा 2010 में किया गया था। HAL का मंसूबा है कि वो 2033-34 तक भारतीय फजाइया को 2 सीटों वाले 29 MK-1A LCA तैयारे सौंप देगा। भारतीय रेलवे ने जनूबी सेंट्रल रेलवे में आदिलाबाद के मुकुटबन और गढ़चांदोर के दरमियान तकरीबन 38 किलोमीटर की नई रेल लाइन की तामीर के लिए 493 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत ने कहा कि नई रेल लाइन एक मुख्तसर और ज्यादा मौसर रास्ता फराहम करेगी, जिससे सफर के फासले

0: Around
1: 540 toilets have been constructed in the Saparam village under our Saparam Panchayat.
2: उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ.
3: Under the Swachhata Hi Seva campaign, towards cleanliness has not only improved people's health and quality of life, but has also strengthened the foundation of Viksit Bharat 2047 by translating the resolve of prosperity through cleanliness into reality. With Karmveer, Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
4: This is Akashwani giving you the news.
5: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
4: Welcome back to the Midday News. Northern Army Commander Lieutenant General Prateek Sharma has commended the White Knight Corps for successfully neutralizing two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur. Lieutenant General Prateek Sharma complimented the White Knight Corps for their swift, precise and professional action in neutralizing two terrorists during Operation Sohan in Majalta area of Udhampur district. Our correspondent reports that the successful intelligence-based operation conducted in seamless synergy with J&K Police and CRPF once again underscores the strength of joint interagency coordination in the counter-terrorism grid. The successful operation led to elimination of two Jaish terrorists and arrest of one OGW, besides recovery of arms and ammunition. As the Election Commission has temporarily frozen the name and symbol of the All India Trinamool Congress, the Mamata Banerjee camp and the Ritabrata Banerjee camp have both submitted proposals to the Commission ahead of the forthcoming by-elections. The Ritabrata camp has proposed three alternative names and symbols. The proposed names are Nationalist Trinamool Congress, Democratic Trinamool Congress and West Bengal Trinamool Congress. Chief of Army Staff General Dheeraj Seth visited Russian Land Forces headquarters as part of his three-day official visit to Russia. The interaction focused on deepening military cooperation and expanding training engagements. They also focused on strengthening capability development between the two armies. On his arrival, General Dheeraj Seth received a ceremonial Guard of Honor. Later, he paid homage at the tomb of the unknown soldier in Moscow. According to the Ministry of Defense, the chief will be visiting the National Defense Control Center in Moscow and interact with senior officials of the Russian Ministry of Defense, including Vasily Sergeyevich Osmakov, Deputy Minister of Defense. The global ratings agency Moody's today raised India's real GDP growth forecast to 7% from its earlier projection of 6% for the current financial year. The agency said the upward revision reflects the resilience of the Indian economy amid the global shock caused by the conflict in West Asia. The agency expects India to continue growing faster than all other G20 economies. Moody's said India's real GDP growth rose to 8.2% year-on-year in the first half of 2026, compared with 7.3% in 2025. Microsoft CEO Satya Nadella has said artificial intelligence must reach India's farmers, small businesses and rural communities and not just big techs. Speaking to over 40 Indian-American tech leaders at the Ideas for India Forum in Seattle, Nadella urged the industry to focus on broad public access, national data sovereignty and human oversight. Indian tech ball debutant Quimsy Joachim D'Souza stormed into the semi-finals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Quimsy produced a strong comeback in her Group A match 2 encounter against Japan's Yuina Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin Dy in Group A match 3. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approved 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Gadchandur in Maharashtra. Security forces killed two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that, we end the midday news.
0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के दो आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टैगबॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
6: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ड्रोन नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
7: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त एलसीए तेजस HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय

0: और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है।

0: ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
1: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
0: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
2: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
3: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
0: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
4: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
4: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की योना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LC-Tejas और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक कलाकार में आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है। आज बात उस महान अदाकारा की जिनकी आंखों में गहराई और आवाज में एक ऐसा एहसास जो आपके दिल को छू जाता है। इस गीत से आप समझ ही गए होंगे आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी की।

श्रोताओं, आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शबाना आजमी जी की। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में जन्मी शबाना जी को कला, साहित्य और संवेदनशीलता विरासत में मिली। इनके पिता मशहूर शायर कैफी आजमी थे और माँ रंगमंच की जानी मानी अभिनेत्री शौकत आजमी। घर के साहित्यिक मॉल और FTII पुणे से मिले अभिनय के प्रशिक्षण ने इन्हें बहुत ज़्यादा निखारा। शबाना जी ने 1974 में फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी सफ़र का आगाज किया। पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। अपनी दमदार मौजूदगी इन्होंने फिल्मी दुनिया में बनाई। इसके बाद समानांतर सिनेमा में उनके अभिनय का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ। फिल्म स्वामी में उनके सादगी भरे अंदाज को अभी आपने सुना। इसके अलावा गंभीर और आर्ट फिल्मों तक वो सीमित नहीं रहीं। शबाना जी ने व्यावसायिक सिनेमा में भी कदम रखा और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। फिल्म अमर अकबर एंथनी का यह नगमा उनके चुलबुले और रोमानी अंदाज को बयां करता है।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज जिक्र हो रहा है मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी का। श्रोताओं, शबाना जी ने व्यावसायिक और समानांतर सिनेमा के बीच संतुलन बनाते हुए अपने अभिनय का दायरा हमेशा बढ़ाया। निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म मासूम में एक स्वाभिमानी पत्नी और माँ के रूप में उनका अभिनय भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन मिसालों में से एक है।

श्रोताओं, शबाना जी के जीवन का सबसे खूबसूरत पहलू ये भी रहा है कि वह संवादों से ज़्यादा अपनी आँखों से अभिनय करती। उनकी आँखों से जो अभिनय होता वो लोगों के दिल को छू जाता। महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में एक टूटे रिश्ते और स्त्री के आत्मसम्मान की कहानी को जगजीत सिंह की आवाज़ में रचा ये गीत बखूबी उकेरता है।

महिला अधिकारों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए हमेशा मुखर रही हैं। जीवन के इसी संघर्ष और संवेदनशीलता को फिल्म बाजार की ये गजल बड़ी खूबसूरती से छूती है।

श्रोताओं, इन गीतों को सुनकर शबाना जी के अभिनय के वो रूप हमें देखने और सुनने को मिलते हैं जो हमें बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। शबाना जी ने अपने जीवन में हमेशा नए प्रयोग किए, कभी लीक पर चलने से नहीं झिझकी। मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर से इनसे इनका विवाह इनके जीवन का एक खूबसूरत मोड़ साबित हुआ। समय बीत गया लेकिन शबाना आजमी के अभिनय की चमक कभी धुंधली नहीं हुई। 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और पद्म भूषण से सम्मानित शबाना जी आज भी सिनेमा में उतनी ही सक्रिय हैं। अपने बेमिसाल अभिनय, समाज सेवा और अदम्य जज्बे से भारतीय सिनेमा को समृद्ध करने वाली मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी जी की ये खूबसूरत जीवन यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे, यही हमारी दुआ है। श्रोताओं, चलते चलते फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का एक गीत आपको सुनवाते हैं जो उनके अभिनय और जिंदगी के दौर को बयां करती है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक एक कलाकार अब संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें ईमेल करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मैथनी मेलोडीज। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ, आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली।

जी हाँ दोस्तों, कुछ आवाज़ें कानों तक नहीं आती, सीधे दिल तक पहुंचती हैं। और कुछ बात हो और गीत संगीत की बात हो तो कुछ गज़लें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिर्फ सुनते नहीं, उनके साथ थोड़ा सा जी लेते हैं। कभी किसी शाम की तन्हाई में, कभी किसी अधूरी मोहब्बत की याद में, कभी किसी ऐसी शख्स की याद में जो अब हमारे साथ नहीं है। ऐसे में बस गज़ल हमारे पास चुपचाप आ बैठती है। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में बनी फिल्मी गजलों की अपनी ही एक दुनिया है। शब्दों में शायरी, दोनों में ठहराव और आवाज़ों में ऐसा जादू कि गीत खत्म हो जाने के बाद भी उसका एहसास देर तक हमारे साथ बना रहता है। तो आइए लौटते हैं उन्हीं किसी सफ़र में, उसी किसी दुनिया में जिसका नाम है गज़ल। और आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम की पहली गज़ल, फिल्म मिर्ज़ा गालिब, और स्वर हैं तलत महमूद के साथ सुरैया की।

जी हाँ, मिर्ज़ा गालिब के साथ हमने शुरुआत की हमारी आज की मैथनी मेलोडी इस कार्यक्रम की, और ये बहुत बेहद ही पुरखलोस और बहुत ज़्यादा आज भी दिल को झंझोड़ने वाली, झकझोरने वाली और किन्हीं ऐसे तारों को छेड़ने वाली गज़ल है ये वाली मिर्ज़ा गालिब की, जिसे हमने सुना तलत महमूद और सुरैया की आवाज़ में। अब हम जो दूसरी गज़ल आपके लिए लेकर आए हैं उसको सुनाने के पहले आपको बस इतना कहूंगी कि कभी किसी अपने का साथ इतना प्यारा होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब वो साथ बस 2 घड़ी का हो तो वही 2 घड़ी पूरी उम्र की याद बन जाती है। लता मंगेशकर की आवाज़ में और उनके साथ है मोहम्मद रफ़ी। आइए सुनते हैं इस बेहद खूबसूरत गज़ल को, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया की गजल आप ये सुन रहे थे, जिसे स्वरबद्ध किया था मदन मोहन और लिखा था, जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण ने। अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र कृष्ण जी ने बहुत खूबसूरत गजलें फिल्मी दुनिया को दी हैं, और अब मैं उनकी एक और गजल आपके साथ में यहाँ पर साझा कर रही हूँ, जिसे हमने लिया है फिल्म जहाँ आरा से, और है ये जो आवाज़। आवाज़ वो एक ऐसे इंसान की जिसकी आवाज़ एक लरसता हुआ सा कोई खजाना लगती है, लरसता हुआ सा कोई ऐसा अफसाना लगती है, जिसको जैसे पानी के ऊपर आप हवा में, जब पानी पर हवा चलती है तो जिस तरह से हलचल होती है, वैसे ही ये आवाज़ ऐसी है, जब आप सुनते हैं तो लगता है एक अलग सी हलचल इस आवाज़ में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तलत महमूद की। तो आइए सुनते हैं फिल्म जहाँ आरा की ये गज़ल, जिसे एक बार फिर लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने।

जहाँ आरा में आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज़ में इस गज़ल को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुनहरे दौर की उन गज़लों की जो आज भी हमारे दिल को कहीं ना कहीं धड़काती हैं और अभी भी एक हसीन सा कोई तार छेड़ जाती हैं जो देर तक हमारे जहन में, हमारे दिल में झंकृत होता रहता है। बहुत बार ये होता है दोस्तों कि प्यार में, मोहब्बत में बहुत सी शिकायतें होती हैं, बहुत सी शिकवे होते हैं, लेकिन हम चाह कर भी उन बातों को बोलते नहीं हैं। बहुत बार सिर्फ अपनी बातों से या अपनी अंदाज से या अपनी बोलों के ज़रिए या अपनी आँखों के ज़रिए उन चीज़ों को हम बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे दिल में महफूज रहती हैं। बहुत सी शिकायतें हमें ज़िंदगी भर ऐसी तड़प दे जाती हैं जो हम बोल करके बयान नहीं कर सकते। तो अब मैटिनी मेलोडी में आपके लिए फिर एक ऐसी गज़ल लेकर आई हूँ जो है फिल्म अदालत की, और इसे एक बार फिर लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने और संगीत दिया है, जी हाँ, मदन मोहन ने। तो आइए सुनते हैं ये गज़ल।

0: शिकायत है।
1: फिल्म अदालत की ये गजल आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। और इस गजल में आपको अगर याद हो तो नरगिस की आपको याद आएगी, जिस गजल में हमारे सामने पर्दे पर नजर आती हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ यादें हमें बहुत तकलीफ दे जाती हैं। रोज़ याद नहीं आती वो चीज़ें, लेकिन फिर भी जब भी आती हैं तो मन को और आँखों को पूरी तरह से नम कर जाती हैं। बीते हुए लम्हों की ऐसी ही एक भीगी याद को लेकर हम आपके साथ यहाँ पर आए हैं और आपको सुनाते हैं एक ऐसी गज़ल जिसे लिखा है काफ़ी आज़मी साहब ने, और फिल्म है हंसते जख्म। तो आइए सुनते हैं लता जी की आवाज़ में ये गीत, ये गज़ल, माफ़ कीजिएगा।

दोस्त, आप सुन रहे थे फिल्म हंसते जख्म से ये गज़ल, जिसे कैफी आज़मी साहब ने लिखा था। अब मैं आपको एक ऐसी गज़ल सुनाने जा रही हूँ जिसका गायक स्वर है सुरेश वाडकर का। फिल्म है गमन, 1978 में रिलीज़ हुई ये फिल्म, और इसको जो लिखा है, इस गज़ल को लिखा है शहरयार ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गज़ल।

दोस्तों, हमने इस महफिल में कुछ पुरानी गज़लों को छुआ, कुछ भुली हुई आवाज़ों को फिर से महसूस किया और शायद अपने भीतर छुपी कुछ पुरानी यादों को भी छुआ। शायद इसीलिए पुरानी फिल्मी गज़लें आज भी पुरानी नहीं लगती, वे हर बार सुनने पर हमारे किसी नए एहसास से मिल जाती हैं। तो बस जाते जाते इतना कि कुछ नगमे उम्र के साथ पुराने नहीं होते, बस हमारे दिल के और करीब होते जाते हैं।

दोस्तों आप सुन रही हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलजार का लिखा ये एक जो गज़ल है और इसे हमने लिया है फिल्म मौसम से। इस गज़ल के साथ ही मुझे यानी आपके रेडियो हमसफ़र सोनाली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

उर्दू मजलिस के सभी सामीन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम आबशार गज़ल।

मीर तकी मीर का शेर है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। खुदाए सुखन मीर तकी मीर उर्दू के बड़े शायर हैं, जिनको शहंशाह गज़ल भी कहा जाता है। उनकी अजमत का एतराफ़ कई शायरों ने किया है। मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने भी कहा है, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज़ नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। समीन मीर तकी मीर एक आफाकी शायर हैं। उनका असल नाम मोहम्मद तकी था। उनकी पैदाइश आगरा में हुई और उनका इंतकाल 20 सितंबर सन 1810 में लखनऊ में हुआ। उन्होंने उर्दू शायरी को दर्द व असर और सोजो गुदास से मालामाल किया है। उनके फ़न में गनाइत, मौसीकियत और तरन्नुम है। हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितम जदा को हमने थाम थाम लिया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आइए सामीन, बेगम अख्तर की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है मीर तकी मीर का।

सामीन, अभी आप इंदु प्रकाश की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मीर तकी मीर का। सामीन, मीर तकी मीर की शायरी में

रही हैं। इश्क ही जहां देखो, इश्क ही इश्क है जहां देखो, सारे आलम में फिर रहा है इश्क। दिल की बात कही नहीं जाती, चुपके रहना ठाना है। दिल की बात कही नहीं जाती, चुपके रहना ठाना है। हाल अगर है ऐसा तो जिसे जाना जाना है। आइए सामीन, शांति हिरानंद की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है मीर तकी मीर का।

सामिन, अभी आप शांति हीरानंद की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मीर तकी मीर का। सामिन, मीर तकी मीर अपने ख्यालात को बेहतरीन अंदाज में पेश करने का हुनर खूब जानते थे। उनकी शायरी में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो उनके जज्बे की सदाकत और सादगी है। एक आला शायर जिंदगी की हकीकतों पर गौर करता है, शेर में पेश करने से पहले जज्बा व एहसास को शक्ल देता है। मीर ने ये फ़र्ज खूबसूरती से अदा किया है कि उनके अशार खुद ब खुद दिल में उतर जाते हैं और असर पैदा करते हैं। बेखुदी ले गई कहाँ हमको, बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतज़ार है अपना, महर की तुझसे तवक्को थी तू सितमगर निकला, महर की तुझसे तवक्को थी तू सितमगर निकला, मोम समझते थे तेरे दिल को सो पत्थर निकला। आइए सामईन, सतपाल सिंह की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है मीर तकी मीर का।

सामीन, अभी आप सतपाल सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मीर तकी मीर का। सामीन, इसमें कोई शक नहीं कि मीर तकी मीर अपने ज़माने से लेकर इस ज़माने तक उर्दू दुनिया की गज़ल पर छाए हुए हैं। यही उनकी अजमत का सबूत है। बकौल वो खुद, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। सामीन, मीर तकी मीर आज भी अपनी तख्लीकात की वजह से सबके दिलों में जिंदा जावेद है। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आबशारे गज़ल। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा दिया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह दिया गया है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने

0: नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी असैन्य हेलीकॉप्टर है, जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये अपतटीय अभियानों सहित असैन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भगवान श्रीराम की कथा भारत तक ही सीमित नहीं है, यह पूरे एशिया में फैली हुई है और गांवों तथा शहरों दोनों में इसकी झलक मिलती है। श्री सिंह केरलम में कोच्चि में आयोजित एक महाकाव्य अनेक कथाएं रामकथा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंग्याल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर और श्री धुंग्याल ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। भारत के महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास कार्यक्रम ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मूल की मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया है। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रहे डिसूजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग। The Election Commission today allotted separate names and electoral symbols to the rival factions of the Trinamool Congress Party. This will allow the groups led by Mamata Banerjee and Arup Roy to contest the by-elections in Nandigram and Rejinagar on the 6th of next month under new identities. The group led by Arup Roy has been allotted the name Democratic Trinamool Congress and the envelope symbol. The faction led by Mamata Banerjee has been allotted the name Mamata All India Trinamool Congress and the football player symbol. In its order, the poll body said both groups would be

स्त्री हैं, शरीर मध्यम, कद है 5 फुट, ये भी हर्ष विहार दिल्ली से लापता है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है लक्ष्मी देवी, पत्नी रोहित रावत। लक्ष्मी देवी की उम्र है 22 साल, महिला हैं, शरीर मजबूत, रंगे हुआ चेहरा गोल, कद है 5 फुट। ये 30 अक्टूबर 2025 को शाम करीब 8 बजे गांव ढाणा, जिला गुरुग्राम से लापता हैं। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है प्रीति, पुत्री संजय उमेश। प्रीति की उम्र है 17 साल, महिला हैं, रंग सांवला, चेहरा लंबा, शरीर मजबूत है, कद है 4 फुट 6 इंच। ये 27 दिसंबर 2025 को शाम, इसे फिर सुन लें, 27 दिसंबर 2025 को दिन में 10 बजे गांव कासन, गुरुग्राम से लापता हैं। श्रोताओं, अगले गुमशुदा व्यक्ति का नाम है ज्योति निषाद, पुत्री ओम प्रकाश। लड़की हैं, उम्र है 19 साल, रंग साफ, चेहरा लंबा, शरीर हल्का है, कद है 5 फुट 2 इंच। ये 27 जनवरी 2026 को गांव खोदीपा कॉलोनी, मानेसर, जिला गुरुग्राम से लापता हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है लाली, पत्नी बलबीर। लाली की उम्र है 21 साल, महिला हैं, शरीर हल्का, रंग गोरा, चेहरा गोल, कद है 4 फुट 6 इंच। ये 24 दिसंबर 2025 को दिन में करीब 3:30 पर गांव बासकुशला, शंगर की ढाणी, जिला गुरुग्राम से लापता है। खोए हुए व्यक्ति का नाम है अजीम हुसैन उर्फ राजा। पुरुष हैं, उम्र है 44 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य, कद है 165.1 सेंटीमीटर। ये 29 दिसंबर 2025 को शाबेरी, गौतम बुद्ध नगर से लापता हैं। और अंतिम गुमशुदा व्यक्ति का नाम है कुमारी आरती, पुत्री वरदानी। आरती महिला हैं, उम्र है 21 वर्ष, शरीर पतला, कद है 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला है। ये 4 जुलाई 2025 को ग्राम बरौला, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से लापता हैं। अभी हमारे श्रोता गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में ये सूचना सुन रहे थे। श्रोताओं, इन गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी यदि आपको मिले या आपके पास है, तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाएं और अपनी जानकारी साझा करें। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 112 यानी कि 112 पर डायल करके इन गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। अभी हमारे श्रोता गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम युवाणी।

0: कभी नोटिस किया है? फ्राइडे ईव आते ही जैसे घड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज होने लगती है। कुछ लोग वीकेंड की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि वीकेंड पे कुछ नहीं करेंगे,
1: और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कल सैटरडे है, कुछ रह गया क्या? कंफ्यूजन अडल्टहुड का स्टेटमेंट फीचर है।
0: बिल्कुल। लेकिन इस फ्राइडे को खास बनाने के लिए जुड़ चुके हैं हम। मैं हूं रिद्धि।
1: और मैं हूं उत्तम। आज हमारा सफर शुरू होगा इक्वल पे से। सुनेंगे वंशिका जी को इंडियन ब्रिक्स डेलीगेट 2026,
0: सुनाएंगे अंतरिक्ष की एक दिलचस्प कहानी, वीकली सेगमेंट में बातें होंगी थोड़ी फिल्मी, और आपके वीकेंड को और एनर्जाइज कर देने वाले होंगे कुछ शानदार गाने।
1: ये और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं, तो अगले 45 मिनट बने रहिए हमारे साथ युववाणी में, विच इज ऑफ द युवा, बाय द युवा एंड फॉर द युवा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले गीत से, फिल्म टशन से दिलहारा।

0: उत्तम उत्तम, कभी सोचा है? सैलरी स्लिप में लिखा हुआ नंबर सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हमारे मेहनत का पहचान भी होता है। लेकिन अगर मेहनत और जिम्मेदारी बराबर हो, तो क्या उसकी कीमत भी बराबर नहीं होनी चाहिए?
1: बिल्कुल रिद्धि, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मुद्दे पर जो कॉलेज की इंटर्नशिप से लेकर

0: महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 20% कम पे मिलती है। लेकिन बात ये है कि इक्वल पे का मतलब एक जॉब टाइटल के लिए एक सैलरी मिलना ही नहीं है। इट्स अबाउट इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी कि अलग अलग काम हो लेकिन उनका मूल्य समान हो।
1: यहीं से शुरुआत होती है एक रैट रेस की, जिसमें मानव समाज के दो अभिन्न अंग महिला और पुरुष लगभग सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक फर्क है जिसकी वजह से उनके रेम्यूनरेशन अलग होते हैं।
0: उत्तम, यहाँ मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी कि स्त्री पुरुष नदी के दो किनारे हैं जिनसे सुरक्षित समाज की धाराएं हैं। एक किनारा टूट गया तो धार का सोचो क्या होगा, यही सोचकर एक मूल्य के कार्यों पर सामान्य वेतन का वितरण होगा।
1: बहुत खूब रिद्धि, यहाँ से आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बराबरी का मतलब किसी को ज्यादा देना नहीं है, बराबरी का मतलब है किसी को कम न देना।
0: आपने बिल्कुल सही कहा उत्तम, लेकिन इसमें एक चैलेंजिंग एंगल भी है। क्या हर रेम्यूनरेटिव डिफरेंस को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का टैग देना सही है? क्योंकि सैलरी, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स।
1: एग्जैक्टली रिद्धि, सैलरी तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर सेम वैल्यू के काम पे सिर्फ जेंडर की वजह से डिस्पैरिटी है, फिर मामला सवाल उठाने वाला है। और शायद यही रीज़न है कि आज के समय में पे ट्रांसपेरेंसी को लेकर इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है।
0: बिल्कुल, आर्टिकल 39D कोड ऑन वेजेस, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और BCCI की इक्वल मैच फी पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इक्वालिटी की दिशा में इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब इन प्रोविजंस का सही इम्प्लीमेंटेशन हो और हर व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार फेयर पे और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले।
1: वेल सेड रिद्धि, इसी सोच के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत गीत, कुछ तो हुआ है, फिल्म कल हो ना हो से।

0: ही खूबसूरत इन्फॉर्मेटिव स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं।
1: अब इसमें कोई किरदार तो नहीं, लेकिन मोटिवेशन की गारंटी पूरी है। बीते कुछ दिनों से स्पेस के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये कहानी वहीं से निकाली है। और आपको मोटिवेट करने के लिए मैं स्पेस, पाताल सब छान दूंगा। कहानी है वॉयजर 1 की। 1977 में हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स अलाइन होने वाले थे, तो नासा ने यहाँ से दो स्पेसक्राफ्ट, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2 भेजे।
0: ये वॉयजर्स स्पेसक्राफ्ट ही थे जिन्होंने प्लैनेट्स की क्लियर इमेजेस हम तक भेजी। जुपिटर का वो बड़ा सा गोल धब्बा दरअसल सालों पुराना तूफान है, ये इसी ने बताया। सैटर्न की रिंग्स को हमने और क्लियरली जाना कि उसमें बर्फ के छोटे बड़े कण हैं। वॉयजर 2 तो अपनी खोज में यूरेनस और नेपच्यून की ओर बढ़ता रहा, पर वॉयजर 1 ने रास्ता बदला और हमें सैटर्न के मून टाइटन के बारे में और जानकारी दी।
1: वॉयजर का काम खत्म हो चुका है। वॉयजर की बैटरीज अब हर साल कमज़ोर होती जा रही हैं, इसके बाद भी वो बढ़ता ही जा रहा है। यकीन कीजिए इस बात पर कि अगले महीने वॉयजर हमसे 1 लाइट डे दूर जा चुका होगा।
0: ऐसे तो वो हमारी गैलेक्सी से ही बाहर चला जाएगा उत्तम।
1: चला तो जाएगा, लेकिन गैलेक्सी से बाहर जाने की जल्दी मत करो, उसमें अभी बहुत बहुत वक्त लगेगा।
0: लेकिन जरा सोचो, अगर किसी एलियन स्पीशीज को मिला तो?
1: मैं क्यों सोचूं जब नासा वालों ने ये ऑलरेडी सोचा हुआ है। दोनों वॉयजर्स के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा गया है, एक तरह का कॉस्मिक टाइम कैप्सूल। इसमें अर्थ की तस्वीरें हैं, हमारी दुनिया की प्राकृतिक आवाज़ें हैं, म्यूजिक है और 55 भाषाओं में ह्यूमैनिटी की तरफ से ग्रीटिंग्स हैं, जिसमें हिंदी भी शामिल है।
0: अब श्रोताओं, आप जरा सोचिए कि इस दुनिया में फिट इन होने के लिए अगर अपनी ओरिजिनल क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो क्या वाकई वो सही है?
1: वॉयजर को ही देख लीजिए, वो लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अपने अंदर इंसान की बनाई हुई एक छोटी सी कहानी संजोए हुए। उसे नहीं पता कि आगे उसे कौन मिलेगा, लेकिन वो रुक नहीं रहा।
0: तो वॉयजर से बस यही सीखिए, बढ़ते रहिए, बेहतर होते रहिए, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश में अपनी इंडिविजुअलिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तो इसी के साथ हम ये गाना सुनते हैं, हम तो भाई जैसे हैं, फ्रॉम द फिल्म वीर ज़ारा।

0: आज के वीकली सेगमेंट में हम बात करेंगे हमारी रीसेंट वॉच की, जो मुझे लगता है कि इस शो के बाद आपकी भी वॉच लिस्ट में जरूर आ जाएगी। बीते दिनों हमने देखी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, एक प्यारी सी पिता पुत्र के रिश्ते और एक पिता के स्ट्रगल की कहानी।
1: कहानी है क्रिस गार्डनर की, जो अपनी सारी सेविंग्स लगाकर एक वेंचर शुरू करते हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ख़राब हो जाते हैं। कर्ज बढ़ता है, घर छूट जाता है। क्रिस के पास रह जाता है तो सिर्फ उसका बेटा क्रिस्टोफर। लेकिन इन मुश्किल हालात में भी क्रिस अपने बेटे को संभालने की पूरी कोशिश करता है। दिन में स्ट्रगल, रात में बेटे की फिक्र और इन सब के बीच एक बेहतर जिंदगी का सपना। क्रिस का अनपेड इंटर्नशिप शुरू करना, जहां दूसरे लोगों के बीच कंपटीशन में खुद को साबित करना है और साथ ही साथ अपने बेटे की जिम्मेदारी भी निभानी है।
0: फिल्म की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जहां इंसान बार बार गिरता है लेकिन फिर उठता है। और शायद इसीलिए क्रिस और क्रिस्टोफर का रिश्ता फिल्म को और खास बना देता है।
1: एक बात जो सबसे ज्यादा मेरे साथ रही वो है क्रिस का अपने बेटे से कहना, किसी को कभी ये मत कहने देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर सपने हैं तो उनके लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। क्रिस की कहानी को यहीं थोड़ा सा रोकते हैं और सुनते हैं सजना वे सजना फिल्म चमेली से।

0: रिद्धि, इसी मूवी के रेफरेंस में इफ आई हैव टू आस्क यू व्हाट इज दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ कॉल्ड, तो आपका जवाब क्या होगा?
1: उत्तम, आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉल इट दी मोमेंटम. व्हाई? बिकॉज जैसे वैसे FYI, मैं एक बाइक राइडर भी हूँ. सो जैसे बाइक चलाते समय वी मेंटेन अ बैलेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलरली राइड करते करते आई एम ऑल्सो लर्निंग टू मूव फॉरवर्ड इन माई

0: लाइफ, ऑल्सो विदाउट लूजिंग माई बैलेंस. और शायद द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इसी बात की याद दिलाती है कि मुश्किलें आपके सपनों का फैसला नहीं करती, आपकी कोशिश करती है. तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए. ये उन फिल्मों में से है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि ख़त्म होने के बाद भी कुछ देर तक आपके साथ रहती है. और हाँ, इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं. तो इस वीकेंड थोड़ा वक्त निकालिए, फैमिली के साथ बैठिए और देखिए द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस.
1: हो सकता है कि फिल्म खत्म होने तक आपको अपनी किसी एक सपने के लिए फिर से कोशिश करने की वजह मिल जाए.
0: तो आगे बढ़ने से पहले एक गीत, चोरी चोरी चुपके चुपके.

0: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री, चलिए चलते हैं अपने इतिहास में और जानते हैं आज के दिन हमारे प्रोग्राम के अलावा और क्या खास चीजें हुई थी।
1: तो 13 से 17 सितंबर तक इंडियन आर्मी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पोलो का आज ही के दिन यानी 18 सितंबर 1948 को समापन हुआ। हैदराबाद स्टेट फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल सैयद अहमद एल अद्रूस ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया और ये तय हुआ कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बनेगा। शाम को रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह खुशखबरी देशवासियों को दी।
0: जहां आज के दिन हैदराबाद हमसे जुड़ रहा था, तो वहीं इसके एक साल बाद आज ही के दिन हमारे संविधान सभा में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। आर्टिकल 1 में हमारे देश का नाम क्या होगा, भारत या इंडिया? कुछ सदस्यों ने कहा अंग्रेजी में ही सही, पर है तो अपना ही नाम। वहीं कुछ सदस्यों ने कहा कि भारत ये केवल नाम नहीं, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह प्रस्तावित किया कि हम इसे यूं लिखते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार संविधान सभा ने अनुच्छेद 1 को स्वीकार कर लिया और इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देने वाली व्यवस्था तय हुई।
1: आज ही के दिन 1950 में जन्म हुआ था क्वीन ऑफ पैरेलल सिनेमा शबाना आजमी का। फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी और बेगम अख्तर जैसे महान कलाकारों के सानिध्य में पली बढ़ी शबाना आजमी जी ने एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में एक अलग और ख़ास पहचान बनाई। FTII की स्टूडेंट रहते हुए उन्होंने एक्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया और अंकुर, अर्थ, खंडहर, पार और गॉडमदर में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। 160 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का हुनर दिखा। चूँकि शबाना आजमी जी की अदाकारी और उनका पूरा सफ़र आज भी हम सबको इंस्पायर करता है। यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन टू अस मैम, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आइए सुनते हैं अवतार फिल्म से उनका गीत दिन महीने साल।

0: चलिए वक्त हो चला है आज के क्विक अपडेट्स का।
1: दिल्ली में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन का उद्देश्य जन भागीदारी के जरिए विकसित भारत के विजन में कंट्रीब्यूशन देना है। देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से नागरिकों को जोड़ना इस एक महीने के सेवा संकल्प अभियान के दौरान देश भर में आशीर्वाद का दिया, रक्त शिविर, चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताएं, आंगनवाड़ी सम्मान, जन सेवक महाकुंभ, स्वस्थ शिविर और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
0: भारत की चीता पॉपुलेशन बढ़कर 52 हो गई है। प्रोजेक्ट चीता के 4 साल पूरे होने पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 32 चीते भारत में ही पैदा हुए थे। कुल 49 चीते कूनो नेशनल पार्क और 3 गांधी सागर सैंक्चुरी में हैं। ये भारत के चीता कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चलिए सुनते हैं सॉन्ग चल्ला।

0: अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा।
1: अपना फीडबैक हमें yuvvaanifeedback@gmail.com पर भेज सकते हैं। yuvvaanifeedback@gmail.com।
0: इसी के साथ मैं उत्तम
1: और मैं रिद्धि आपसे लेते हैं अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता वाली धरती पर हुए हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मक्का पर हुए हमले के प्रयास के बाद भी भारत ने एक बयान जारी किया था। जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करते हैं। ये बाब अल मंडाब से होकर गुजरने वाले नौवहन स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद जताई है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और एक भारतीय युद्धपोत के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने विरोध पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है।
2: पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से

0: दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है और वह अभी भी समुद्र में है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त अभ्यर्थी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट को लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया गया है और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया गया है और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के रूप में माना जाएगा। इसके अंतर्गत पार्टी के नियंत्रण को लेकर आंतरिक विवाद के बीच अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नाम और फूल घास चिन्ह को निलंबित कर दिया गया था। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजिनगढ़ में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की अगली कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित मंजरी वी महाजन से बातचीत प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के साथ पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण पर उनके कार्यों पर चर्चा प्रसारित की जाएगी। इसे आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुन सकते हैं। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विमसी जोआकिम डिसोजा ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेकबॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसोजा ने जापान की युइना साकामोतो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE President congratulated the Prime Minister on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. The UAE President conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday. India has expressed deep concern.

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम लोकरंजनी।

0: दिन जहाँ हम संगीत से मनोरंजन करते हैं, वहीं जब सुर और ताल में समर्पण का भाव मिल जाता है तो संगीत एक गहरी साधना बन जाती है, और जब इसके द्वारा ईश्वर की स्तुति और महिमा के गीत गाए जाते हैं तो भजन का रूप ले लेते हैं, और ये भगवान की आराधना करने का बड़ा ही सरल और गहरा साधन है।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे ही हमारे साथ जब गणपति बप्पा का आशीर्वाद जुड़ता है तो मान्यता ये होती है कि हर काम हमारे संपूर्ण होते हैं और कोई भी विघ्न होता है तो वो सब दूर कर देते हैं। और इसीलिए भगवान गणेश अपने सभी भक्तों को कहते हैं कि गणेश चतुर्थी पर अवतरित होते हैं।
0: बिल्कुल, और 10 दिन के लिए फिर पूरी सेवा भाव से जब हम उन्हें ले, 10 दिन के बाद जब विसर्जन होता है तो कहते हैं कि हमारे जो सभी दुख, दरिद्रता और सभी कष्ट वो हर के ले जाते हैं, और हमारे घर में सुख और वैभव का बसेरा हो जाता है।
1: तो इसी के साथ हम ये भी कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सबको गणपति बप्पा का बहुत सारा आशीर्वाद मिले और आपके सारे काम बने, कोई विघ्न नहीं आए। तो ये हमारी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: और भाई, जब हम कर रहे हैं लोक संगीत की बात तो हम भी अपने इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गणेश भजन, और कलाकार होंगे चंद्रपाल और साथी।
2: वो मेरे

0: श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे कलाकार चंद्रपाल और उनके साथियों से ये गणपति वंदना।
1: और भाई बहुत ही सुंदर गाया, और 10 दिन में हम प्रभु की सेवा किस किस तरीके से कर सकते हैं उसको पूरा उन्होंने अपने इस लोकगीत के माध्यम से हम तक पहुंचाया। और अगर बात करें भगवान श्री कृष्ण की, जिन्हें बनवारी भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बचपन में हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे, गायों को चराते थे और वनों में घूमते थे और बड़ी अटखेलियाँ करते थे, और इसी स्वरूप को याद कर रही हैं सविता शर्मा अपने इस लोकगीत के माध्यम से। सुनते हैं ये लोकगीत।

0: तो सुनने वाले सभी श्रोताओं, आपने अभी सुना सविता शर्मा से ये कृष्ण भजन, जो कि बहुत ही सुंदर भाव थे। और कान्हा जी के तो बहुत सारे नाम थे, लड्डू गोपाल, तो उन्हीं में से बनवारी नाम का जो एक बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने भाव दिखाया, तो छेड़ते थे वो गोपियों के साथ जो उनकी हलचल थी वो सब उन्होंने बताई।
1: बिल्कुल। और आज के लोकरंजनी कार्यक्रम में हमने गणेश जी को याद किया, कृष्ण भगवान को याद किया, तो ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। अगर उनकी बारात की बात करें तो अत्यंत अनोखी, अलौकिक और विचित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ देवी देवता बल्कि जीव जंतु भूत प्रेत सब शामिल हुए, और भगवान ने भी अघोरी का रूप ले रखा था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान शिव जितने भयंकर है उतनी सुंदर भी है। बाद में माँ पार्वती के अनुरोध पे उन्होंने जो रूप दिखाया वो अत्यंत सुंदर भी था। तो भगवान शिव की बारात को ही अपने गीत के माध्यम से दर्शा रहे हैं सुभाष नाथ, और साथ ही तो सुनते हैं ये शिव भजन।

0: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे शिव भजन, कलाकार थे सुभाष नाथ और उनके साथी। और इसी के साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता, हाजिर है लेकर एक बार फिर से खेल जगत से जुड़ी तमाम खेल गतिविधियां। और आज इस खेल कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी
3: संचित जैन।
2: संचित और मैं आपको रूबरू कराएंगे उन खेल गतिविधियों से इस वक्त जो पूरे वर्ल्ड के अराउंड खेली जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी एशियन गेम्स की, जहां पर हर एक खिलाड़ी हर एक कंट्री से अपने अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए जुझारू तरीके से मैदान में उतर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर चेस की, साथ ही साथ बात होगी शूटिंग की भी, और इसके साथ साथ आपको लेकर चलेंगे टेनिस के कोर्ट में भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस वक्त चल रहे एशियन गेम्स में, जहां पे आज दूसरे दिन के खेल के अगर हम बात करें तो भारत के लिहाज से जो मुकाबले रहे उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा है, क्योंकि भारत का जो आगाज है वो काफी शानदार तरीके से हुआ। अगर हम बात करें सबसे पहले दूसरे दिन में खेले गए मैचेस की इंडिया के लिहाज से, तो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है महिलाओं की, उन्होंने मुकाबला खेला जापान के साथ, जहां एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने अभियान का आगाज शानदार तरीके से जीत के साथ किया। भारत का पहला मैच जापान के साथ था। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान के खिलाफ 8 विकेट की आसान जीत हासिल कर ली। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जापान की पारी सिर्फ 57 रनों पर ही सिमट गई। वहीं भारतीय टीम ने 5 ओवर में 2 विकेट खोकर इस आसान से लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत ने टॉस जीता और जापान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जापान ने धीमी शुरुआत की, लेकिन पावर प्ले में उसने विकेट नहीं दिए। यहां

0: लगा कि टीम कुछ अच्छा स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन 7वें ओवर में टीम के विकेट गिरने शुरू हुए और 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर उसका आखिरी विकेट गिर गया और टीम सिर्फ 57 रन ही बना पाई। भारत ने टारगेट 2 विकेट खोकर 5 ओवर में हासिल कर लिया। भारत को विकेट दिलाने की शुरुआत श्रीचरणी ने की। उन्होंने 7वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 विकेट लेकर विकेटों की शुरुआत की और फिर लगातार विकेट गिरते ही रहे। टीम की सिर्फ दो बल्लेबाज जो है वो दहाई के अंक में जा सकी, जिसमें सबसे ज्यादा रन जो है 25 रन अयाका काटो स्टाफोर्ड ने बनाए। उनके सलामी जोड़ीदार हारूना 10 रन बना पाई। भारत की तरफ से श्री चरणी ने 4 ओवर में 10 रन दिए और 2 ओवर मेडन करते हुए 4 विकेट लिए। उनके अलावा शेफाली वर्मा ने 2 सफलताएं अर्जित की। श्रेयंका पाटिल और दीप्ति शर्मा के हिस्से में 1-1 विकेट आए। 2 बल्लेबाज रन आउट हुए और इस तरीके से जो भारतीय महिला टीम है उनकी जो एक जीत है वो यहाँ सुनिश्चित हुई और एशियन गेम्स में भारत का जो एक सफर है वो मैं कहूंगी शुरुआत जीत के साथ हुई। और भी जीते हुई हैं आज के दिन में, तो क्या है वो खबर, चलते हैं संचित के पास।
1: जी बिल्कुल कविता, बात करते हैं टेक बॉल की, जो कि एशियन गेम्स में अपना डेब्यू कर रहा है एज अ गेम। उसमें खुशखबरी आई है, इंडिविजुअल इवेंट में क्विंसी डिसूजा भारत की सेमीफाइनल में पहुंच गई है ग्रुप टॉपर बन के। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोटो को हराया और अब सेमीफाइनल में एंट्री ले ली है। मिक्स इवेंट में क्विंसी डिसूजा और अनस अपना मैच क्वार्टर फाइनल में हार गए, लेकिन क्विंसी डिसूजा से बहुत उम्मीदें हैं कि वो आगे चल के एक पदक लेके आएंगी।
0: जी बिल्कुल, और मैं बता दूं क्विंसी का मुकाबला कल खेला जाएगा। यही अगर एशियन गेम्स पर ही आगे बात करें तो अभी इसकी औपचारिक शुरुआत नहीं हुई है, औपचारिक शुरुआत इसकी कल होनी है, जिसमें की जो पूरी ओपनिंग सेरेमनी है एक भव्य समारोह जो है वो होना है, जिसमें भारतीय शूटर मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। अब क्योंकि एशियन गेम्स पर बात चल रही है तो अभी लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं एशियन गेम्स में खेलों की सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे 3 ऐसे खेलों की जिसमें दम दिखाना होता है और साथ ही साथ एक खिलाड़ी को इंडिविजुअली पूरा धैर्य रखकर अपने ओपोनेंट को देखना होता है जीत के लिए। चलिए सुनते हैं विस्तृत रिपोर्ट। मैट हो या अखाड़ा, दाब हो या दम, पकड़ हो या पलटवार, एशियाई खेलों में कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर से नहीं जीते जाते, उनमें ताकत के साथ चाहिए धैर्य, तकनीक, संतुलन और आखिरी सेकंड तक लड़ने का जज्बा। जापान की आइची नागोया में होने जा रहे 20वें एशियाई खेलों में भारत की नजरें कई खेलों पर हैं और आज हमारी एशियन गेम सीरीज के एपिसोड 10 में हम उन 3 खेलों की बात करेंगे जहां खिलाड़ी अकेले अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीदों के साथ मैट पर उतरते हैं। आज बात होगी जूडो की पकड़ की, कुश्ती के दाव पेच की और कबड्डी की दमदार रेड की। सबसे पहले बात जूडो की। जूडो में जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, सही समय पर सही पकड़, शरीर का संतुलन और ओपोनेंट की चाल को समझना, यही इस खेल की असली ताकत है। और इस बार भारत की एशियन गेम्स जूडो टीम में 3 खिलाड़ी शामिल हैं। खास बात ये है कि ये तीनों ही महिला खिलाड़ी हैं। अस्मिता डे 48 kg, यामिनी मौर्य 57 kg और इनुंगान भी ताखे लंबम 70 किलोग्राम, जो इस बार एशियन गेम्स में भारत के मेडल की प्रबल दावेदार हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में जूडो में भारत के प्रदर्शन पर अगर नजर डालें तो इस खेल में भारत का प्रदर्शन काफी सीमित और औसतन रहा है। भारत ने अब तक एशियन गेम्स 1986 से 2022 के इतिहास में कुल 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और पिछले 32 सालों से भारत इस खेल में एक भी मेडल नहीं जीत पाया है। एशियन गेम्स में जूडो को पहली बार 1986 में सियोल में शामिल किया गया था, जहां भारतीय टीम ने डेब्यू करते हुए 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सबको चौंका दिया था। वहां मेडल विजेता थे संदीप बयाला, कावास बिल्ली मोरिया, श्याम सिंह गुज्जर, बन्नू सिंह। इसके साथ एकमात्र महिला मेडल विजेता पूनम चोपड़ा रही थी, जिन्होंने 1994 के हिरोशिमा एशियन गेम्स में महिलाओं की 56 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला जूडो खिलाड़ी रही हैं। इसके बाद से भारत एशियन गेम्स में जूडो स्पर्धा में कोई पदक नहीं ला सका। ऐसे में हालिया प्रदर्शन में नई उम्मीद लेकर हमारी 3 महिला जूडोका, जिनमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली अस्मिता डे हैं, जिनसे 32 साल के मेडल के सूखे को खत्म करने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अस्मिता ने अपनी एशियन गेम्स की तैयारियों को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: अभी मैं ये माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से।

0: के लिए, अपने देश के लिए, एशियन गेम्स में भी। तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं सबका एक होप बन गया है कि मैं ज़रूर मेडल जीत के आऊँगी, या हमारे जितने भी मतलब इंडिया के जूडो के प्लेयर्स हैं वो सारे जीत के आएंगे। तो यही कहना चाहूँगी कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ ट्रेनिंग करके, बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं ज़रूर लेके आऊँगी।
1: अस्मिता डे 30 सितंबर को मैट पर उतरेंगी, जबकि यामिनी मौर्य और इनुगान भी 1 अक्टूबर को मुकाबला करेंगी। चलिए अब बात करते हैं कुश्ती की, जहां मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं होता, यहां एक पहलवान को विरोधी की हर चाल को पढ़ना होता है, सही समय पर दाव लगाने होते हैं और आखिरी सेकंड तक अपना संतुलन बनाए रखना होता है। एशियन गेम्स में कुश्ती, फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों कैटेगरीज में खेली जाती है। भारत का इस खेल से लंबा और शानदार इतिहास रहा है। 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 3 गोल्ड सहित 12 मेडल जीते थे, और पिछले एशियन गेम्स की बात करें तो भारत ने रेसलिंग में 6 मेडल, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे। अब बारी है आईची नागोया की। इस बार भारतीय महिला पहलवानों में बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें निशा धैया के लिए 2026 एशियन गेम्स एक खास पड़ाव है। उनके सामने 68 किलोग्राम वर्ग में खुद को साबित करने की चुनौती होगी। पिछले बड़े मुकाबलों के अनुभव और चोटों से मिली सीख के बाद इस बार उनका फोकस अपने प्रदर्शन को पूरी तरह एशियन गेम्स के मंच पर रखने का है। क्या कहती है निशा, आइए सुनते हैं।
2: एशियन गेम्स के लिए जैसे जापान में होने वाले हैं तो तैयारी काफी अच्छी चल रही है। आपको पता होगा कि हमारे जैपनीज कोच हैं जो हमारी तैयारी देख रहे हैं, और एक यूएसए से भी आए हैं बटलर सर, तो उनके साथ काफी अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग करके, और काफी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। उम्मीद कर सकते हैं मेरा पूरा फोकस एशियन गेम्स गोल्ड का ही है, ना उससे कम कुछ भी होगा।
1: मनीषा भानवाला के लिए एशियन गेम्स डेब्यू है। 62 किलोग्राम से 57 किलोग्राम वर्ग में आने के बाद उन्होंने अपनी ताकत और तकनीक पर नए सिरे से काम किया है। अब एशियन गेम्स में पहली बार उतरते हुए उनके सामने नई कैटेगरी में अपने प्रदर्शन को बड़े मंच तक ले जाने की चुनौती है।
3: ये मेरा फर्स्ट एशियन गेम्स है और मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा सपना है, मेरी फैमिली का सपना है, और हर खिलाड़ी का मेरे हिसाब से सपना होता है कि हम गेम्स खेले, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो ये वीरेंद्र जी सर मेरे साथ पिछले 5 साल से मैं इंडिया कैंप में हूँ सर के साथ, सीनियर कैंप में। तो सर को पता जैसे कि मैं कहाँ पे लॉस करती हूँ, कहाँ पे विन करती हूँ, तो मेरी टेक्निकों को लेके इनके माइंड में पहले ये है कि इसकी किस चीज़ पे ज़्यादा काम करवाना है। तो वो टीम, पूरी टीम के साथ मिलके मेरे साथ, जैसे मेरी कोई टेक्निक ख़राब है उसको ठीक कर रहे हैं, और मेरे स्टेमिने पे और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली वेट चेंज किया है, तो मेरी स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी ध्यान रख रहे हैं वो लोग, क्योंकि मेरा एक प्लस पॉइंट है मेरी स्ट्रेंथ।
1: रेसलिंग में एक और बड़ी उम्मीद महिलाओं में है अंतिम फंगाल। अंतिम फंगाल हांगझोऊ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। अब 53 किलोग्राम वर्ग में एक बार फिर एशियन गेम्स के मंच पर उतरते हुए उनके पास पिछले अनुभव को इस बार और बेहतर प्रदर्शन में बदलने का मौका है। उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल विनिंग एक्सपीरियंस है, और इस बार तैयारी में अटैक और काउंटर पर विशेष काम किया गया है। क्या कहती है अंतिम, आइए सुनते हैं।
4: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार मैं 53 केजी में सिलेक्ट हुई हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। इस बार पहले से ज़्यादा पता है, मतलब पहले सीनियर लेवल पे वो बाउट नहीं लड़ी थी मैंने, अब इस बार बहुत बाउट भी लड़ी हैं, इसके 2 साल हो गए, बीच में 2-3 साल हो गए हैं, तो अभी ये है कि मैं उनकी बाउट देखी है, उनके साथ बाउट हुई भी है मेरी, तो अभी उनके ऊपर गलतियों के ऊपर काम करूँगी जो मेरी गलतियाँ, और अच्छे से बाउट करूँगी।
1: भारतीय रेसलिंग टीम में एक्सपीरियंस और युवा प्रतिभा का मिक्स है। पिछली एशियन गेम्स में भारत ने रेसलिंग में 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब आईची नागोया में टीम उस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। कोच वीरेंद्र धैया ने भी टीम के तैयारियों को लेकर भरोसा जताया है।
5: महिला रेसलिंग से ज्यादा उम्मीदें हैं, नए और पुराने खिलाड़ियों का मिक्सर है, जैसे 50 किलो में 18 साल की बिल्कुल नई लड़की है, दीपांशी है, और प्रिया मलिक भी नई है, बाकी मनीषा है, मानसी है, निशा दैया है ओलंपियन, तो दोनों का मिक्स है, तो बढ़िया उम्मीद हमें जापान से, जापान में होप्स बढ़िया रिजल्ट रहेगा हमारा, पिछली बार से मच बेटर।
1: तो कुश्ती के मैट पर दाव, ताकत और तकनीक की इस जंग के साथ हमारी बात यही नहीं रुकती, भारतीय पहलवानों की मेहनत और अब तक के अनुभव ने एशियन गेम्स के लिए उम्मीदें जरूर बढ़ाई हैं। लेकिन खेल का रोमांच यहीं खत्म नहीं होता, अब बारी है उस खेल की जहां एक रेड, एक टैकल और टीम का बेहतरीन तालमेल पूरे मुकाबले का रुख बदल सकता है। अब बात होगी कबड्डी की। भारत में सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक कबड्डी ने पिछले कुछ सालों में खेल प्रेमियों को कई रोमांचक पल दिए हैं। कबड्डी दर्शकों के लिए एक आकर्षण पैदा करने वाला

0: शारीरिक शक्ति, चपलता और रणनीति का खेल है। कई सालों का पुराना इतिहास रखने वाले कबड्डी को बर्लिन 1936 ओलंपिक से पहले एक प्रदर्शनी खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इस खेल को जल्द ही एशिया में लोकप्रियता मिली, हालांकि चीन के बीजिंग में 1990 के संस्करण के एशियन गेम्स के प्रोग्राम में शामिल किए जाने के बाद कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से देखा जाने लगा। तब से लेकर ये खेल हर एशियाई खेल का हिस्सा रहा है। एशियाई खेलों में कबड्डी सिर्फ पुरुषों का इवेंट हुआ करता था। बाद में साल 2010 से इस खेल प्रतियोगिता में महिलाओं की स्पर्धा भी शुरू हो गई। एशियाई खेलों में भारतीय कबड्डी टीम का दबदबा रहा है। साल 1990 के एशियाई खेल में 6 टीमों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान और नेपाल ने राउंड रॉबिन प्रारूप में प्रतिस्पर्धा की, जिसमें प्रत्येक टीम ने एक दूसरे के खिलाफ एक बार प्रतिस्पर्धा की। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा और स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई खेलों के इतिहास में अब तक हुए 9 संस्करणों में 8 बार स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं पिछले एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऐसे में जापान के आईची नागोया में आयोजित हो रहे 20वें एशियन गेम्स में कबड्डी एक बार फिर सबसे रोमांचक खेलों में से एक है। इस बार पुरुष कबड्डी टीम की कप्तानी सुनील कुमार और महिला टीम की कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं। अपनी टीम की तैयारियों पर भारतीय महिला कबड्डी कप्तान पुष्पा राणा कहती हैं,
1: हमारी जो मेन कॉम्पिटिटर टीम में है वो वैसे तो सारी अच्छी है, बट जो लास्ट 2-3 सालों से हमें टक्कर दे रही है वो चाइनीज ताइपाई है और एशियन ईरान की टीम है। लास्ट एशियन गेम में भी हमारा जो चाइनीज ताइपाई है वो सिर्फ हम एक पॉइंट से विन हुए थे, तो मुझे लगता है वो एक अच्छी टीम है और एक ईरान की टीम अच्छी है।
2: हाँ, काफी एक्साइटेड हूँ और 2023 में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, तो मैं चाह रहा हूँ 2026 में भी सेम रहे। बिल्कुल मेडल लेके आएंगे और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। देश के युवा को यही बोलना चाहूँगा कि ये धरती से जुड़ा हुआ गेम है, इसको सपोर्ट करें और आपके जो एक्सपेक्टेशन है गोल्ड मेडल की वो डेफिनेटली हम पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे और काफी आपको एंटरटेन करेंगे।
0: कबड्डी की प्रतियोगिताएं 21 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक चलेंगी। तो जूडो की पकड़, कुश्ती के दाव पेच और कबड्डी की रेड और टैकल, इन तीनों खेलों की अपनी अलग पहचान है, लेकिन मंजिल एक ही है, देश के लिए शानदार प्रदर्शन। तो उम्मीद है कि इन तीनों खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाएगी और तिरंगा एक बार फिर गौरवान्वित होगा। तो देश के तिरंगे को गौरवान्वित करने के लिए हमारे खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं, और ऐसी ही मेहनत की है हमारे चेस खिलाड़ियों ने। 46 पीडे चेस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ी जो हैं लगातार चेस बोर्ड पर अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं संचित के पास।
3: जी बिल्कुल कविता, हर 2 साल में दुनिया भर की नेशनल टीम्स फिडे चेस ओलंपियाड में अपने झंडे तले इकट्ठा होती हैं, जो इस खेल में टीम कंपटीशन का सबसे बड़ा लेवल है। जाने माने चैंपियन और उभरते हुए टैलेंट आमने सामने खेलते हैं और वो अपनी ग्लोबल पहचान और देश के गौरव दोनों को साथ लेकर आते हैं। सितंबर 2026 में समारकंद चेस की दुनिया के केंद्र में होगा, क्योंकि 46वें फीडे चेस ओलंपियाड इस खेल के सबसे मशहूर टीम चैंपियनशिप के लिए दुनिया के प्रमुख देशों को एक साथ लाएगा। ओपन और महिला टूर्नामेंट एक साथ होते हैं, जिसमें सैकड़ों फेडरेशन टीम कॉम्पिटिशन के 11 राउंड में हिस्सा लेते हैं। 4 बोर्ड पर अपने देशों के लिए टीम्स ओलंपिया टाइटल के साथ साथ बोर्ड सम्मान के लिए भी मुकाबला करती हैं। ये चेस के सबसे मुश्किल फॉर्मेट्स में से एक है। राउंड 2 मुकाबलों की बात की जाए तो भारत महिलाओं ने फिनलैंड के साथ वैशाली रमेश बाबू का मैच ड्रॉ रहा। दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और सविता श्री भी अपना मैच जीत गए और भारत ने 3.5 अंक कमा के अपना टाई जीत लिया। वहीं ओपन की बात करें तो भारत का मैच इंडोनेशिया के साथ था राउंड 2 में, जिसमें प्रगनंदा, डी कुकेश और विदित का मैच ड्रॉ रहा, लेकिन निहाल सरीन ने अपना मैच जीत लिया और भारत को 2.5 अंकों के साथ ये टाई जितवा दिया। बाकी मैचों में चाइना ने चिले को 3-1 से हराया, जर्मनी ने उज्बेकिस्तान को 3.5 अंकों के साथ हरा दिया, नीदरलैंड्स ने नॉर्थ मैसिडोनिया को 2.5 अंकों के साथ हरा दिया, अजरबैजान ने फिलीपींस को 3-1 से हरा दिया। ये थी चेस की दुनिया से खबर। ये 11 राउंड खेले जाएंगे, अभी सिर्फ 2रा राउंड पूरा हुआ है, तो सुनते रहिए खेल खिलाड़ी आगे के राउंड्स की खबर के लिए।
0: बिल्कुल, और अब क्योंकि चेस की खबर हो चुकी है और एक जो बहुत ही बेहतरीन खबर है वो क्रिकेट ग्राउंड से भी है, जहां भारतीय पुरुष टीम ने अफगानिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और किया है क्लीन स्वीप। तो चलिए सुनते हैं पूरी जानकारी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बल्ले से आया तूफान, गेंदबाजों ने बरपाया कहर और नतीजा रहा भारत के नाम एक बड़ी जीत। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। इस जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने ऐसी तूफानी पारी खेली कि कई रिकॉर्ड उनके नाम हो गए। टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भारत की शुरुआत ही बेहद आक्रामक रही। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पहले विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी की। अभिषेक ने महज 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो किसी भी भारतीय पुरुष बल्लेबाज का T20 में सबसे तेज शतक है। अभिषेक ने सिर्फ 34 गेंदों पर 108 रन बनाए, जिनमें 9 चौके और 11 छक्के शामिल रहे। अभिषेक शर्मा इस तरह भारत की ओर से सबसे तेज T20 इंटरनेशनल शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2017 में इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक लगाया था। साथ ही T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में किसी बल्लेबाज का ये तीसरा सबसे तेज शतक रहा। राशिद खान ने अभिषेक की तूफानी पारी का अंत किया। संजू सैमसन ने भी लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया और 35 गेंदों पर 50 रन बनाए। हालांकि बीच के ओवर्स में अफगानिस्तान ने वापसी की और भारत के कुछ बल्लेबाज रन आउट हुए, लेकिन 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा हो गया और अफगानिस्तान के सामने चुनौती थी 222 रन की। 222 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अक्षर पटेल ने शुरुआती झटके दिए और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालते हुए अफगानिस्तान को दबाव में रखा। कप्तान इब्राहिम जादरान ने 25 रन बनाए, जबकि रहमानुल्ला गुरबाज ने 15 और अजमतुल्ला उमरजई ने 17 रन का योगदान दिया। भारत की ओर से रवि बिश्नोई और नीतीश कुमार रेड्डी ने 3-3 विकेट लिए। नीतीश ने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर अफगानिस्तान की पारी को पूरी तरह समेट दिया। अक्षर पटेल ने 2, जबकि यश ठाकुर और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट लिया और अफगानिस्तान की पूरी पारी इस तरह 14.1 ओवर में सिर्फ 94 रन पर ही सिमट गई। इस तरह भारत ने मुकाबला 127 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद क्या कहना था कप्तान श्रेयस अय्यर का, आइए सुनते हैं।
4: कमेंडेबल परफॉर्मेंस बाय देम एज वेल। इट्स नॉट, इट वाजंट एन इजी विकेट, बट द वे अभिषेक प्लेड टुडे, इट वाज फ्लॉलेस एंड इट वाज जस्ट प्लीजिंग टू द आई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई न्यू दैट आई वाज गोइंग टू बैट टुडे बिकॉज़ वी हैड अ ब्रीफ कन्वर्सेशन with Ibrahim. He wanted to bowl in the first 2 games as well, so I had this vision, envision. I had envisioned that we were going to bat. Yeah, phenomenal start we got, and then obviously just to cream those runs in between to get 220 on the board was commendable.
0: तीसरे T20 में 108 रन की रिकॉर्ड पारी के लिए अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। उन्होंने पहले मैच में 82 और दूसरे मैच में 39 रन बनाने के बाद तीसरे मुकाबले में शतक जड़ा।
5: I feel as a batter, as a cricketer, sometimes it's gonna go up and down, but it's the team dressing room momentum and the, you know, the way we all think about it. I feel that's very important because that's the time we have to be in one unit and, you know, just focus on the next game and just keep on dominating.
0: तो अभिषेक शर्मा के शतकीय तूफान, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। अब भारतीय टीम का अगला पड़ाव है एशियन गेम्स, जहां T20 क्रिकेट में भारत की नजरें एक और मजबूत प्रदर्शन पर होंगी। तो भारतीय पुरुष टीम की नजरें अब एशियन गेम्स पर है, महिलाओं ने तो आगाज कर दिया है, अब इंतजार है पुरुषों की टीम जिस दिन मैच खेलेगी उस दिन का। लगातार अपडेट्स आपको आकाशवाणी के माध्यम से हम देते रहेंगे एशियन गेम्स की। और अब आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में, बात करते हैं हम शूटिंग की, चलते हैं संचित के पास।
3: जी बिल्कुल कविता, पोरपेटो इटली में 12 सितंबर से 20 सितंबर 2026 तक ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शॉटगन टूर्नामेंट चल रहा है। जूनियर मेन ट्रैप इवेंट की बात करें तो 5th राउंड के बाद इटली के एंड्रिया डियाना पहले स्थान पर रहे, स्पेन के जोजे बरेरो दूसरे स्थान पर और स्लोवाकिया के टिमोथी टॉथ तीसरे स्थान पे। भारत की बात करें तो भारत के निशानेबाज में शक्तिवल मुट्ठू कुमार युगन 114 के स्कोर के साथ छठवें स्थान पर रहे। बाकी निशानेबाजों की बात करें तो अर्जुन 12वें स्थान पर रहे, विनय प्रताप सिंह 15वें स्थान पे, उद्धव सिंह राठौर 16वें स्थान पे, जुहैर खान 42वें स्थान पे और सैयद अली 54वें स्थान पर रहे।

0: वहीं जूनियर विमेन ट्रैप इवेंट की बात करें तो 4 राउंड के बाद स्पेन की इरीन रूइज पहले स्थान पर चल रही हैं। भारत के सबीरा हरीस 7वें स्थान पर हैं, भव्या त्रिपाठी 14वें स्थान पे, कृषिका जोशी 15वें स्थान पे, आद्या कटियाल 27वें स्थान पे और तनिष्का कुमार 28वें स्थान पे। जूनियर मिक्स टीम ट्रैप इवेंट कल 19 सितंबर को खेला जाएगा।
1: इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अगली खबर पे, बात होगी डेविस कप की, उसमें भी हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं भारतीय लिहाज से, तो क्या है पूरी खबर संचित हमें बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, अब बात करते हैं डेविस कप, जी हाँ, यानी लॉन टेनिस की, जहां ओलंपिक टेनिस सेंटर सियोल साउथ कोरिया में 18 और 19 सितंबर को डेविस कप क्वालिफिकेशन मैच खेले जा रहे हैं। जो भी ये मैच जीतेगा वो बोलोगना इटली में होने वाले डेविस कप फाइनल 8 में अपनी जगह पक्की कर लेगा। इंडियन टीम की बात करें तो उसमें सुमित नगल, डी सुरेश, मानस धामने, एन श्रीराम बालाजी और एन के पुनाहा शामिल हैं। आज खेले गए पहले मैच में भारत के डी सुरेश ने खूबसूरत टेनिस का प्रदर्शन करते हुए पहला सेट 6-3 से जीत लिया, लेकिन कोरिया के सुनवून क्वान ने हार नहीं मानी और अगले दोनों सेट जीतकर कोरिया को 1-0 की बढ़त दिलाई। सुनू क्वान ने डी सुरेश को 3-6, 6-3, 6-4 से हरा दिया। आज खेले जाने वाले दूसरे मैच में सुमित नगल का मैच एच चंग से था और सुमित नगल पहला सेट 6-3 से जीत गए। दूसरे सेट में सुमित नगल चंग को ब्रेक कर दिया था और अच्छा खेल रहे थे, लेकिन चंग ने हार नहीं मानी और लाजवाब टेनिस का प्रदर्शन करते हुए दूसरा सेट 6-4 से जीत लिया। तीसरे सेट में घमासान टेनिस के बाद चंग ने सुमित नगल को 7-5 से हराकर पूरा मैच जीत लिया और साउथ कोरिया को 2-0 की बढ़त दिलाई। कल खेले जाने वाले मैचों में के एस बालाजी और एन के पुनाहा का मैच जे नैम और ओ पार्क के साथ होगा। ये मैच सुबह 8:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से खेला जाएगा। उसके बाद एस सुमित नगल का मैच एस कून से होगा और डी सुरेश का मैच एच चंग से। आइए अब चलते हैं कविता के पास अगली खबर के लिए।
1: जी हाँ, और अब टेनिस कोर्ट से निकलकर हम सीधे आपको लिए चलेंगे फुटबॉल के ग्राउंड में, जहां बात होगी सुब्रतो कप की। फुटबॉल के मैदान से खबर है, 17 सितंबर को दिल्ली में खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और कई मुकाबलों में गोल की बारिश देखने को मिली। राजोकरी फुटबॉल ग्राउंड पर दिन के पहले मुकाबले में श्रीलंका स्कूल्स फुटबॉल एसोसिएशन और आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट आमने सामने थे। मुकाबले बेहद रोमांचक थे और मुकाबलों में एएसपी ने शानदार खेल दिखाते हुए श्रीलंका को 5-0 से करारी शिकस्त दे दी। वहीं राजोकरी में ही खेले गए दूसरे मुकाबले में आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी एएससी सेंट्रल बेंगलुरु ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून की उत्तराखंड टीम को 5-0 से हरा दिया। इसके बाद दिन की शुरुआत और दिन के बाद के मुकाबले होते हैं। तीसरा जो मुकाबला था वो हुआ अरुणाचल प्रदेश और नेवी चिल्ड्रन स्कूल कोची के बीच। अरुणाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया। उधर पिंटो पार्क फुटबॉल ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पाखुर झारखंड और छत्तीसगढ़ की विवेकानंद विद्यापीठ टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने 1-0 से जीत हासिल की। तो ये पूरा जो एक दिन का लेखा जोखा था 17 सितंबर का, इस तरीके से जो अंडर 17 के मैचेस हुए उसमें ये नतीजे हम सबके सामने हैं। तो सुब्रतो कप में एक और जहां एएसपी और आर्मी बॉयज ने 5-5 गोल की बढ़त जीत हासिल की, वहीं अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी अपने जो मुकाबले हैं जीतकर अहम अंक हासिल कर लिए। तो कहा जा सकता है संचित के मैदान पर मुकाबले कड़े हैं और हर मैच के साथ रोमांच जो है वो बढ़ रहा है। युवा खिलाड़ी हैं ये सारे और अपने प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाने की फिराक में जो लगे हुए हैं ये उनकी मेहनत को दर्शाता है।
0: जी बिल्कुल कविता, मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा सुब्रतो कप भारत का प्रसिद्ध इंटर विद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है और ये नई दिल्ली और बेंगलुरु में खेला जा रहा है। अंडर 17 और अंडर 15 कैटेगरीज में गेम खेले जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि यही लड़के आगे चल के भारतीय फुटबॉल को ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे।

0: एशियाई खेलों में खिलाड़ियों के लिए होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में, क्योंकि एशियन गेम्स जो है वो खेले जा रहे हैं, औपचारिक शुरुआत जो है वो कल होगी ओपनिंग सेरेमनी के साथ, और जिसमें ध्वजवाहक रहेंगे भारत की तरफ से मनु भाकर और तजिंदर पाल सिंह तूर। लेकिन अगले दो एशियाई खेलों में क्या कुछ खास है खिलाड़ियों के लिए वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के महानिदेशक के अनुसार एक घोषणा की गई है कि दोहा और रियाद में होने वाले जो अगले दो एशियाई खेल हैं उनमें खिलाड़ियों के लिए खेल गांव की व्यवस्था होगी। अब इसमें कल से शुरू होने वाले आईची नागोया खेलों को आवास की अव्यवस्था के लिए जो एक प्रॉब्लम जो सामने आ रही थी, वो उसके साथ साथ यहां पर ये व्यवस्था लागू करने के लिए ही शायद ये जो कदम है ये उठाया गया है। और काफी सारे जो संघर्ष हैं उसके बावजूद भी सारे खिलाड़ी सेटल हो चुके हैं और अपनी अपने जो इवेंट हैं वो खेल रहे हैं, और हम भारत के लिए होप यहाँ पर कर रहे हैं कि जब इंडिया अपने जो मुकाबले हैं लगातार खेलेगी तो किस तरह के परिणाम जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा दल जो है एशियाई खेलों में पार्टिसिपेशन के लिए भारत की तरफ से गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार आप एशियन गेम की जो सारी की सारी अपडेट है हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी पर लगातार सुनेंगे, और संचित तैयार है आपको एक और अपडेट देने के लिए।
1: जी बिल्कुल, जाते जाते बात कर लेते हैं कल के रिकॉर्ड पारी की। पारी जो अभिषेक शर्मा ने खेली, 30 बॉलों में 100 रन बना दिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फास्टेस्ट 100 का। कल भारत ने अफगानिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा मैच खेला जिसमें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई। 17 ओवर में 200 रन बना के भारत एक समय पर लग रहा था कि 250 का आंकड़ा पार कर लेगा, लेकिन उसी समय 3 विकेट जल्दी जल्दी गंवा दी और भारत ने 20 ओवर में सिर्फ 221 रन ही बनाए। अफगानिस्तान की बात करें तो उनकी एक भी पार्टनरशिप नहीं चल पाई और लगातार विकेट गिरते रहे, और अफगानिस्तान 14 ओवर में 94 रन ही बना पाया। भारत ये मैच 127 रनों से जीत गया और ये पूरी सीरीज 3-0 से जीत गया। मैं सभी श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि हालांकि ये मैच भारत में ही खेले जा रहे थे, इस सीरीज के होस्ट नेशन ऑफिशियली अफगानिस्तान था। चलिए अब चलते हैं कविता के पास।
0: जी हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपने सही जानकारी दी है, क्योंकि हम इंडिया में मैचेस हो रहे थे लेकिन इसकी जो मेजबानी है उसका श्रेय पूरा अफगानिस्तान को जाता है, और ये मुकाबले रोमांचक तरीके से खेले गए। दोनों ही टीमों ने ये जो मैच है इसका लुत्फ भी लिया, और इसके साथ साथ एक जो यहाँ पर खेल भावना जो है वो भी मैदान पर हमें साफ साफ नजर आई, जब एक विनिंग मोमेंट जो होता है और जब ट्रॉफी दी जाती है। तो अब इसी के साथ जो कार्यक्रम में घड़ी की सुइयां हैं हमें अनुमति नहीं दे रही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, तो मैं कविता शर्मा अपने सहयोगी संचित जैन अपने प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग तथा समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों

0: को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर के छात्र अब चिप्स डिजाइन और टेप आउट कर रहे हैं। लगभग 400 इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास उद्योग स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन ऑटोमेशन टूल्स उपलब्ध हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी के भंडारण की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पान अपेक्षाञ्च सर्वथा अंगीकारयोग्यं न इति मत्वा स्पष्टं प्रख्यातवान्।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: उत्तरसेना सेनापतिः लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा इत्येषः उधमपुरे ऑपरेशन सोहन इत्यस्यान्तर्गतं जैशे इत्यस्य द्वयोः आतंकवादिनोः हननार्थं व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सेनायाः उत्तरसेना सेनापतिः लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उधमपुर जनपदस्य माजलता क्षेत्रे ऑपरेशन सोहनस्य समये व्हाइट नाइट कॉर्प्स इत्यस्य द्रुतं सुनिश्चितं व्यावसायिकं च कार्याचरणाय प्रशंसाम् अकरोत्। अस्माकं संवाददात्रानुसारं जम्मूकश्मीरस्य आरक्षकैः CRPF इत्यनेन च सह अविच्छिन्न समन्वयेन सम्पन्नं गुप्त सूचनाधारितं सफलम् अभियानं भयोत्पादन निरोध ग्रिड इत्यस्मिन् संयुक्त अन्तरसंस्था समन्वयस्य शक्तिं पुनः एकवारम् अधोरेखितम् अस्ति। वैश्विक ऋण मूल्यांकन संस्थया मूडीज इत्यनया वर्तमान वित्तवर्षे भारतस्य वास्तविक सकल घरेलूत्पादस्य विकासमानांक पूर्वानुमानं 6% संवर्ध्य 7% यावत् विहितम्। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् अयम् ऊर्ध्वमुखी संस्कारः पश्चिम एशिया संघर्षेण जनितात् वैश्विक आघातात् परमपि भारतीय अर्थव्यवस्थायाः प्रत्यस्थतां दृढतां च प्रदर्शयति। मूल्यांकन संस्थानुसारं G20 समूहेषु सर्वेभ्यः देशेभ्यः अपेक्षया भारतस्य आर्थिकवृद्धिः तीव्रतरा भविष्यति। जापान देशस्य आईची नागोया नगरे समायोज्यमाने 20तमे एशियाई क्रीडा महोत्सवे भारतस्य क्वीन्जी जोआकिम डिसूजा इत्येषाद्य प्रातःकाले महिला एकल स्पर्धायां विजयद्वयं सम्प्राप्य टेकबॉल क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवती। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए वीनस बहन, आज के ग्राम संसार में हम अपने श्रोताओं को मनोरंजन तो हर रोज़ की तरह कराएंगे ही, साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण द्वारा अपनी आय को किसान भाई बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी इससे रोज़गार दे सकते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की। ये दिवस सामान्य मूल्य के कार्य के लिए समान जो पारिश्रमिक है वो सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। इसमें इस बात पर खास तौर से ध्यान दिया गया है कि जो लिंग के आधार पर असमान वेतन दिया जाता है उसके प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन समर्पित है। और इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर भी कि महिला और पुरुष की तुलना में अगर महिलाओं को कम वेतन मिलता है तो ये गलत है। जब हम एक किसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उसके प्रति हम योग्यता भी समान ही रखते हैं, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए और वेतन में समानता होनी चाहिए। और 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी।
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दुनिया भर में हर वर्ष 18 सितंबर यानी कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य यही होता है कि समान मूल्य पर, मतलब जिसने जो काम किया चाहे वो मूल्य चाहे

0: वो बात पुरुष की हो या महिला की हो, दोनों के उसमें कहीं पे भी भेदभावपूर्ण आधार पर उनको वेतन ना मिले। तो इनका इसका सिद्धांत यही है, संदेश यही दिया जाता है कि इसके व्यक्ति को किसी भी लिंग या अन्य भेदभाव के आधार पर ना करके उनके उनके श्रमिक और उनकी मेहनत के हिसाब से बराबर से उनको वेतन मिलना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और मानवाधिकार की रक्षा के लिए
0: और
1: दिन
0: खास करके महिलाओं के लिए
1: मनाया
0: कि समान वेतन महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता समान और रोजगार के समान के और अवसर लेके आता है।
1: जाता है। बिल्कुल। और अब तो देखा जा रहा है कि आप किसी एक पोस्ट पे हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो समान वेतन दिया भी जा रहा है, इस बात को समझा भी जा रहा है और लागू भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में अभी आपसे और भी करेंगे बातें, पहले करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं योगेंद्र नीमचाना से ये राग।

0: तो भाई अभी आप सुन रहे थे कलाकार योगेंद्र नीमचाना से ये रागिनी, और बहुत ही सुंदर भाव था। और
1: बिल्कुल। और
0: कार्यक्रम को
1: देखिए,
0: आगे बढ़ाते
1: बिल्कुल
0: हुए सुनाते हैं कुछ और।
1: देखिए, सेवा संकल्प अभियान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी जन सेवक और जनसंपर्क अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सेवा, विकास और राष्ट्र निर्माण में जन जन तक कौन कौन सी सुविधाएं सरकार द्वारा पहुंचाई गई हैं और कौन कौन सी कई ऐसी योजनाएं भी चलाई गई हैं जिससे कि जन कल्याण और किसानों की आय को बढ़ाने की भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो इससे संबंधित भी कई योजनाएं हैं जिससे कि हमारे जो किसान भाई हैं, छोटे उद्योग या बड़े उद्योग स्थापित करके अपने जो मूल्य संवर्धन करके वस्तुओं को बेचेंगे तो उनकी आय निश्चित रूप से बढ़ेगी और उनके साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार मिलेंगे। ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं, पीएम मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नत योजना, विभिन्न तरह की ऐसी योजनाएं हैं जिसके द्वारा किसानों की आय को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर इसके बारे में विस्तृत बात करें तो एक बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाएं, और इसमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रितु सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रही हैं यमुना। तो सुनते हैं ये बातचीत।
0: क्षेत्र से बहुत से ऐसे हुनर अपने हाथों में लेकर के बाहर निकल रहे लोग। और आज के जमाने में देखा जाए तो जो छोटी छोटी चीजें होती जो घर में बनाई जाती थी, बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, आज उसका बहुत ज्यादा महत्व है। और खास करके हम बात करें तो जो उद्योग के तौर पे स्थापित हो सकता है वो पहले नहीं हो पाया लेकिन आज होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है खाद्य प्रसंस्करण की अगर बात करें तो उद्योग की बहुत ही संभावनाएं हैं। लेकिन ये हम थोड़ा बहुत जानते हैं और विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे, खास करके क्योंकि हम इसी विषय से संबंधित विशेषज्ञ को आमंत्रित किए हैं। तो इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु सिंह जो कि कृषि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। तो चलिए उनसे ही विस्तार में जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कितनी संभावनाएं हैं।
2: देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगी खाद्य प्रसंस्करण क्या है। किसान को वर्ष भर पूरी मेहनत करता है, फसल लगाता है
0: जी
2: और फसल लगा के जो उपज उसको आती है
0: जी
2: और उसको बाजार करता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसको उसका दाम उतना नहीं मिल पाता जितना उसने मेहनत कर फसल उगाई है। पर ऐसे में क्या होता है कि अगर हम जब दाम नहीं मिल रहा तो ऐसे में उस उत्पाद को, मैं उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें गेहूं की,
0: जी
2: अगर गेहूं का उसको दाम नहीं मिल रहा है तो ऐसे में वो अगर उसने गेहूं का आटा बना लिया और उसका आटा बना के फिर रख भी लिया और फिर बाजार कर दिया, या जैसे सब्जियों की बात करें बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो ऐसे में उसी समय अगर बेचा तो बेच दिया, नहीं तो अगर खराब हो जाएगा तो
0: जी
2: ऐसे में उसका रूप बदल दे। टमाटर का दाम अगर मान लीजिए 40 रुपए किलो है तो वही अगर टमाटर से आप सॉस या प्यूरी बना लेते हैं तो 200-300 रुपए किलो चला जाता है। तो
0: जी
2: ये होता है प्रसंस्करण, मैंने उस उपज का रूप बदल दिया
0: जी
2: जिससे उसकी एक तो लाइफ बढ़ गई, टिकाऊ हो गया,

0: दूसरा दाम बढ़ गया, तो ये
1: जी
0: प्रसंस्करण कहलाता है। तो ये है आपका खाद्य प्रसंस्करण। तो हमारी जो भी फसलें हैं,
1: जी
0: हमारी जितनी फसलें, हम सभी का प्रसंस्करण कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने संभावनाएं भी बताई और साथ साथ आपने ये भी बताया
0: जी
1: कि खाद्य प्रसंस्करण क्या है, उसका परिवर्तित रूप क्या है।
0: जी
1: टमाटर से केचप बन रहा है तो उसका
0: जी
1: क्या परिवर्तित रूप है,
0: जी
1: तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण में क्या क्या शामिल है, जैसे बहुत सी चीजें होती है, विस्तार में अगर जानने की हम कोशिश करें तो
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में आप थोड़ा
0: जी।
1: सा बताएं।
0: मैंने कहा जैसे हमारी सारी फसलें, चाहे अनाज हो, दालें हो, आजकल हमारा श्रियन भी शामिल हो रहा है, सब्जियां हैं, दूध
1: जी
0: है, मांस, मछली, अंडा, ये सभी आपका प्रसंस्करण में आते हैं। और यही नहीं, इसमें हमारी वो भी शामिल हो रहे हैं, आप जैसे हम कहते हैं एलोवेरा है या आपका ग्वार पाठा है, ये सब भी हमारे धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं खाद्य
1: जी
0: प्रसंस्करण में, क्योंकि इनकी जैसे जैसे महत्वता पता लग रही है कि हाँ शरीर के लिए अच्छे हैं, पौष्टिक हैं, और हमारे देश में जैसे कुपोषण की समस्या भी काफी
1: जी
0: है,
1: जी
0: इन सब से निपटाने के लिए तो इनका प्रसंस्करण करके हम लोग कई उत्पाद भी बना सकते हैं। तो
1: जी
0: अनाज से बात करें तो हमने जैसे आटा, दलिया, सूजी, और फिर उसी के और उत्पाद, आजकल अगर शहरों की तरफ बात करें तो
1: जी
0: उसी से आप बेकरी के उत्पाद बना सकते हैं, ब्रेड, बिस्किट वगैरह। अगर
1: जी
0: और कोई और उत्पाद बनाना चाहते हैं तो पास्ता, नूडल्स, ये सब बना सकते हैं। एक मैं कहूंगी लंबी कड़ी है जिसमें सभी वर्ग के लिए प्रसंस्कृत उत्पाद है, मतलब बच्चों के लिए भी है,
1: जी
0: बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सभी संभावनाएं हैं।
1: और एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है,
0: जी
1: मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, कुछ करना चाह रही है,
0: जी
1: उसके हाथ में हुनर है, वो जानती भी है कि इस चीज को ऐसे बनाया जा
0: जी
1: सकता है,
0: जी जी
1: चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हम
0: जी
1: सबकी बात कर रहे
0: बिल्कुल
1: हैं, तो अगर वो जुड़ना चाहते हैं इस
0: जी
1: क्षेत्र से तो कैसे जुड़े, क्या तरीका है?
0: बिल्कुल। देखिए सभी को, जैसे हमारी खासकर महिलाओं की बात करें, उनको क्योंकि घर में खान पान का भी वही ध्यान रखती हैं,
1: जी
0: तो प्रसंस्करण उन्हें कुछ हद तक आता है, पर कई बार उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है कि वो लंबे समय तक टिकाऊ उत्पाद नहीं बना पाती। जानकारी है पर पूरी तरीके से नहीं हो पाती उनसे, तो इसीलिए ऐसे में हम कहते हैं कि प्रशिक्षण प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: इसी प्रसंस्करण को अगर आपने एक उद्योग के रूप में शामिल करना है तो, क्योंकि जैसे बात करते हैं हम लोग कि खेती से हमारी आय इतनी नहीं होगी, पर अगर हमने खेती के साथ खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ दिया, जो हमारा सपना है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का,
1: जी
0: जिसमें हम चाह किस किसानों की आय दुगनी हो, ये तभी संभव है अगर हमने खेती के साथ खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ दिया। तो इसी मैं कहूंगी प्रशिक्षण लें, क्योंकि
1: जी
0: बिना प्रशिक्षण के काम आपका अधूरा रहेगा। और
1: जी
0: देश के जैसे 731 जिलों में सभी में कृषि विज्ञान केंद्र हैं,
1: जी
0: वहां प्रशिक्षण दिए जाते हैं, साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि अनुसंधान संस्थान हैं,
1: जी
0: आप और राज्यों के भी आपके विभाग होते हैं, कृषि विभाग,
1: जी
0: वहां से भी प्रशिक्षण लें। तो प्रशिक्षण जरूर लेनी चाहिए खाद्य प्रसंस्करण में, तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं।
1: एक बात और कहना
0: जी
1: चाहूंगी, जैसे आपने भी बताया कि यहाँ यहाँ प्रशिक्षण ले सकते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: अगर कोई कांटेक्ट नंबर हो, संपर्क सूत्र हो, तो जरूर आप हमारे कार्यक्रम में
0: जी
1: बताइए,
0: जी
1: जिससे
0: जी
1: वो जुड़ सके, अगर कोई
0: बिल्कुल
1: महिला जो हमारे कार्यक्रम या कोई पुरुष जो हमारा
0: जी
1: कार्यक्रम सुन रहे हैं वो इसका फायदा उठा
0: बिल्कुल।
1: सके।
0: मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो कि हमारा दिल्ली में स्थापित है, और हम लोग समय समय, अभी हमने पिछले हफ्ते ही आम के प्रसंस्करण पर एक हफ्ते का प्रशिक्षण आयोजित किया था, क्योंकि मौसम के अनुसार भी हम लोग करते हैं, मौसम में
1: जी
0: जब
1: जी
0: उपलब्ध उत्पाद हो तो उसको कैसे प्रसंस्कृत कर सकते हैं। तो मेरा नंबर चाहे तो नोट कर लें, 9818550652, इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं और कभी भी हमसे जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। और प्रशिक्षण हम लोग समय समय पे आयोजित करते हैं, और एक और बात बता दूं, निःशुल्क होते हैं, ताकि हमें ज्ञान देना है और आप एक उद्यमी के रूप में खड़ा करना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो ये हम लोगों का विजन रहता है कि हमें उन्हें एक उद्यमी के रूप में खड़ा करना है।
1: एक बार नंबर और बता दें आप।
0: जी मैं हिंदी में बोल देती हूँ,
1: जी
0: 9818550652।
1: और एक बात और है
0: जी
1: कि जैसे एक दो महिला तो चलो दिमाग में आया कि हमें ये चीज करना चाहिए, इससे हमें ज्यादा फायदा हो सकता
0: बिल्कुल
1: है,
0: बिल्कुल
1: आपने प्रसंस्करण की जैसे बात की उसके परिवर्तित रूप की, एक दो महिला नहीं बल्कि 7-8 महिला एक साथ जुड़ना चाह रही, तो उसके लिए क्या करें वो?
0: जी, उसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है कि हम स्वयं सहायता समूह, जो
1: जी
0: कि हमारा बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसमें आपका 10 महिलाओं का या 20 महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा का एक समूह
1: जी
0: होता है, जिसमें वो हर प्रति माह एक आय निर्धारित कर लेते हैं कि इतनी राशि हम प्रति माह जमा करेंगे, वो एक जगह जमा होता है,
1: जी
0: उसी समूह के नाम से बैंक में खाता भी खुल जाता है, वो रजिस्टर्ड होता है। तो उससे बैंक से खाता खुलने से ये फायदा होता है कि कभी किसी इन महिलाओं ने मान लीजिए खाद्य प्रसंस्करण में कोई प्रशिक्षण ले लिया, अब ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इस
1: जी
0: पूंजी की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग को शुरू करने में, और सभी के पास इतना नहीं होता, तो ऐसे में बैंक उनको सहायता देता है। तो स्वयं सहायता समूह अगर बैंक से ऋण लेना चाहता है तो उनका ब्याज दर भी काफी कम होता है, तो सबसे बड़ा फायदा तो एक ये हो गया। और फिर उनकी एक राशि निर्धारित की जाती है कि प्रति माह आप इतना ईएमआई के रूप में वापस कर दें। तो ये
1: जी
0: सबसे अच्छा है कि स्वयं सहायता समूह बना लें, क्योंकि हर महिला में या हर पुरुष में एक ना एक गुण है, तो समूह में ये फायदा हो जाएगा कि एक महिला को बनाना आता है, अकाउंट
1: समझा,
0: संभालना
1: जी
0: बहुत अच्छा
1: जी
0: आता है, एक को बाजार करना बहुत आ जाता
1: जी
0: है, तो ग्रुप में ये एक सबसे बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर एक अकेला

0: करना चाहेगा, तो
1: मुश्किल
0: उसको
1: होगा।
0: बेचारे को बनाना भी है, पैक भी करना है, अकाउंटिंग भी करनी है और बाजार भी करना है, तो
1: जी
0: वो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है और आखिरकार वो हताश होके छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं समूह में आइए। समूह
1: जी
0: में आपका एक तो जो पूंजी है वो भी आपकी बराबर में बट के जा रही है, आप पे भार भी नहीं आ रहा कि मैंने इतनी सारी पूंजी लगा दी, आप मिलके पूंजी लगा रही हैं और जो मुनाफा है आप सब में बराबर बट रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि समूह में आके प्रशिक्षण लेके काम को शुरू कर सकते हैं।
1: जी डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात करें इस
0: जी जी
1: समय, तो जो ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, आप
0: चल
1: चीज
0: रहा है।
1: बनाओ बहुत तेजी से
0: जी
1: वायरल
0: जी
1: हो जाती है, तो
0: जी
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म की आप बात बताएं कि कैसे ये विस्तार में एक उद्योग के रूप में स्थापित करवा सकता है डिजिटल
0: बिल्कुल
1: प्लेटफॉर्म।
0: बहुत कर सकता है, क्योंकि आज की बात करें तो सबके हाथ में मोबाइल है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें, सबके हाथ में मोबाइल है। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम मोबाइल को एक कहेंगे कि एंटरटेनमेंट के रूप में देख रहे हैं, पर अब इसे हम अगर
1: उद्योग के रूप
0: उद्योग
1: में
0: के रूप में देखें, यानी
1: जी
0: कि हमें उससे क्या क्या फायदा
1: फायदा
0: हो
1: उठाना है।
0: सकता है
1: जी
0: उसके रूप में देखें, तो क्या नहीं कर सकते आप।
1: जी
0: बहुत बड़ा एक आपका ये हथियार है मोबाइल आज के लिए, अगर आप उद्योग के रूप में इसको देखेंगे।
1: जी
0: तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग बात करिए, आपके इतने सारे सोशल मीडिया एप्स हैं हमारे, कोई भी
1: जी
0: आप ले लीजिए, आपकी भाषा में भी वो ऐप हो गए हैं, जहाँ के भी आप हैं आपकी उस भाषा में भी वो ऐप हो गए हैं। तो
1: जी
0: वही आप करके आप उसमें अपने उत्पाद डालिए, लोगों को पता लगे, उसको उसमें बनाने का तरीका डालिए, आपने जहाँ से प्रशिक्षण लिया है, क्योंकि वहां से आपको प्रमाण पत्र ही मिलता है, तो
1: जी
0: उससे आ जाता है कि आपने हाँ सही प्रमाणित
1: जी
0: संस्था से
1: जी
0: आपने प्रशिक्षण लिया, तो वो
1: जी
0: आपको और वैल्यू आपके काम की बढ़ाता है कि आपने सही जगह से लिया है तो आपका उत्पाद सही होगा।
1: उससे रेट भी आपको अच्छा
0: रेट
1: मिलेगा।
0: बिल्कुल आप फिर श्योरिटी से कह सकते कि नहीं मेरा उत्पाद है और इतने दिन चलेगा, इतना दिन टिकाऊ है। जैसे कोई भी खाद्य उत्पाद के लिए हमारी एक अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
1: जी
0: इनसे हमें प्रमाणीकरण दिलाना आवश्यक होता है कि हाँ मेरा उत्पाद सही है, सेफ है। तो वहां से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि हम प्रशिक्षण के दौरान बताते भी हैं कि कैसे आपने उसको लेना है प्रमाणीकरण, तो वो भी
1: जी
0: आपका नंबर लग जाता है, तो उससे आपके उत्पाद की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो डिजिटल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है मैं तो कहूंगी, और सभी को आता भी है, पढ़ी
1: जी
0: लिखी भी हो हमारी महिला या ना भी पढ़ी
1: वो
0: लिखी हो,
1: इतनी कड़ी
0: वो
1: होती
0: कड़ी
1: है
0: होती कि
1: बस, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं
0: प्लेटफॉर्म नहीं
1: पता।
0: पता होता, बस उनको
1: जी
0: जानकारी नहीं होती। तो इससे काफी आप अच्छा फायदा उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए जब
1: जी
0: सबके हाथ में है ये चीज।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बात हुई खाद्य
0: जी
1: प्रसंस्करण के उद्योग की संभावनाओं की, सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए
0: जी
1: जा रहे हैं?
0: बहुत हैं योजनाएं, और इसका तो हमारा एक मंत्रालय ही है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय,
1: जी
0: जिसमें छोटे उद्योग के लिए और बड़े उद्योग के लिए सभी के लिए योजनाएं हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए
1: जी
0: एक हमारा एक उसी योजना में एक नाम है कि एक जिला एक उत्पाद, जिस जिले में जो चीज बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उस योजना में उसके उत्पादन से लेके बाजार तक की
1: जी
0: सारी चीजें शामिल,
1: जी
0: चाहे वो उसकी मशीन की बात हो,
1: जी
0: चाहे उसकी पैकिंग के लिए बात हो, चाहे
1: जी
0: उसके रजिस्ट्रेशन के, चाहे उसके में उसी उत्पाद के अलग अलग उत्पाद बनाने के प्रशिक्षण की बात हो, तो उसमें से किसी भी योजना को लेके आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत कम ब्याज दर पे आपको ऋण के रूप में दिया जाता है, आपको मशीन खरीदनी है, जल्दी मान लीजिए आंवला है, आंवला सुखाने की मशीन चाहिए,
1: जी जी
0: तो आंवला का क्षेत्र जैसे हमारा यूपी का एक क्षेत्र है जो कि आंवला का भरपूर माना जाता है, तो वहां पे उस मशीन का आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे 2 लाख की मान लीजिए मशीन है तो आपको 50,000 की रियायत मिल गई, तो 1.5 लाख आपका लगा, तो
1: जी
0: काफी फायदा
1: जी
0: हो जाता है। तो उस मशीन का इस्तेमाल करके अपना सुखा के आप पैक करके आप बाजार कर सकते हैं। तो ये योजनाएं हैं, पर मैं कहूंगी योजनाओं के बारे में आपको पता कैसे लगेगा, इसके लिए आप प्रशिक्षण जब लेने आएंगे किसी भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में या किसी संस्थान में, वहां पे भी आपको इन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि
1: जी
0: आप कैसे फायदा उठा सकती हैं। हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ उनको सिखाना है और भेज देना, हमारा होता है कि उनको सिखाना है, उनको बताना है, उनको जागरूक करना है कि क्या योजनाएं आपके लिए हैं जो सरकार इतनी मेहनत करके दे रही है,
1: जी
0: तो उनका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं ताकि आप एक सफल उद्यमी के रूप में खड़े हो सकें।
1: आपने सफल उद्यमी की बात की,
0: जी
1: तो कोई बहन हो या भाई हो जो भी इस व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं,
0: जी
1: अपने खाद्य प्रसंस्करण को के
0: जी
1: जरिए उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं, तो ये सफल उद्यमी बनने के लिए
0: जी
1: क्या क्या उनके अंदर गुण होने चाहिए, बहुत जरूरी है जानना।
0: सफल उद्यमी के लिए सबसे पहले कि एक संयम, देखिए हमें
1: जी
0: कोई भी अगर उद्योग शुरू करना है तो ये ना चले कि हमें कल ही सफलता मिल जाएगी, तो
1: जी
0: इसीलिए
1: जी
0: संयम का होना बहुत जरूरी है। पर एक
1: जी
0: बार आपने जब उस मुकाम पे पहुंच गए फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। फिर दूसरा आपका परिवार का साथ, क्योंकि अगर जब तक हमारे परिवार का साथ नहीं होगा उस काम के लिए तो हम उस काम को नहीं कर सकते, अगर साथ होगा तो हम और अच्छे से बढ़ चढ़ के कर सकते। एक आपस में आपसी पन आता है जो कि थोड़ा थोड़ा आजकल हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है, पर
1: हाँ
0: उससे और जुड़ाव होता है आपस में आपका, कि
1: जी
0: हम समझते हैं कि नहीं हमारा व्यवसाय है हमें करना है,
1: बल्कि संयुक्त परिवार
0: संयुक्त
1: और इसका
0: परिवार
1: फायदा उठा
0: फायदा
1: सकता
0: उठा
1: है।
0: सकते हैं।
1: जी
0: तो परिवार का साथ एक तो बहुत जरूरी है, और फिर आपको ये जानकारी लेने की

0: रुचि निरंतर रहनी चाहिए,
1: जी
0: भले ही आप कितने स्तर पे पहुंच गए हो।
1: जी जी
0: सीखने की मतलब आपकी
1: लालसा
0: सीख
1: होनी चाहिए
0: लालसा
1: सिर्फ।
0: रहनी चाहिए, तो आपका एक सफल उद्यमी आप बन सकते हैं।
1: अगर सच कहें तो अगर लालसा है, मन में जिज्ञासा है किसी
0: जी
1: चीज की जानने की,
0: जी
1: सीखने की, और
0: जी
1: संयम है सुनने की,
0: जी
1: सुनाने की नहीं,
0: बिल्कुल
1: सुनने की
0: सुनने
1: भी,
0: की
1: सुनने की भी संयम है, तो ये मानना चाहिए कि आप आगे बढ़ने वाले हो,
0: जी।
1: और थोड़ा सा सबका सहयोग मिलेगा तो जरूर आप आगे बढ़ जाओगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो डॉक्टर रितु जी, चलते चलते
0: जी,
1: इस कार्यक्रम के जरिए और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो किसान भाई इतनी मेहनत करके फसल
1: जी
0: उगा रहे हैं,
1: जी
0: तो उसके साथ अगर हम खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ दें
1: जी
0: तो हमारे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, और इस सब में हम सबका साथ होके चलना बहुत जरूरी है।
1: साथ लेकर के चलेंगे, और जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि आप भी आगे बढ़िए, अगर आपके अंदर हुनर है, कुछ आता है। और डॉक्टर रितु जी ने जो बताया कि प्रशिक्षण केंद्र भी है, और इन्होंने कांटेक्ट नंबर भी बताया है,
0: जी
1: तो एक बार और रितु जी बता दें कांटेक्ट नंबर।
0: मेरा नंबर है 9818550652।
1: तो डॉक्टर रितु सिंह जी, ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं के विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं। जानकारी के विषय दे रहे इस बारे में जो जानकारी हमें दे रही थी डॉक्टर रितु सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र उड़ा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रही थी यमुना।
3: तो वही खाद्य प्रसंस्करण से जुड़कर हमारे किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं, और अधिक उत्पादन होने पर उनको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और इस प्रकार लाभ ले सकते हैं। और अब करते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं ऋषि पाल नागर की आवाज़ में ये साथ में।

0: तो भाई अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल नागर से ये भजन, और इसी के साथ ही राम संसार कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पर आशीष।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाबल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
2: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और HTT-40 सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में उपस्थित थे। HAL ने भारतीय वायुसेना को 2 हल्के विमान LCA और तेजस, इसके अलावा पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने विमान का नाम अंकुर रखा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम राम।
0: देखिए विनस बहन, अब जैसे पहले समय में होता था कि सारे काम हाथों से ही होते थे, जिसमें श्रम भी अधिक लगता था और उत्पादन भी इतना अधिक हमारे किसान भाई नहीं ले पाते थे, सटीक जानकारियों की भी कमी थी, चाहे वो मौसम के बारे में हो या फिर मिट्टी के बारे में हो या जलवायु परिवर्तन के बारे में हो, इतनी सटीक जानकारियाँ नहीं थी। लेकिन अभी समय बदल गया है और नई तकनीकों से, डिजिटल उपकरणों से किसान भाइयों को सटीक जानकारी मिल रही है, चाहे फिर वो उर्वरकों के बारे में हो, मिट्टी की सेहत के बारे में हो। फसल की निगरानी भी ड्रोन के द्वारा की जा रही है, इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कृषि में प्रयोग हो रहा है, जिसमें मौसम की सही जानकारी के साथ साथ जलवायु अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करके हमारे किसान भाई कैसे जलवायु परिवर्तन के दौर में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इन सब की जानकारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि विशेषज्ञों द्वारा दी जाती हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान नई नई तकनीकों से जुड़कर अधिक लाभ कमा सकें और खेती में ये नवाचार हमारे जो देश का विकास लगातार आगे बढ़ता रहे। और अगर हम बात करें कृषि में ड्रोन की भूमिका और अनुप्रयोग का, तो इससे संबंधित एक बातचीत लेकर आए हैं कृषि में ड्रोन की भूमिका और अनुप्रयोग। इसमें डॉक्टर आरुफ अहमद परे, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियंत्री संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो सुनते हैं ये।

0: बातचीत।
1: किसान भाइयों, कृषि में तकनीकी का युग है और अगर आप पुराने तरीके से खेती करते रहे तो निश्चित तौर पे जो आपको फायदा मिलना चाहिए वो जल्दी नहीं मिलेगा और जो आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ पाएगी। जिस तरीके से पहले आपको बैलों से खेती करते थे, उसके बाद में ट्रैक्टर आ गया, कल्टीवेटर आ गए, हैरो आ गए, उसके साथ साथ और विकास हुआ तो धीरे धीरे अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई और ड्रोन टेक्नोलॉजी कृषि और किसानों के लिए किस तरीके से उपयोगी है और उसका किस तरीके से खेतीबाड़ी में हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राउफ अहमद परे, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, ड्रोन तकनीक का जिक्र कर रहे हैं, पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि है क्या ये
2: ड्रोन टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि पहले जो हमारे किसान लोग थे कैसे खेती को आगे आगे बढ़ाते रहे, पहले बैलों से जैसे आपने बात की, और जब हम आज की बात करते हैं तो ड्रोन, आज किसान जानता है कि ड्रोन क्या है, नई तकनीक लेके आया है। पहले हमारे किसान भाई, जैसे सबसे ज्यादा किसान भाई समझ पाएंगे स्प्रेयर को, जो छिड़काव करते हैं उससे किसान भाइयों को ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझने में सबसे आसानी होगी। हमारे किसान भाई कैसे छिड़काव करते हैं, एक स्प्रेयर लेके जाते हैं और खेतों में कर देते, लेकिन ये जो ड्रोन है जिसको हमारे किसान भाई बोलते हैं कि ये जहाज वाली मशीन है, हमने किसानों से बात भी की है, वो बोलते हैं ये जहाज वाली मशीन है, यानी वो समझते हैं कि ये खेती के लिए ऐसा जहाज है जो ऊपर से ही काम कर देता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो जमीन पे ना रह के बल्कि हवा में उड़ के जो हमारे किसान में कुछ ऑपरेशंस है, चाहे वो छिड़काव है या बुआई करनी है, उससे कर पाते हैं। ये है ड्रोन की टेक्नोलॉजी।
1: तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए किस तरीके से लाभकारी?
2: हमारे किसान भाई जानते हैं कि जो खेती में है, अगर हम चाहते हैं कि किसान की आय बढ़ जाए तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, जो किसान हमारा किसान भाई है खाद डाल देता है या सीड डाल देता है, उसमें वो कितनी बचत कर सकता है, और दूसरा ये है कि जो वहाँ से निकलता है हमारा प्रोड्यूस, उसमें से कैसे हम वैल्यू ऐड कर पाएँ। तो उसके लिए जब हम ड्रोन की बात करते हैं तो किसान भाई बहुत ज़्यादा बीज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको किसान भाई अपना के उसमें से जो लागत है वो कम कर सकते हैं। जैसे हमारा किसान भाई अगर बीज 60 kg इस्तेमाल करता है, हाथ से फैला देता है ज़मीन में, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, वही सीड अगर हम बुआई करेंगे ड्रोन से, जो कि आगे आने वाला है कि ड्रोन से करेंगे, तो उसमें कम से कम 40-50% कम होगी उसकी ज़रूरत। इसी तरह हम छिड़काव की बात करते हैं, हालांकि छिड़काव आज भी हो रहा है ड्रोन से छिड़काव करेगा, उसमें जो हमारे किसान भाई, एक तो ये है कि कितना वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसमें तो कमी है, दूसरा जो हमारे किसानों का स्वास्थ्य है वो भी सही रह पाता है, तीसरा जो हम लेबर की बात करते हैं, हमारे किसान भाइयों को वक्त पे लेबर नहीं मिलता है, तो ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते हैं, जो लेबर की डिमांड रहती है और उससे कॉस्ट भी बढ़ता है उसको भी हम कम करते हैं।
1: जिस तरीके से आपने बताया कि इससे बिजाई भी कर सकते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जो वर्षा आधारित होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे अगर बरसात से पहले ही ड्रोन के माध्यम से बिजाई करने का प्रावधान रहता है?
2: पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे मशीनरी का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। उसका हमको वजह समझना पड़ेगा, क्योंकि ढलान पे किसी मशीन को लेना उतना आसान नहीं है, उसके लिए छोटे साइज़ की मशीन चाहिए, उसके लिए कम वजन की मशीन चाहिए, लेकिन चूँकि ड्रोन को ज़मीन से नहीं चलाना है, उड़ाना है हवा में, तो इसलिए जो हमारे ख़ासतौर पर बाग है ढलान पे, उसमें से अगर आपको छिड़काव करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी ड्रोन है। तो इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र में है वो ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी जो आपने बात की कि जो बारिश से पहले की बात है, ड्रोन में हमारा यही फायदा है कि अगर बारिश हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो बारिश के बाद बहुत दिन तक हम ट्रैक्टर को चला ही नहीं पाते हैं खेत में, लेकिन ड्रोन के लिए ऐसा नहीं है, बस ड्रोन के लिए वेदर आज ठीक है, मौसम आज ठीक है, तो हम ड्रोन को चला सकते, चाहे ज़मीन की कंडीशन कैसी भी हो सकता है ज़मीन गीली हो, उसमें मशीन ना चल पाए, लेकिन ड्रोन तो चल पाता है।
1: तो जब ड्रोन का प्रयोग हम जैसे खरपतवार नाशी है, कीटनाशक

0: का कोई फफूंद नाशक दवा के लिए प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं कि ड्रोन उसी जगह पर छिड़काव करता है जहाँ पर कीटों का प्रकोप होता है।
1: को हम आज की डेट में प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसका
0: जी
1: मतलब है कि जहाँ पे बीमारी है वहीं पे उसका रोकथाम कर लेना और कितना डालना है जितनी बीमारी है उसी
0: जी
1: हिसाब से। अगर बीमारी छोटे क्षेत्र की है तो उसमें कम ही दवाई डालनी है और अगर ज़्यादा है तो उसी हिसाब से। ये हम ड्रोन के जरिए से कर पाते हैं कि जहाँ जहाँ हमको लगता है कि यहाँ पे बीमारी है उसको पहचान लेना कि बीमारी कौन सी है ड्रोन के कैमरा के थ्रू, और उसके बाद वहीं पे छिड़काव करना, ये ड्रोन से ही संभव है।
0: जो किसान भाई मान लीजिए जिनके पास छोटे खेत हैं, कम क्षेत्रफल है, और उसके अलावा ड्रोन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको जो छोटे किसानों तक इसकी पहुंच हो, किस तरीके से ये इसको मैनेज किया जाएगा?
1: हम जानते हैं कि एक ड्रोन कम से कम 10 लाख में तो आ ही जाता है,
0: जी
1: लेकिन ये सरकार जान चुकी है कि ड्रोन का इस्तेमाल तो कृषि में होना ही है, तो इसीलिए सरकार की ओर जोर है कि जो ड्रोन को खरीदने के लिए कस्टम हायरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। मतलब इसमें सरकार ने अभी सब्सिडी का भी रखा है ताकि अगर किसान भाई आपस में एक FPO की सूरत में आ जाएं और ड्रोन लेके जाएं तो उनको सरकार की ओर से कम 50% उसमें सब्सिडी मिले। केवी केस है उनके थ्रू भी सरकार इसको फार्मर्स के खेत पे कृषि पे डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते, तो उसमें भी जो लोग आगे आना चाहेंगे वो भी उसमें से अपना मुनाफा कमा सकते हैं और छोटे छोटे किसानों के खेत तक वो ड्रोन पहुंचा सकते।
0: डॉक्टर साहब, जब ड्रोन का प्रयोग होगा, जो काम मान लीजिए 10 किसान मिलकर के, 10 मजदूर मिलकर के करेंगे, और ड्रोन से वो अकेले संभव हो सकता है, तो ड्रोन से जो रोजगार की समस्या है उसका समाधान कैसे होगा?
1: गांव से शहर की ओर
0: पलायन हो रहा है।
1: लोग जा रहे हैं क्योंकि शहरों में उनको अपना रोजगार के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा जो युवा है जो पढ़ के आया है उसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो कि ड्रोन है, जिसमें से ज़रूरत है कि हमको एक पायलट होना चाहिए जो उसको चला दे, ग्राउंड पे एक आदमी रहेगा जो उसका रिकॉर्ड रखेगा, तो कम से कम हम समझ सकते हैं कि एक ड्रोन से कम 3 युवा तो जुड़ सकते हैं। हम देखते हैं कि एक ड्रोन से अगर 3 युवा जुड़ सकते हैं जो अपना अच्छा सा रोजगार भी कमा सकते हैं और उस ड्रोन को लोगों की खेतों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हम रोजगार की बात करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम आई है कि लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं तो लेबर ही कम होता जा रहा है,
0: जी
1: और दूसरी साइड से जो हमारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको हम गांव लेवल पे ही एक रोजगार का ऑप्शन दे रहे हैं ड्रोन की सूरत में, और सरकार ने उनके लिए स्पेशली सब्सिडी रखा है कि अगर वो लेना चाहेंगे वो भी ड्रोन को फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, क्योंकि ड्रोन को चलाना भी एक तकनीक है, तो इसके लिए जो युवा साथी उसे जुड़ना चाहेंगे, क्या उनके लिए कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाया जाता है?
1: सरकार की ओर से बहुत सारे सेंटर्स अभी एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं जहाँ पर किसानों को और जो युवा है उनको ट्रेनिंग मिल सकती है। जैसे अभी राहुरी में पहला सेंटर खोला गया जो कि इसके लिए एक लाइसेंस दे रहा है, कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद एक लाइसेंस मिल रहा है कि हाँ ये सही से ड्रोन चला सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे आगे आगे सेंटर्स आ रहे हैं, KVKs के थ्रू भी आ जाएंगे जहाँ से आप परीक्षा हासिल कर सकते हैं और ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र में हमारे कुछ जो सहकारी और सरकारी और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही हैं, जैसे इफको है, वो भी इस पे काफ़ी कार्य कर रही है, उसके द्वारा जो हमारे सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए किसान हैं वो किस तरीके से लाभ ले सकते हैं?
1: हम जानते हैं कि जैसे भी आप कोई भी सेक्टर लेके जाइए, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो सर्विस सेक्टर है, टेक्नोलॉजी के जोर से बहुत आगे पकड़ी है, कृषि की ओर ही अब टेक्नोलॉजी का जोर आ रहा है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि सबकी नज़र कृषि पे ही पड़ी है, चाहे वो हमारे युवा है जो IIT से आते हैं, IIM से आते हैं, स्टार्टअप्स की शक्ल में है या कोई प्राइवेट कंपनी है, तो अगर हमारे किसान भाइयों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच रही है और उनकी बचत हो रही है और उन तक चाहे वो सरकार की ओर से आ रही है या कोई प्राइवेट पार्टनर है, कोई स्टार्टअप है, तो उसमें उनको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि वो सही तौर से उसका इस्तेमाल हो रहा है और उनको कितना लाभ मिल रहा है, तो उसको अपने खेत पर ले सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे ड्रोन प्रयोग होते हैं, इसमें बीज वाले, खाद वाले या आपके उर्वरक छिड़कने वाले, एक ही ड्रोन का प्रयोग

0: किया जा सकता है कि इसके लिए अलग अलग छोटे बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: ड्रोन का अपना एक साइज़ है, ओवरऑल ड्रोन का स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन हम जो ऑपरेशन करते हैं, चाहे हम बुआई करते हैं, छिड़काव करते हैं, उसके हिसाब से वो वाला पार्ट हमको ऐड करना पड़ता है।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि जब हम बिजाई करते हैं तो सीड ड्रिल है, उसके साथ फर्टिलाइजर डालते हैं तो फर्टिसीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं, अगर हमें स्प्रे करना है तो स्प्रेयर का करते हैं, तो क्या ड्रोन में एक ही ड्रोन में सारी सुविधाएं
1: हाँ
0: उपलब्ध होती हैं?
1: बिल्कुल, एक एक ही ड्रोन में, मेरा ये भी यही कहना था कि ड्रोन तो एक ही खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो छोटे छोटे कंपोनेंट है वो हमको रखने पड़ेंगे। लेकिन कंपेयर टू जैसे हम हर एक के लिए अलग अलग मशीन, जैसे बुआई के लिए अलग, छिड़काव के लिए अलग, वैसा तो ड्रोन के साथ हमको जरूरत नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, इसको कभी कभी देश में बड़ी आपदा, इस तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे टिड्डी का प्रकोप हो गया, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या प्रयोग किया जा सकता है?
1: जैसे फ्लडिंग हो गया, हमारे किसान भाई बता देते हैं कि चलिए एक एकड़ हमारा खराब हो गया, इंश्योरेंस कंपनी बता रहे नहीं
0: जी
1: आधा एकड़, उसको सही से करने के लिए कि एग्जैक्ट कितना है उसमें ड्रोन का इस्तेमाल है। कहीं पे बीमारी लग गई, देखिए हमने कोरोना के टाइम में देख लिया कि एक आदमी दूसरे के नज़दीक नहीं जा पाता था, ऐसे ही खेत में बीमारी लग सकती है जहाँ आदमी का जाना सही नहीं है, तो उसमें भी ड्रोन के जरिए हम जान सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी लगी है, कितने क्षेत्र में लगी है, तो उस बड़े अवसर पर भी ड्रोन का इस्तेमाल।
0: लेकिन इसको अपनाने में दिक्कत कहाँ पर आ रही है डॉक्टर साहब?
1: कोई भी नई चीज़ जब आती है तो पहले दिक्कतें आती है, हमारे पास स्किल पावर चाहिए, मतलब एक ऐसा युवा चाहिए, ऐसा किसान चाहिए जिसको समझ में हो कि ड्रोन को कैसे चलाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक साइड है। दूसरा साइड ये है कि जब हम ड्रोन के साथ किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत पे कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि साइड वाले के खेत पे चला जाए। तो
0: जी
1: इसके लिए सरकार अभी गाइडलाइन बना रही है, आप देखे हैं कि सरकार की ओर से ऑलरेडी एक गाइडलाइन रिलीज हुई है कि क्या जब आप छिड़काव करेंगे तो कितने घंटे बाद आप उस खेत में जाएंगे, कैसे आप ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, क्या आपको ज़रूरी होना चाहिए कवर, ये सब चीज़ें। तो अब जब हम क्रॉप में यूज़ करेंगे, जैसे हम पैड़ी में करेंगे या गेहूं में करेंगे, तो उसके लिए भी सरकार की ओर से गाइडलाइन आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो कम होती जा रही है।
0: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल दिक्कतें जो आती हैं वो धीरे धीरे कम होंगी, और नई तकनीक आती है उसको किसान भाइयों अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ आपका जो फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा, उसके साथ आपकी जो लागत कम होगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। डॉक्टर राउफ, आप हमारे स्टूडियो में आए, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भाई अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी जो हमारे भाइयों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, और विषय था कृषि में ड्रोन की भूमिका और अनुप्रयोग। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राउफ अहमद परे, प्रधान वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूना नई दिल्ली से, और इनसे पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और देखिए बहुत ही कामकारी जानकारी थी कि ड्रोन से बुआई और छिड़काव करने से लागत और लेबर में कैसे कमी की जा सकती है, श्रम की भी बचत होती है इसमें, और ड्रोन से खेती में हो रही प्रक्रिया में निगरानी कैसे की जा सकती है, ये बहुत ही फ़ायदे की बात है कि ड्रोन की मदद से आगामी मौसम की स्थिति में भी पता लगाया जा सकता है।
3: बिल्कुल, और अब सुनते हैं ज्ञानेंद्र सरदाना से ये किसान की।

0: विश्लेषण और उसका रख रखाव किस तरह से किया जाता है इसके बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी जाती है। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो महिलाएं हैं खेतों में कीटनाशक तरल उर्वरकों का छिड़काव और फसलों की निगरानी जैसे कार्य के लिए किसानों को किराए पर ड्रोन सेवा देती हैं। इस जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएं और उन्हें रोजगार के नए अवसर दें। और इसके साथ साथ अगर हम अपने कार्यक्रम की बात करें तो कल है शनिवार और शनिवार को ग्राम संसार कार्यक्रम में हेलो ग्राम संसार फ़ोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसमें फ़ोन के ज़रिए आप हमें अपनी फरमाइश बताते हैं, अपने पसंद के कलाकार और अपने पसंद के गीतों के बारे में बताते हैं और हम आपकी फरमाइश को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कृषि जगत कार्यक्रम की बात करें तो कल किसान वाणी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कि फूलों की खेती में नवाचार और विविधीकरण के आयामों के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु जैन आपको जानकारी देंगी। तो किसान वाणी कार्यक्रम और हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल भी ना भूलें।
1: और साथ हम ये भी कहेंगे कि हमारे सुनने वाले सभी भाइयों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृहकांश द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 610 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, अपनी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं ताकि हमारे कार्यक्रम को हम और बेहतर रूप में आपके लिए लेकर आ सकें।
0: और अब सुनवाते हैं आपको ब्रिजपाल सिंह चरोड़ा की आवाज़ में ये उपदेश।

अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरदाना से ये किसान गीत। और अगर योजना की बात करें तो नमो ड्रोन दीदी योजना, जैसे कि अभी हमने ड्रोन पे आपको बातचीत भी सुनवाई, उसी तरीके से जो नाम से ही पता चल रहा है ड्रोन दीदी ये योजना महिलाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें महिलाओं को 15 दिन की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ड्रोन उड़ाना, डेटा विश्लेषण

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रजपाल सिंह चरोरा की आवाज़ में ये उपदेश। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 7:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं गज़लों पर केंद्रित कार्यक्रम।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने गज़ल सुनी और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:40 हो चुके हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी और आखिरी गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में ही।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर। समय शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में हेरिटेज क्लब योजना का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों को मिलेगा विरासत से जुड़ने का अवसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स में MBBS के लिए 100 सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विभिन्न कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में हेरिटेज क्लब योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति और भाषा विभाग तथा दिल्ली अभिलेखागार द्वारा हेरिटेज क्लबों के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यवहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में दिल्ली के 75 CM श्री स्कूलों में हेरिटेज क्लब स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद इसे सभी सरकारी विद्यालयों में खोला जाएगा। साथ ही साल भर विद्यार्थियों के लिए ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों के दौरे, अभिलेखागार और पुस्तकालय भ्रमण सहित कई गतिविधियां होंगी। इसके अलावा उनके लिए पारंपरिक कला शिल्प, मौखिक इतिहास और हेरिटेज फेस्टिवल भी आयोजित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि दिल्ली के बच्चे अपने समृद्ध विरासत को केवल किताबों में ना पढ़ें, बल्कि उसे जाने, समझे और उसके संरक्षण के प्रति गर्व तथा जिम्मेदारी का भाव विकसित करें। वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को दिल्ली के विस्तृत और समृद्ध विरासत से परिचित कराया जाएगा।
3: आज हम लोग न केवल दिल्ली के असली इतिहास को देश के सामने लाने का संकल्प लेके काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे छात्रों को भी इस इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का काम इस क्लब के माध्यम से किया जाए और वो कमान आप सबके हाथों में होगी। आइए मिलकर इस नई शुरुआत को सफल बनाएं।
2: इसके अलावा श्री सूद ने कहा कि नई पीढ़ी को राजधानी के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, वीरों, महापुरुषों, कला, संस्कृति और स्थानीय परंपराओं से परिचित कराना आवश्यक है। आरजू के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। मतदान के लिए 2 स्लॉट निर्धारित किए गए थे। दिन के समय कक्षाएं लेने वाले छात्रों के लिए सुबह 8:30 से दोपहर 1 तक, वहीं सायंकाल वाले छात्रों के लिए दोपहर 3 से शाम 7:30।

0: तक मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मतदान के लिए कुल 1000 ईवीएम व्यवस्था की गई थी, जिनमें से 960 का इस्तेमाल मतदान के लिए किया गया, जबकि 40 ईवीएम को रिजर्व में रखा गया। मतदान कल नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के बहुद्देशीय हॉल में की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि चुनाव प्रचार के दौरान हुए नुकसान और नियमों के उल्लंघन के लिए उन पर चुनावी हर्जाना क्यों नहीं लगाया गया। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने डुसू चुनाव के दौरान लिंगदोह समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश पारित किए। पीठ ने कहा कि कोई भी विजय जुलूस न निकले यह सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर आपराधिक और प्रशासनिक कार्यवाही के साथ साथ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही भी की जाएगी। अदालत में 16 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में कुछ लोगों के भ्रमण करने और प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के साथ मारपीट करने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने आज अदालत को बताया कि उसने कानून के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की है। इसमें प्राथमिकी दर्ज करना और कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार करना शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने राजघाट स्थित गांधी दर्शन से सेवा संकल्प खादी महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। ये महोत्सव 17 अक्टूबर तक देश भर में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में KVIC के ई कॉमर्स पोर्टल समेत 5 डिजिटल सेवाओं की शुरुआत भी की गई। इस कार्यक्रम से देश भर में 3000 से अधिक नई परियोजनाएं स्थापित होंगी और लगभग 37,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। महोत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, खादी यात्रा, स्वदेशी संकल्प, जागरूकता और कारीगर संवाद जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: केंद्र सरकार ने दिल्ली में MBBS की 100 सीट बढ़ाने का प्रावधान कर दिया है। ये सीटें मैदान गढ़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से जुड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स संस्थान को दी गई हैं। इस केंद्र में 16 विभागों की OPD शुरू कर दी गई है और कुल मिलाकर 970 बिस्तरों वाला अस्पताल खोला जाएगा। संस्थान में शैक्षणिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं और इसी के तहत पहले MBBS कार्यक्रम के लिए 100 सीटें निर्धारित की गई हैं। एम्स और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स के बीच हुए समझौते के अनुसार अस्पताल के 50% बिस्तर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और अन्य लाभार्थियों के लिए हैं, वहीं बाकी 50% आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लिए होंगे। केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक भंडारित चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा अपरिवर्तित रहेगी और केवल 15 दिनों तक की खपत तक ही सीमित रहेगी। एक रिपोर्ट।
3: मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम थोक उपभोक्ताओं के हितों और घरेलू चीनी बाजार में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस निर्णय से आगामी त्योहारों के दौरान वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि खुदरा चीनी की कीमतें अब उच्चतम स्तर से लगभग 10% तक कम हो गई हैं। सरकार ने आज चीनी के थोक और खुदरा विक्रेताओं से चीनी की कीमतों में हुई महत्वपूर्ण कमी का लाभ तुरंत उपभोक्ता तक पहुंचाने की अपील की। मंत्रालय ने कहा कि सरकार घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है और उपभोक्ताओं के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि

0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी प्रक्रिया के लिए 20 और 27 सितंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। इन शिविरों में मतदाता अपना नाम और विवरण जांचने के साथ जरूरी फॉर्म जमा करने की जानकारी भी ले सकेंगे। पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं होने पर फॉर्म 6, किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और नाम पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। ये फॉर्म संबंधित निर्वाचन कार्यालय BLO या ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। नोटिस चरण और दावों या आपत्तियों का निपटान 29 अक्टूबर तक चलेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 में एक अनौपचारिक वार्ता में भाग लेते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि बौद्धिक संपदा की सुरक्षा से लेकर वैश्विक कंपनियों को भारत में संपूर्ण उत्पाद डिजाइन करने में सक्षम बनाने तक सेमीकंडक्टर उद्योग में विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया को काफी अच्छी वैश्विक प्रतिक्रिया मिली है।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
1: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस की अपराध शाखा ने साथ मिलकर अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से पाकिस्तान मूल का 2 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक चार पहिया वाहन भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी 10 करोड़ रुपए की रंगदारी के मामले में भी वांछित था। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 96 ग्राम पिघला हुआ सोना, 2 सोने के सिक्के, 1 सोने की चेन और 1 हीरे का सेट सहित 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने निवेश के नाम पर पीड़िता से लगभग 60 लाख रुपए के आभूषण और नकदी की ठगी की। मामले की जाँच जारी है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST की दक्षिणी दिल्ली की के आयुक्त के कार्यालय ने लोहे और इस्पात के व्यापार से जुड़ी एक फर्म के मालिक को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के खिलाफ चल रही है कार्रवाई का हिस्सा है। आरोपी को CGST अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि मालिक को फर्जी चालानों के माध्यम से 25 करोड़ रुपए से अधिक के अमान्य ITC के धोखाधड़ी, पूर्ण लाभ उपयोग और हस्तांतरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से भारत में रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों को पश्चिम विहार क्षेत्र में ग्रीस का वीजा हासिल करने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। जांच के दौरान दोनों अवैध प्रवासी वैध पहचान या यात्रा दस्तावेज पेश करने में असफल रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में छत्तीसगढ़ से आए युवा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि ये युवा अगले 5 दिनों तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों और प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेंगे और अपने अनुभव देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विश्व बांस दिवस के अवसर पर बांस के पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व को रेखांकित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बांस एक बहुउपयोगी, नवीकरणीय और टिकाऊ संसाधन है जो आजीविका के साथ साथ स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में भी योगदान देता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन से मुलाकात कर उन्हें टीम दिल्ली में शामिल करने पर बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संजू सैमसन

इनका दिल्ली से विशेष जुड़ाव है। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्ष दिल्ली में बिताए और यहीं से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। और अब मौसम। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया है कि कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में हेरिटेज क्लब योजना का शुभारंभ किया। विद्यार्थियों को मिलेगा विरासत से जुड़ने का अवसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली एम्स में एमबीबीएस के लिए 100 सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विभिन्न कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम गीत मालिका का।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।
0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आज चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है अजनबी गीत के साथ, और आप भी समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे, जी हाँ, अजनबी, स्ट्रेंज, जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। सड़क पर साथ चलते चलते सैकड़ों चेहरे, मेट्रो में सामने बैठा हुआ इंसान, या फिर किसी बस में, ऑटो में, या कैब ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर, ये सब अजनबी ही तो हैं। लेकिन सोचिए, आपकी ज़िंदगी में जो आज सबसे ख़ास है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो, कोई भी, वो भी तो कभी ना कभी अजनबी रहा होगा ना। अजीब सी बात है ना, एक मुलाकात पूरा रिश्ता बदल देती है।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। समय 8:07 हो चुके हैं और आप खूबसूरत कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और आज का टॉपिक है, जी हाँ, अजनबी। अजनबी और सुकून कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल सही मिलान कहें तो हो सकता है। हम कभी कभी अपनों से वो बात नहीं कह पाते हैं जो किसी अनजान इंसान से व्यक्ति से कह देते हैं। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा, ट्रेन की बर्थ पर बैठकर हम पूरे सफ़र में उस अजनबी से सारी बातें कह डालते हैं जिसे हम जानते भी नहीं हैं, या फिर चाय पीते हुए कोई हमें अनजान मिलता है तो उससे सारी बातें कह डालते हैं। अजनबी व्यक्ति के सामने कोई फिल्टर नहीं होता, कोई भी कहें कि झूठ नहीं होता है, क्योंकि हमें डर ही नहीं होता है कि हम किसी को बताएंगे तो वो बात आगे जाएगी या फिर वो कुछ जज करेगा।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे थे अजनबी की, और हमने बात करी कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भी अनजान एकदम से कभी भी मिल जाते हैं, और हम हैरान हो जाते हैं कि वही अनजान व्यक्ति आज हमारा इतना ख़ास है जिससे हम सब कुछ कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि पूरे ज़िंदगी के सफ़र में कि वजह पूछने का मौका ही नहीं दिया, वजह पूछने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, बस वक्त बदलता गया और हम अजनबी हो गए। ऐसे भी सिलसिले होते हैं दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में, कि इतना डिस्टेंस आ जाता है, इतनी दूरी आ जाती है कि हम जो ख़ास होते हैं वो भी अजनबी लगने लगते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, दिल से फिल्म से गीत अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में, साथ में महालक्ष्मी। इस गीत को लिखा गुलजार ने और संगीत दिया AR रहमान ने। हम बात करें उस अजनबी चेहरों की जो आज आपकी ज़िंदगी में वो खास शख्स बन चुके हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। कभी कभी कोई अजनबी अचानक हमारी ज़िंदगी में आता है और बस कुछ ही पलों में एक गहरी छाप छोड़ कर चला जाता है। ऐसा अक्सर हम सब

यकीन दिला देती है कि इंसान या तभी भी जिंदा है। अजनबी तो वो बस नाम के होते हैं, कभी कभी वही लोग हमें समझ जाते हैं जो अपनी भी नहीं समझते।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने की सुना विवाह फिल्म से उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से। मैं हूँ आपके साथ चेतना। हम बात कर रहे हैं उस अजनबी की जिसे आप जानते भी नहीं और वो आपका कुछ खास बन जाता है। अजनबी शहर है, अजनबी रास्ते, चलो संग चले कुछ पल के वास्ते। क्या पता कौन कहाँ हो और बस दिल में ही रह जाए दिल की बातें। जी हाँ, कभी कभी अजनबी जो होते हैं ना, वो भी हमारे दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि वो अजनबी थे।

आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8 बजकर पूरे 28 मिनट और 40 सेकंड हुए हैं।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से, और अभी आपने गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथ में सुरेश वाडेकर और फिल्म कभी अजनबी थे। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में प्रसारित सभी गीत आप पसंद कर रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना ना भूलें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं ये अगला गीत।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:40 हो चुके हैं। तो अजनबी कब बन गए दोस्त, आज हमने बात करी, लेकिन आखिरी गीत के साथ विशाल डडलानी और शिल्पा राव की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, लेकिन मिलेंगे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिलहाल मुझे इस कार्यक्रम से जाना होगा, आपसे मिलेंगे रात्रि में 11:10 पर। अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
2: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की।

0: बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
3: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
4: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
5: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
5: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
6: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
7: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है।
5: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी

0: Lanka on the same day. The opening ceremony of the Asian Games 2026 at Aichi, Nagoya in Japan will be held tomorrow. For India, double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will lead the contingent. The 20th edition of the Asian Games will run from tomorrow until the 4th of next month. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE reaffirmed their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allowed separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating host Japan by 8 wickets in quarter-final. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने में तआवुन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बहिरे अहमर खित्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरतहाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब के खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइया को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट किए हैं। हुकूमत ने थोक गाहकों के लिए चीनी जखीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने इलाकाई अमन और सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिशों में मुसलसल तआवुन और इश्तराक के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोन मौसूल हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के हालात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए इकदामात के बारे में भी गुफ्तगू की। इसमें तवानाई, दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सेहत जैसे शोबे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने भारत की कामयाब ब्रिक्स सदारत पर वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद दी। जनाब मोदी ने ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में वलीहद शेख खालिद की शिरकत और भारत की सदारत के दौरान अहम नतायज हासिल करने में यूएई के तआवुन और शराकतदारी को भी सराहा। यूएई के सदर ने वज़ीर आज़म मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद दी और इस मौके पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोज़गार मेले के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए तकर्रुर पाने वाले नौजवानों को 51,000 से ज़्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम करेंगे। ये प्रोग्राम मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर जनाब मोदी तकरीब से खिताब भी करेंगे। नई तकर्रुरी पाने वाले उम्मीदवार भारत सरकार की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खिदमात अंजाम देंगे, जिनमें महकमे मासूलात, वजारत रेलवे, वजारत दाखिला, वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद, मालियाती खिदमात का महकमा और वजारत दिफा समेत दीगर इदारे शामिल हैं। भारत ने बहिरे अहमर में सलामती की बिगड़ती हुई सूरतहाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के खुद मुख्तार इलाके पर हमलों की मजम्मत की है, जिनमें शहरियों और इकतसादी असासों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुकदस शहर मक्का पर हुए हमले की कोशिश के बाद भारत ने बयान जारी किया था। पाकिस्तानी बहरी जहाज और भारतीय बहरी जहाज के दरमियान हुए तसादुम के बारे में इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने अपने एहतजाज पर पाकिस्तान के रद्दअमल का नोटिस लिया है। जनाब जायसवाल ने पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इल्जामात और धमकियों को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया।
2: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लग

0: लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
1: जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज हुनैन के जरिए खतरनाक तरीके से आगे निकलने की कोशिश फौजी मशकों, कलाबाजियों और फौजी नकलो हरकत के एडवांस्ड नोटिस से मुतालिक भारत पाकिस्तान के 1991 माहदे के आर्टिकल 10 की सरी खिलाफ वर्जी है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज ने समंदर में टक्कर से बचने से मुतालिक बैन अवी जबतों की भी खिलाफ वर्जी की है। नायब सदर CP राधा कृष्णा ने आज कहा कि योग मौजूदा दौर में बढ़ते हुए जहनी तनाव के दरमियान जिस्मानी और दिमागी सेहत, ध्यान, खुद आगाही और जहनी तवाजुन को बेहतर बनाने में मदद फराहम कर सकता है। नायब सदर ने यह बात महाराष्ट्र के लोनावला में कैवल्य धाम में गोवर्धन दास सेक्सरिया कॉलेज ऑफ योगा एंड कल्चरल सिंथेसिस की प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए कही। जनाब राधा कृष्णा ने योग की तालीम, तहकीक और सकाफती मुतालात के दरमियान मजकूरा इदारे की 75 साल खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि कैवल्य धाम के बानी स्वामी कुवल्यनंदन ने 1924 में योग के साइंसी मुताले की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि योग महज एक नस्ल की रिवायत नहीं है बल्कि एक ऐसा विरसा है जिसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों और अक़वामे मुत्तहिदा की जानिब से 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिए जाने के बाद योग को आलमी सतह पर शनाख्त हासिल हुई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका यह सफ़र जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और मुसलसल और अनथक अज़्म से इबारत है जो आज भी पूरी मजबूती के साथ जारी है। खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के इस नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ के हसूल के लिए मुसलसल काम कर रही है। जामे तरक्की और समाज को बाख्तियार बनाने के ज़रिए ये अज़्म लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली ला रहा है। आज सेवा संकल्प अभियान की खसूसी सीरीज़ के तहत हम नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस नज़रिए को अमली जामा पहनाए जाने की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को काबीना की एक करारदाद के जरिए प्लानिंग कमीशन की जगह ली। इसे फंड फ्राहम करने वाले इदारे के बजाय पॉलिसी साजी के इदारे के तौर पर तश्कील दिया गया। नीति आयोग के 3 अहम अज्जा हैं। गवर्निंग काउंसिल वजीर आजम और तमाम वज़राए आला को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करती है। रियासतों को ताउन फ्राहम करने से मुतालिक मिशन नीति आयोग की टीमों को रियासती हुकूमतों के अंदर काम करने के लिए तैनात करता है। उमंगों वाले अजला प्रोग्राम जिलों की कारकर्दगी को मुकर्रा पैमानों पर जांचता है और नतायज शाये करता है। 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की 3री गवर्निंग काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मोदी ने कहा था कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मरकज और रियासतें एक टीम के तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
2: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए नीति आयोग के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग के क्याम से ताउन पर मबनी वफाकियत को फरोग मिला है और ये मरकज रियासती हुकूमतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिकमत अमली और तकनीकी मशवरे फराहम करता है।
4: नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करता है। सारी स्कीम्स मॉनिटरिंग करने की वजह से स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बदलाव आया है।
2: नीति आयोग अब भारत सरकार के अहम पॉलिसी थिंक टैंक और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी से मुतालिक तबादले ख्याल के एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मजबूत रियासतें अब एक मजबूत मुल्क की वाजह बुनियाद बन चुकी हैं। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।

ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई जहाज़ों के सरकारी मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अपने ट्विन सीटर हल्के जंगी तैयारे तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय फिजाइया को सौंपा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और शहरी आवाबाजी के मरकजी वजीर K. राम मोहन नायडू ने इससे मुतालिक

0: को सौंपा। इसके अलावा एचएएल ने पहला HTT-40 बुनियादी तरबियती तैयारा भी भारतीय फिजाइया के हवाले किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारे को अंकुर का नाम दिया।
1: आज हम एक साथ तीन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
0: तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर खुद इन्हेसारी पर जोर दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भारत इस शोबे में आलमी कायद के तौर पर उभरेगा। जनाब सिंह ने स्वदेशी दिफाई और शहरी हवाबाजी टेक्नोलॉजियों की कोशिश के लिए हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सताइश की। जनाब सिंह ने नौजवान इंजीनियरों और डिज़ाइनरों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों से मुतालिक चैलेंज को कबूल करने और भारत को आलमी सतह पर मुकाम दिलाने में मदद करने की अपील की। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि निजी और अवामी शोबे को हरीफ बनने के बजाय शराकत दार के तौर पर काम करना चाहिए। जनाब सिंह ने कहा कि भारत की दिफाई पैदावार और बरामदात में खातिरखा इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज IBM सेमीकंडक्टर के जनरल मैनेजर डॉक्टर मुकेश खरे से मुलाकात की। ये मुलाकात आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के तनाजुर में हुई। इस दौरान दोनों ने भारत की चिप डिज़ाइन तरजीहात, जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के मौके और भारत में एडवांस्ड चिप साजी के से मुतालिक IBM के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। जनाब वैष्णव ने LAM रिसर्च के COO सेशा वर्दराजन से भी मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मुस्तहकम करने के कंपनी के मंसूबों पर बातचीत की। इंतखाबी कमीशन ने आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हरीफ धड़ों को नए नाम और नए इंतखाबी निशानात अता किए। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और अरूप राय के ज़ेर क़्यादत धड़े ज़िमनी इंतखाबात में नई शनाख्त के साथ हिस्सा लेंगे। अरूप राय के ज़ेर क़्यादत ग्रुप को नया नाम डेमोक्रेट तृणमूल कांग्रेस दिया गया और उनका इंतखाबी निशान लिफाफा होगा। वहीं ममता बनर्जी के ज़ेर क़्यादत दूसरे ग्रुप का नाम बदलकर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रखा गया है, जबकि उनका इंतखाबी निशान एक फुटबॉल खिलाड़ी होगा। हुकूमत ने थोक ग्राहकों के लिए चीनी ज़खीरा करने की हद 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ताहम ये रियायत इस शर्त के साथ दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की हद से ज़्यादा रखा जाने वाला चीनी का ज़खीरा सिर्फ पेशगी मंजूरी स्कीम और टेरिफ रेट कोटा के तहत दरामद की गई चीनी से हासिल किया जाएगा। सारिफिन के अमूर, खुराक और सरकारी निज़ाम तकसीम की वजारत ने कहा कि खुली मार्केट से खरीदी जाने वाली चीनी के ज़खीरे की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये सिर्फ 15 दिन की खपत तक महदूद रहेगा। ये फैसला हुकूमत की जानिब से चीनी के बड़े ग्राहकों के साथ तफसीली मुशावरत के बाद किया गया। एशियाई खेलों में ख्वातीन की भारतीय टीम मेज़बान जापान को 8 विकेट से बआसानी शिकस्त देने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। निशिन में आज खेले गए मैच में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हरा दिया। इस क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 19 ओवर्स और 5 गेंदों में जापान की पूरी टीम को महज 57 रन पर आउट कर दिया। इस दौरान भारतीय गेंदबाजों श्री चरनी ने 4 विकेट और शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर यह निशाना हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 15 गेंदों में 40 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। हरमनप्रीत कौर की क़्यादत वाली भारतीय टीम का मुकाबला निची नायगोया एशियाई खेलों के दूसरे सेमीफाइनल में इतवार के रोज़ बांग्लादेश से होगा। वहीं पहला सेमीफाइनल उसी रोज़ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार जजायर और शुमाल मशरक भारत के कई हिस्सों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल से मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून के रुखसत होने के लिए हालात साजगार हैं। दिल्ली के लिए महकमे मौसमियात ने कल मौसम के जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने की पेश गोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कल ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और कम अज़ कम दर्ज हरारत 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। और आखिर में ख़ास ख़ास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात

के सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की। भारत ने बुहरा अहमर खत्ते में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और सऊदी अरब की खुद मुख्तार सरजमीन पर हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय फिजाइयों को 2 सीटों वाले तेजस और HTT-40 तरबियती तैयारे सुपुर्द किए हैं और इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के हरीफ धड़ों को अलग अलग नाम और इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं

0: राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी NTA की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephonic call from President of the UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in areas of energy, defense, technology, investment, and healthcare. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency.

0: चैनल है। अब आप अगला कार्यक्रम सुनिए।
1: नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रंजन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भगवान दास शर्मा का संतूर वादन, राग यमन, विलंबित गत रूपक ताल।

कार्यक्रम माटी के रंग में अभी आप सुन रहे थे दीपाली भल्ला के गाए कुछ ब्रज गीत। सितार पर साथ दिया खालिद मुस्तफ़ा ने, हारमोनियम पे थे दामोदर लाल घोष और ढोलक पर थे मदन कुमार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंजन। इस कार्यक्रम में आपने सुना भगवान दास शर्मा का संतूर वादन, राग यमन विलंबित गत रूपक ताल।

0: समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवनहंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और इस फिल्म संगीत के खूबसूरत कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ आपके साथ, आप ही की दोस्त तरन्नुम जहाँ। और जी हाँ, आपके बिना ये कार्यक्रम ही अधूरा है। आप भी इस कार्यक्रम में लगातार हमसे बने रहते हैं और अपने गीतों की फरमाइश करते हैं, और साथ ही साथ अपने नाम, अपने चाहने वालों के नाम और हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत से, और इस गीत की फरमाइश भी आप ही में से एक श्रोता ने हमें भेजी है। तो आइए सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत।

यह कार्यक्रम जो है फिल्म संगीत का है, जहां आपकी फरमाइश होती है और हम जो है आपकी फरमाइशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल उन लोगों के नाम हम ले लेते हैं जिन्होंने बड़े प्यार से हमें मैसेज किया है। जी हाँ, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप के जो मैसेज होते हैं वही इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाते हैं, क्योंकि जो आप

ये जो हमारा रिश्ता है वो इन मैसेजेस से, इन मेल से ही जाहिर होता है कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, आपके लिए, इंद्रप्रस्थ के लिए जो आपकी मोहब्बत है, जो आपकी चाहते हैं, वो हम तक ज़रूर ही पहुंचती है इन मैसेज के ज़रिए। चंडीगढ़ सिटी से हमें मैसेज भेजा है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने, और यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे का भी हमें मैसेज आया है। छत्रपति संभाजी नगर से हमें मेल किया है राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती श्री शीतल राजेश ने। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, पूजा रेखा, रघुवंशी, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज वानखेड़े, लक्ष्मी नारायण भाऊ खड़से ने भी हमें मैसेज किया और साथ ही फरमाइश की है कि हम कोई भी प्यारा सा गीत इनको ज़रूर सुनवाएं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें मेल किया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने, और कालका से मैसेज आया है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। और चंडीगढ़ सिटी से भी हमें काफ़ी मैसेजेस आते हैं, और पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से भी हमें मैसेज मिला है जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता का, साथ में है मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता और संजना गुप्ता। थाना रोड बक्सर से भी हमें मैसेज आया है जियत ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी गुप्ता और सानवी गुप्ता का हमें मैसेज मिला है। वडिंग खेड़ा पंजाब से हमें मैसेज किया है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। और अगला जो मैसेज है वो है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साहिराज सपकाल और विशाल सपकाल का। नबी हसन अब्बासी, सहना शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी का भी हमें मैसेज आया है किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से, और लिखते हैं ज़ुबैर अली ख़ान, सबीहा अंजुम ख़ान। और ये जो मैसेज हमें मिला है वो मारहरा दरवाज़ा एटा से भी हमें मैसेज आया है। और चांद वाली मस्जिद मुरादाबाद से हमें मैसेज किया है मिराज अंसारी, वसीम अंसारी, अब्दुल फरीद अंसारी ने। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

बहुत ही खूबसूरत गीत है लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म क्रांति से भी आप सुन रहे थे, और बहुत सारे ऐसे गीतों का एक ख़ज़ाना लेकर मैं आपके लिए बैठी हूँ, और इस 1 घंटे के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान सुनाने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ आपके जो मैसेजेस हैं उनको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप इतने प्यार से हमें मैसेज करते हैं, तो

आपका नाम लेना तो बनता ही है ना। जी हाँ, कार्यक्रम में हमें शिवाजी चौक कटनी से मेल किया है अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रंजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पावन पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोनी, हनी, यश और सौम्य का हमें मैसेज आया, और साथ ही साथ उनकी मम्मी पापा भी।

पटियाला दुर्ग से हमें मैसेज किया है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने। अगला जो मैसेज है वो है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का, और इन्होंने लिखा है रघुवीर नगर से। और अस्तुपुरा जिला मऊ से भी हमें मैसेज मिला है, मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी का मैसेज आया है, और साथ में है बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। और आप जो इतने प्यार से मैसेज करते हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया अदा हम सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं कि आपकी पसंद के गीत हम ज़रूर कार्यक्रम में शामिल करें। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत।

यह कार्यक्रम है आपकी फरमाइश, तो आपकी फरमाइशी गीत तो हम सुनवाने की कोशिश करते हैं और साथ ही भी लेते हैं आप सभी का नाम। तो इरशाद हुसैन अंसारी का हमें मैसेज आया है और साथ में है सैयद शारिक अली, मिराज अंसारी, बाबू अंसारी। आदर्श नगर मलौट पंजाब से हमने लिखा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शायना शर्मा ने। और अगला मैसेज हमें मिला है फाजिल का, पंजाब खेड़ा से, खेड़ा परिवार से, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह समेत समस्त जो खेड़ा परिवार है, बड़े प्यार से इन्होंने मैसेज किया। और ऐसा न, जब सभी परिवार वालों के नाम इकट्ठे ही आप मुझे लिखकर भेजते हैं तो हमें सुनकर ऐसा लगता है कि, ऐसा देखकर आपके मैसेजेस को ऐसा लगता है कि आप साथ ही बैठकर हमारा ये कार्यक्रम बड़े गौर से सुनते हैं, बड़े प्यार से सुनते हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर से हमें मैसेज किया है इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे ने, और स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी ना जो है, इन्होंने भी हमें बड़े प्यार से मैसेज किया है। और अगला जो मैसेज हमें मिला है वो मिला है मुकेश बट्टा जी का, जो पटियाला, मोहाली पटियाला से हमें हमेशा मैसेज करते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दीवांशी और निमित आहूजा का हमें मैसेज मिला है। मुसर्रत जहाँ नाज जो है, इन्होंने हमें लिखा है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, और इनके साथ है तलत जहाँ नाज, फरहत जहाँ नाज, रिफत जहाँ नाज, नुजहत जहाँ नाज, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। और ये सभी जो बहनें हैं बड़ी खूबसूरती से हैं, इन्होंने हमें मैसेज मिला भेजा है। और साथ ही साथ आपकी गीतों की जो फरमाइश है ज़रूर हम पूरी करेंगे उनको सुनवाने की। और सुदर्शन मुखी का भी हमें मैसेज आया, साथ में है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, इन्होंने हमें मैसेज किया है शांति नगर सोनीपत से। और जित नीरज कुमार जी का मैसेज हमें मिला है दल्लूपुरा दिल्ली से। पारस अकोला महाराष्ट्र से हमें मैसेज किया है संतोष धर्मकर, गीता धर्मकर,

भूषण धर्मकर और विजया धर्मकर ने। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और साथ में हैं गुड्डू। और भी लोगों के नाम जो हैं इस कार्यक्रम में हम शामिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल गीतों भरा ये कार्यक्रम है, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम है, जिसमें हम बड़े प्यार से आपको ये खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसे फहरिस्त में सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। और साथ में है महेंद्र कपूर।

ऐसा भी होता है कि साथ नहीं होता और होती है यादों की बारात। जी हाँ, और फिलहाल हैं आप हमारे साथ, हम हैं आपके साथ, और लेकर खूबसूरत गीत और कार्यक्रम के अंतिम छोर तक तो हम पहुंच ही गए हैं, लेकिन ये जो साथ है हमेशा हमेशा का है, हमेशा बना रहेगा। अस्तपुरा जिला मऊ से हमें हमारे श्रोता ने मैसेज किया है, मज़हर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी ने। और कस्बा वराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से मैसेज आया है रवि कुमार राहुल का, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल ने भी हमें मैसेज किया है। और नासिर शेख का भी हमें मैसेज मिला है, और एक और मैसेज है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का भी हमें मैसेज मिला है, और ये सूरतगढ़ से भी हमें मैसेज करते हैं, और सूरतगढ़ से भी हमारे सभी सभी कार्यक्रम जो हैं वो सुनते हैं। असालतपुर मुरादाबाद से हमें मैसेज किया है मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रज़ा अंसारी और बिलाल अंसारी ने। और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमें मैसेज किया है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक ने, और कैथल हरियाणा से हमें मैसेज किया है मधु नायक ने। गांव फरासी जिला हिसार से हमें मैसेज किया है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और साथ पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। चांद वाली मस्जिद से भी हमें मैसेज आया है मिराज अंसारी, वसीम अंसारी का। और उत्तम नगर दिल्ली से हमें मैसेज किया है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल का मैसेज हमें मिला है। और आइए सुनते हैं अगला गीत।

जी हाँ, अंतिम गीत से पहले इस कार्यक्रम में हम चंद नाम और लेने की कोशिश करेंगे। गुरमीत सिंह मीता ने हमें मैसेज किया है साउथ एक्सटेंशन से, और वंजारा नागपुर महाराष्ट्र से मैसेज किया है अनिल कोहले, छाया कोहले और प्रियांश कोहले, और साथ में इनके परिवार के लोग भी हैं। और मैसेज आया है हमें

इरशाद हुसैन अंसारी का, और साथ में है मेराज अंसारी। और गांव बिटोड़ा भोयर, तहसील मंगरूल पीर, जिला वाशिम, पश्चिम विदर्भ से हमें मैसेज किया है योगीराज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल श्याम, गोविंद मस्के और इनके साथियों ने। कल्पना मदन झा, मानव और मयंक का हमें मैसेज आया है, निर्मला अपार्टमेंट, नरोली फाटक, भिलाड़, वापी, गुजरात से। पंजी सराय संभल से हमें मैसेज किया है छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी ने। और अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिस वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से इन्होंने हमें मैसेज किया है, मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन ने। और इन सब के जो मैसेज हमें मिले हैं वो नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से हमें इन्होंने मैसेज किया है। और चलते चलते चलिए एक खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 346.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 12 बजने वाले हैं। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी

0: घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा हैं। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इस ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रिजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गए। चुनावों के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म शाहजहां से। संगीत दिया था नौशाद साहब ने और गायिका थी उमा देवी। तो हम बात कर रहे थे नौशाद साहब पर। नौशाद साहब का जन्म 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम था नौशाद अली और इनके वालिद का नाम था वाहिद अली, जो पेशे से कोर्ट में मुंशी यानी क्लर्क थे।

ये गीत आपने फिल्म संघर्ष से सुना। गायिका थी लता मंगेशकर और संगीत दिया था नौशाद साहब ने। श्रोताओं, नौशाद साहब को बचपन से ही संगीत सीखने का बहुत शौक था। ये बहुत छोटे थे जब इन्हें लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में एक मुशायरे में जाने का मौका मिला। उस मुशायरे में बड़े बड़े कव्वाल और संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे और उस मुशायरे का इनके बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद ही इन्होंने उस्ताद गुरबत अली, उस्ताद यूसुफ अली, उस्ताद बब्बन साहेब और अन्य उस्तादों से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। और इसके अलावा नौशाद साहब हारमोनियम भी ठीक कर लिया करते थे। तो सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में ये अगला गीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म उड़न खटोला से। गायिका थी लता मंगेशकर। श्रोताओं, नौशाद साहब ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के साथ साथ एक जूनियर थिएटर क्लब भी ज्वाइन कर लिया था। और वो ज़माना असल में श्रोताओं मूक फिल्मों का था। उन दिनों फिल्मों में आवाज़ नहीं हुआ करती थी, और यही वजह थी कि जब लखनऊ के थिएटरों में फिल्म चलती थी तो नौशाद साहब पर्दे के पीछे अन्य कलाकारों के साथ फिल्म के लिए तबला, हारमोनियम और वॉलिन इत्यादि बजाया करते थे। और शायद यही वजह थी कि उनके इस अनुभव के कारण उनके बेहतरीन संगीतकार बनने की नींव पड़ी। तो इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म ताजमहल से ये गीत अजॉय चक्रवर्ती की आवाज़ में।

श्रोताओं, नौशाद साहब ने बहुत कम उम्र में लखनऊ की विंडसर नामक म्यूज़िक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने उस्ताद लद्दन खान से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और स्वतंत्र संगीतकार के रूप में काम करने लगे। इनके साथ हर राज्य के व्यक्ति काम किया करते थे। सन 1931 में भारतीय सिनेमा में बोलने वाली फिल्मों का दौर शुरू हुआ और उसी दौर में इन्होंने महज 13 वर्ष की उम्र में फिल्मों में संगीत देना प्रारंभ कर दिया। अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर इन्होंने मुंबई की ओर रुख किया और 1937 से इन्होंने एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपना कैरियर

श्रोताओं, मुंबई आने के बाद नौशाद साहब का फिल्मी करियर कोई आसान नहीं रहा था। यहाँ आकर इन्हें काम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। मुंबई के दादर में इन्होंने अपना पहले तो अपना रहने का ठिकाना ढूंढा, उसके बाद इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। हालांकि इस दौरान इन्हें कभी कभी फुटपाथ पर भी सोना पड़ता था। यहाँ संघर्ष के दौरान इन्हें उस्ताद झंडे खान का सहायक के तौर पर काम करने का मौका मिला, जिन्होंने इन्हें 40 रुपये महीना की तनख्वाह पर काम पर रख लिया। ये तनख्वाह उस समय एक अच्छी खासी रकम मानी जाती थी।

यहाँ से अजी हो हो मन मन में हमें न गालियाँ दो। लो चली मैं यहाँ से अजी हो हो कोई कब तक ऐसों के पास आए जिनके दिल में औरों का हो ठिकाना।

0: हमें के जाना जाना।
1: ये गीत आपने सुना फिल्म रतन से गायिका मंजू की आवाज में। श्रोताओं, उस्ताद झंडे खान का सहायक बनने के बाद नौशाद साहब ने और अधिक संघर्ष करना शुरू कर दिया। इन्होंने कई प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया। सन 1940 में इन्होंने पहली बार एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में संगीत दिया। फिल्म का नाम था प्रेमनगर। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में यादगार संगीत दिया और इनका दिया हुआ संगीत ज़्यादातर फिल्मों में सुपरहिट रहा। ऐसी ही फिल्म बैजू बावरा में इन्होंने संगीत दिया था। आइए सुनते हैं फिल्म बैजू बावरा से ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

श्रोताओं, नौशाद साहब ने कई सुपरहिट फिल्मों जैसे मुगले आजम, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, पाकीज़ा, तांगे वाला, धर्मकांटा आदि में यादगार संगीत दिया है। ऐसा ही एक गीत आइए सुनते हैं फिल्म मुगले आजम से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, नौशाद साहब न केवल एक बेहतरीन संगीतकार थे बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। सन 1998 में उनकी उर्दू कविताओं की एक किताब आठवां सुर, जिस पर एक एल्बम आठवां सुर द अदर साइड ऑफ नौशाद भी बनी थी, का प्रदर्शन नवंबर 1998 के बुक फेयर में किया गया था। और इस एल्बम को बनाने में उत्तम सिंह ने नौशाद साहब की मदद की थी। इसी के साथ श्रोताओं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म मदर इंडिया से लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, नौशाद साहब को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, अमीर खुसरो अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार अवार्ड, अवध रत्न जैसे अनेकों पुरस्कारों से नवाजा जा चुका था। इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म गंगा जमुना से ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक।
1: आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

श्रोताओं, नौशाद साहब आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। 5 मई 2006 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें जुहू स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया था। नौशाद साहब भले ही आज हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन अपने गीत संगीत और उपलब्धियों के कारण वे सदैव हमारे बीच मौजूद रहेंगे। इसी के साथ श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। तो चलते चलते हम आपसे विदा लेते हैं इसी अंतिम गीत के साथ, जो है फिल्म धर्मकांटा से भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की

0: प्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य में आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तानी नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और उपराय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। और उपराय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रिजीनगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफर मौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चढ़नी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। श्री चढ़नी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes –

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे का, जिसमें आप सुनते हैं पुरानी फिल्मों के नायाब गीत। आइए सुनते हैं ये गीत KL सहगल साहब की आवाज़ में।

क्या खत्म न होंगे कभी ये गम के फसाने, फुरकत के जमाने क्या खत्म न होंगे कभी ये गम।

0: फिल्म आग से ये अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश साहब की आवाज में।
1: जिंदा हूँ इस तरह के गम

तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ में।

0: इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब से थोड़ी देर में रात्रि के ठीक 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीं। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर एचएएल ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को डीजीसीए द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, एलसीए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी एफओसी ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इसमें ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रिजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 ईवीएम का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम प्राप्त होने के बाद कोई जीत का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीत का इतिहास रचा था। तजेंद्र पाल ने 2018 के जकार्ता और 2022 के हांगचौ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। उधर एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब भारत का सामना रविवार को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
3: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को भी संबोधित करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख

0: प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: हम एक साथ तीन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को डीजीसीए द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, एलसीए फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी एफओसी ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहाट जिले में एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। कोहाट अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम से कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि धमाका शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजेंद्र पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज का ही ध्वजवाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। तजेंद्र पाल सिंह ने 2018 के जकार्ता और 2022 के हांगचाऊ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफन मौला प्रदर्शन और स्पिनर शिरीष चढ़नी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर सिमट गई। शिरीष चढ़नी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए, जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE comprehensive strategic partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment and health. The UAE president conveyed warm greetings on the Prime Minister's birthday and congratulated him on India's successful BRICS presidency. Mr. Modi appreciated the participation of Crown Prince Sheikh Khalid in the BRICS summit and the UAE's cooperation and partnership in achieving substantive outcomes under India's presidency. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks in Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Makkah.
3: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab al-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
2: On the collision between a Pakistani Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. Replying to a query on the US Sanctions on Russia and Iran Act, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said India has conveyed at senior levels of the US administration the possible implications of the act for India's energy security, global energy markets, and overall bilateral relations. He said, India continues to source energy from diversified sources. Mr. Jaiswal reiterated that energy sourcing is guided by national interest. He stressed that meeting the energy needs of 1.4 billion Indians is an imperative. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today morning in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointed candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. And polling for the Delhi University Students' Union, DUSU, concluded yesterday. Voting was held in two phases. Voter turnout of 39.86% was recorded in the election this time. Voting was held for four central posts: President, Vice President, Secretary and Joint Secretary. Counting of votes will take place today at the Multipurpose Hall of Delhi University's University Sports Stadium in North Campus. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं अगला प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम है गज़ल गीत, और इस प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम जहाँ।

अभी आप सुन रहे थे गज़ल गीत का ये प्रोग्राम, जिसमें आपने जगजीत सिंह, आशा भोसले, पंकज उदास, चंदन दास की आवाज़ में कुछ चुनिंदा गज़लें सुनी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सरस्वती राजगोपालन।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभू।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से अन्नमाचार्य की रचना नारायण ते नमो।

0: और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कलाकार थे सरस्वती राज गोपालन। मृदंगम पर साथ थे मनोहर बालाचंद्रन और घाटम पर वरुण राजशेखरन। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का वीणा वादन। मृदंगम पर साथ हैं मनोहर बालचंद्रा और घाटम पर वरुण राजशेखरन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना सरस्वती राजगोपालन का रुद्र वीणा वादन। मृदंगम पर साथ थे मनोहर बालचंद्रा और घाटम पर वरुण राज के शेखरन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़,

डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्र पद मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद कार्यक्रम आओ यू करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय है कंधे की मूवमेंट और ताड़ासन। 5:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे देशभक्ति गीत। कार्यक्रम स्वर रंजनी का समय रहेगा 5:30। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नकुल मल्होत्रा का गायन राग ललित। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा सुबह 6:10 पर। 6:40 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है ग्रामोदय पर गांधी जी के विचार। रामचरित मानस का समय है 6:45 पर। संस्कृत हिंदी अंग्रेजी समाचारों के बाद कार्यक्रम संगीतिका का समय रहेगा सुबह 7:10 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तब्बू के गाए कुछ भजन। गीतों भरे गुड मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। इसके बाद समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ के बाद सुनेंगे उर्दू न्यूज़। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। कार्यक्रम धरती आकाश का समय है 9:15। इस कार्यक्रम में आज का विषय है हाइड्रो

0: ऑक्सीजन ट्रेन विकसित भारत की स्वच्छ रेल यात्रा। 9:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10 बजे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद 10:10 पर सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद। इसके बाद हम आपके लिए प्रसारित करेंगे 11:10 पर कार्यक्रम सबरस। सुर मंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम का समय रहेगा 11:30। 12:10 पर सुनिए महिला कार्यक्रम घर आंगन। आज दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है 12 o'clock। कार्यक्रम एक ही कलाकार, इसका समय रहेगा 2:30 पर, और आज कलाकार हैं ताहिर हुसैन। ब्रज माधुरी, इस कार्यक्रम का समय रहेगा 3 बजे। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में आप अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आयोजित कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नव नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 मॉडल के प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया संस्थान CNN एस नाउ और पॉलिटिको के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये मीडिया संस्थान उनके प्रशासन के बारे में लगातार झूठी और काल्पनिक खबरें प्रकाशित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में भी अन्य संस्थानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ संबंधित मीडिया संस्थानों और संगठनों की ओर से कानूनी चुनौती दिए जाने की संभावना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहाट जिले में एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। कोहाट अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कम 73 पुलिसकर्मी और 30 नागरिक घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि धमाका शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। तजिंदर पाल ने 2018 के जकार्ता और 2022 के हांगचाओ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointed candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics this morning in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. It will also bring together eminent judges and judicial representatives from 17 countries. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security, and stability. Prime Minister Narendra Modi yesterday received a telephone call from President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders exchanged views on developments in West Asia. They also discussed new measures to further deepen the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, including in the areas of energy, defense, technology, investment, and health. India has expressed deep concern over the escalating security situation in the Red Sea region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal condemned the attacks on Saudi Arabia's sovereign territory, including attacks targeting civilians and economic assets. He said India had also issued a statement following the attempted attack on the holy city of Mecca.
4: Such attacks, I need not elaborate or reiterate, they vitiate the regional security, they impact or undermine regional peace and security, and also threaten freedom of navigation through the Bab el-Mandeb. And obviously, for various reasons, this is totally unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
3: On the collision between a Pakistan Navy vessel and an Indian warship, Mr. Jaiswal said, India had taken note of Pakistan's response to its protest. He categorically rejected the allegations and insinuations made by Pakistan. Replying to a query on the US sanctions on

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए कंधे की मूवमेंट और ताड़ासन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की

विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं वेष्ट की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आएं। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं। पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें, श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को दो या तीन आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं, अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा लाभकारी है, उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को रोजाना 2-3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लंबाई भी बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए नकुल मल्होत्रा का गायन राग ललित।